मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 9 जून सन 2026। इस वक्त सुबह के 5:56 और 48 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा प्रारंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती।

0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं समूह स्वरों में देशभक्ति गीत के साथ।

जिसके हृदय में राम है उसके पास सब सिद्धियां हैं। उसके आगे अष्ट सिद्धि और नौनिधि हाथ जोड़े खड़ी रहती है।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं चिंतन।
1: विद्या ददाति विनयम्, विनयाद याति पात्रताम्, पात्रत्वाद् धन

0: मापनोति, धना धर्म तत् सुखम। विद्या विनय देती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्य व्यक्ति को धन, धन से धर्म तथा धर्म से सुख मिलता है। विद्यार्थी जीवन में यदि विनम्रता का गुण आ जाए तो क्या कहना। प्राचीन काल में शिष्य गुरु के पास जाकर बड़े विनम्र भाव से गुरु की सेवा करते हुए ज्ञानार्जन करते थे। सारे अहम का त्याग कर श्रद्धा और विनम्रता से गुरु के आदेश को ही सर्वोपरि मानते थे, और यही कारण है कि प्राचीन काल में जितने भी विद्वान, सिद्ध, मुनि और योगी का आविर्भाव हुआ, ये उन पूज्य गुरुओं की ही देन है। और इसके पीछे शिष्यों की आस्था, विश्वास और अटल श्रद्धा ही काम करती है। यहीं से गुरु शिष्य परंपरा आरंभ हुई थी। उपनिषद का वास्तविक अर्थ है उप अर्थात समीप, और निषद माने बैठना। गुरु के पास विनम्रता पूर्वक बैठकर शिष्य ज्ञान प्राप्त करता था। शिक्षा अर्जन का उद्देश्य यही होता था, ज्ञान प्राप्त करना, सौम्य, शिष्टाचारी और गुरु का आज्ञाकारी बनना। विनम्रता से अहंकार का नाश होता है। हनुमान जब लंका में भारी विनाश करके अपने प्रभु श्री राम के चरणों में वापस लौटते हैं तो श्री राम उनसे पूछते हैं कि वे ये सब कुछ कैसे कर पाए। हनुमान जी भी बड़े विनय पूर्वक इसका उत्तर देते हैं, प्रभु मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये सब तो मेरे माध्यम से आपने ही किया है। विनम्रता से अहम भाव मिट जाता है, क्योंकि अहंकार तनाव उत्पन्न करता है और फिर दुखों के द्वार खुल जाते हैं, जबकि विनय भाव से मन में शांति और सुख की अनुभूति होती है। इसीलिए देखा गया है कि जितने भी संत महापुरुष हुए हैं उनमें क्षमाशीलता, दयालुता, सहानुभूति और प्रेम जैसे गुण पाए जाते हैं। कहा भी गया है, संत हृदय नवनीत समाना। कई लोगों को अनेक शास्त्रों का पारायण करने के बाद ज्ञान गर्व भी हो जाता है और वे अपने को सर्वज्ञ समझने लगते हैं, लेकिन वास्तव में वे ही सबसे ज्यादा अज्ञानी हैं, क्योंकि इस संसार में ज्ञान तो अनंत है जिसकी कोई सीमा नहीं, फिर कोई सर्वज्ञानी होने का दावा कैसे कर सकता है। कुछ लोग विनम्रता को कई बार कायरता समझ लेते हैं, लेकिन ये उनकी भूल है। रामचरितमानस में एक प्रसंग है जब श्री राम विभीषण की सलाह पर सागर तट पर समुद्र से याचना करते हैं, लेकिन समुद्र शांत और अविचल है। इस पर लक्ष्मण क्रोधित होकर उसे उचित दंड देने के लिए राम से कहते हैं और कहते हैं कि देव देव आलसी पुकारे, सब कुछ विधाता पर छोड़ना कायरों का काम है। इस पर श्री राम बड़े धैर्य और विनम्रता से कहते हैं, लक्ष्मण ऐसा ही होगा, लेकिन चूंकि सागर हमारे कुलगुरु हैं, उन्हें सम्मान और आदर देना हमारा कर्तव्य है। मानस में कई ऐसे प्रसंग हैं जिसमें श्री राम ने कठिन से कठिन दुख और कष्ट के समय भी अपना धैर्य नहीं खोया और अपनी विनम्रता का परिचय दिया। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इतिहास साक्षी है, हर अभिमानी और दंभी का विनाश निश्चित है। कंस, रावण, बाली सबसे बलिष्ठ और ऐश्वर्य युक्त होने के बावजूद भी दंभ के कारण एक दिन वो विनाश को प्राप्त हुए। कई लोगों को ऐश्वर्य का मद होता है, कई तो ज्ञान गर्व, तो किसी को दानी होने का भी गर्व होता है, लेकिन कई महापुरुष महादानी इस तरह भी दान करते हैं कि दाहिने हाथ का दिया हुआ बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता। एक प्रसंग है, कहते हैं कवि रहीम बहुत बड़े दानी थे, लेकिन जब भी वे दान करते थे तो जब उनका हाथ उठता था तो उनकी आंखें झुक जाती थी। इस पर महाकवि तुलसीदास जी ने एक पुर्जा लिखकर उनके पास भेजा जिसमें लिखा था, ऐसी देनी देन जू कित सीखे सैन, ज्यो ज्यो कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। तो इसके उत्तर में रहीम जी ने लिखकर भेजा, देन हार कोई और है, देन हार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासो नीचो नैन। भेजने वाला तो कोई और है अर्थात ईश्वर है, लेकिन दानी होने का भ्रम लोग मुझ पर करते हैं, इसलिए मेरी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। कितनी महानता, कितनी विशालता है इस कथन में, यही है विनम्रता।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख

फोर स्वर्था श्रीमती कमल कुमारी दास का। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस का गायन। गायिका हैं वाणी जयराम, संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया।

श्री रामचरितमानस जैसे विशाल ग्रंथ की रचना करने में गोस्वामी तुलसीदास जैसा विनयी भक्त अपने को सर्वथा अक्षम तथा असमर्थ पाता है। उनका कहना है, मेरा भाग्य छोटा है और अभिलाषा बहुत बड़ी। मन में भरोसा इस बात का है कि उनकी कविता में श्री राम का प्रताप है, और भला संग मिलने पर बड़प्पन किसने नहीं पाया।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का गायन। गायिका थी वाणी जयराम, संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि सामये की बेड़ा खाड़ा चौकोट।
1: कास्तकार भाई बहन मन, रकम रकम चो साग कमानी तो तुम्ही मन करे साग। मांतर गोटुक साग जिचो फूल के आमट, फर के झोर साग और एचो पाना के भाजी साग रूप ने आमी खाऊं से तो हुन साग होए से मुनगा। दादा दीदी मन मुनगा ने कैक किसिम चो बल बफू आम के मिरे से जे आमचो देह पाए काजे खुबे नगद होए से। एचो कमानी कर ले आमी नगद देह पाए संगे अच्छा आमदनी वाले धरुक लाए सकूं। खेती हर दादा दीदी मन काई बले कमानी कर ले लेहरा पानी और माटी के बले दखोक लागे से। मुनगा कमानी तुम्ही सफाय बरन माटी चो बेड़ा ने करुक सकास। मांतर बालू बीती लाल माटी भुई और करिया माटी चो बेड़ा मुनगा कमानी काजे खुबे नंगत रहे से। मुनगा चो दुई किसिम होए से, बरककार बीती और खुबे बरक धरतो बीती। मुनगा कमातो काजे बले नंगत किसिम आसे। जसन एक बरक ने होतो मुनगा किसिम मंचो नाम KM1, PKM01, PKM02 और मादिकल मुरुंगाई। एक किसी मंचो मुनगा बरककार ने उपजन देव मुरियाय से एक ही बीचा मडाउन और कलम हिसाब ने बले रोपुक सकास। बूटा के रोपलो नहाले बुनलोर 90 से 100 दिन ने फूले उप मुरियाय से। ये मुनगा बूटा झपल नाय नानी बूटा मनसन होय से। असने बहुवर्षीय बल्ले खुबे बरक फसल धरतो किसी मन ने जाफना मूलानूर मुरुंगाई, चवा काचेरी मुरुंगाई, चिमुरुंगाई और पाल मुरुंगाई, पलामेड़ू मुरुंगाई नामन खुबे नगद किसिमन होय से। बहुवर्षीय मुनगा रोप तो काजे कलम विधि ने करुक सकास। बरक कारचो जुना रुख ले आमी नवा बूटा बना तो काजे कलम धरुक सकू। एचो काजे जड़ चो खंडिक ऊपर चो भाग बल्लो ने तना भाग नगद ठोसर और मजबूत होतोर आसे। रुख ले कलम काटून एक सीधा थाला ने रोपन देतो राय। बूटा ने झपके जड़ धरा तो काजे IBA रूटेक्स सी हार्मोन्स नाचो उखत के देतो राय। बरककार ने कमानी धरतो मुनगा किसिम के बीचा मंडाव लागू आए। आरु 1.5 एकड़ भूई ने मंडालो बीचा के 625 ग्राम लागू आए। बहुवर्षीय कलम विधि ने कलम रोप तो काजे खोड़लो खोदरा 2 से 3 भीता रतोरा से बूटा ले बूटा चो दूरिया बल्ले 5.35 मीटर बल्ले 12 से 15 हाथ रतोरा से। असने एक वर्षीय बल्लो ने बरककार ने होतो बीती मुनगा काजे खोदरा बल्ले 1.5 से 2 भीता रतोरा से। एक वर्षीय बल्ले बरककार ने होतो मुनगा काजे खोदरा 1.5 से 2.5 भीता रतोरा से आरु बूटा ले बूटा चो दूरिया 2.5 मीटर बल्ले 6 हाथ होतोरा से। बूटा मंडा तो पहेल खोदरा मन ने गोबर खत देउक लागे से। बीचा किसिम के रोप तो काजे प्लास्टिक झिली मन ने बीचा के अकराउन पाछे खोदरा ने रोपुक सकास। मुनगा कमानी ने बूटा मन के नगत गोबर खत देउक लागे से। बूटा मंडालो रोपलो बरककार ने गोबर खत बूटा चो 1 मीटर बल्ले 2.5 हाथ दूरिया ले गोंडरा पाड़ून देतो राय। संगे संग 230 ग्राम यूरिया, 1 किलो फास्फोरस और 250 ग्राम पोटास गोटोक गोटोक बूटा चो हिसाब ने देतो राय। मुनगा बूटा खांदक अमरलो तंवल होले ऊपर चो खेंदा खाबड़ा मन के चोखाड़ून देतो राय। चोखाड़ून दिलो ने नगद पील धरे दे और बूटा मन घुबरा घुबरा होए दे। जेथा ने नगद भाजी और फर फूल आम के मिरे से। बरककार चो कमानी मुनगा फसल चो पाना भाजी मन के 3 महीना ने टूटा तो असन हो जाए से आरु 6 महीना ने फर बले टूटा तो असन होक मुरियाय से। कलम मुनगा बल्लो ने जसन हमी खुबे बरक काजे लगालू से तो असन बूटा मन ने मुनगा फर 8 से 9 महीना ने धुरुक मुरियाय से। मुनगा बूटा ने बल नी रहे, बूटा खंडिक लेहरा ने ढुलन जाय से। एचो ले बचातो काजे आम के एचो जड़ चो लगे लगे ले बूटा के बचातो काजे खंडिक आड़ असन बनाव लागू आए। तो दादा दीदी मन असन उपाय करून भाती तुम्ही मुनगा कमानी करला साले नगत उपजन धरुक लाय सकासे।
0: आप सुन रहे थे बेड़ा खाड़ा चौगोट। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। हुलहुली में लीजिए सुनिए डंगई देवपाड़ वादक कलाकार हैं रामदास और साथी।

हुलहुली में आप सुन रहे थे डंगई देव पाड़। वादक कलाकार थे रामदास और साथी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम विवरण का। तो लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। छत्तीसगढ़ी साहित्य पत्रिका मोर भुइयां आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर।

0: सुबह 10 बजे सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। ये दोनों कार्यक्रम हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर, आकर्षण सुनिएगा पत्रांकन, प्रस्तुति होगी चंद्र ऋषि ठाकुर की, संपादन रूपाली पारोई का होगा और होगी मधुरिमा। सुबह 9 बजे प्रसारित करेंगे रूपक मुंद्रा मांझी, लेखक होंगे सुभाष पांडे, प्रस्तुति होगी बलबीर सिंह कच्छ की। एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे फिल्म मिलन के गीत सुबह 9:30 पर। लोकगीतों के कार्यक्रम गुर्दू में सुनेगा भत्री लोकगीत सुबह 10:30 पर। कलाकार होंगे नीलू राम और साथी। सुबह 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार। लोकवाद्य धुन के कार्यक्रम पाड़ में आप सुनेंगे लोकवाद्य धुन का कार्यक्रम पाड़ आप सुनेंगे दिन के 11:30 पर। वादक कलाकार होंगे गणपति कड़ियारी और साथी। कला और कलाकार ये कार्यक्रम सुनेगा दोपहर 12:30 पर प्रसारित किया जाएगा ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार। बेड़ा खड़ा चौकोट का पुनः प्रसारण होगा दोपहर 1:05 पर। दोपहर 1:10 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। दोपहर 2:30 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। दोपहर 3 बजे से FM बैंड 100.1 MHz पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। सांध्यकालीन सभा में आप सुनेंगे समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में शाम 5:10 पर सुनेगा युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी। ध्रुवी लोकगीत आप सुनेंगे शाम 6:35 पर। कलाकार होंगे सुखराम बघेल और साथी। बस्तर के स्वर शाम 7:21 पर सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। शिक्षकों के लिए रात 8 बजे इसमें सुनिएगा वार्ता बालक अवस्था में शरीर पोषण और स्वास्थ्य। वार्ताकार होंगी स्नेहलता दीवान। पिलामन काजे गोठ में आज सुनेगा उधम सिंह के बारे में रात 8:30 पर। प्रस्तुति होगी सुक्रुराम यादव की। पुरानी फिल्मों से ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:15 पर। रात 9:30 पर सुनेगा पत्रों पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम मोचो मंचो गीत। और लोकवाद्य धुन के कार्यक्रम पाड़ में आप सुनेंगे लोहंडी गुड़िन भरनी पाड़ और हिंगलाजिन माता पाड़। वादक कलाकार होंगे कालिदास और साथी और वक्त होगा रात 10 बजे का। श्रोताओ ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में क्रमशः संस्कृत और हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति भवने गतसायं आयोजितस्य रक्षा अलंकरण समारोहस्य समये राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधा कृष्णन वर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, अन्ये केन्द्रीय मन्त्रिणः, सशस्त्र सेनायाः वरिष्ठाधिकारिणश्च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपतिः समारोहस्य समये रक्षा सैन्य दलानां केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षक बलानां राज्य केन्द्र शासित प्रदेशयोः आरक्षकेभ्यश्च सप्त कीर्तिचक्राणि, पञ्चदश वीरचक्राणि, एकोनत्रिंशत् शौर्यचक्राणि च प्रदत्तानि। जम्मूनगरस्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमायां कर्तव्यपारायणतावधौ प्राणत्यागं कृतवन्तौ बीएसएफ इत्यस्य आरक्षकं दीपक चिंगखम इत्यमुं, उपनिरीक्षकं मोहम्मद इम्तियाज इत्यमुं च मृत्योपरान्तं वीरचक्रं प्रदत्तम्। आन्ध्रप्रदेशे गतसायं राष्ट्रिय इस्पात निगम लिमिटेड इत्यस्य विशाखापत्तनम स्टील प्लांट इत्यत्र महते अग्निदुर्घटनायां अष्ट जनाः मृताः, अन्ये षट् जनाः च व्रणिताः अभवन्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी, मुख्यमन्त्री एन चन्द्रबाबू नायडू च अस्यां दुर्घटनायां मृतजनानां प्रति शोकं प्रकटितवन्तः। एतदतिरिच्य प्रधानमन्त्रिणा प्रत्येकस्य मृतकस्य निकटवर्ति सदस्यस्य कृते द्विलक्षरूप्यकाणां, व्रणितानां कृते पञ्चाशत्सहस्ररूप्यकाणां च अनुग्रहराशेः घोषणा कृता। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबन्धन व्यवस्थायाः एलपीएमएस इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् एलपीएमएस इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिक तन्त्रज्ञान सक्षम सीमा प्रबन्धन व्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। सप्तचत्वारिंशदधिकद्विसहस्रतमवर्षपर्यन्तं व्यापार सौकर्यं, सम्पर्कं, राष्ट्रिय सुरक्षां, विकसित भारतस्य दृष्टिकोणं च सुदृढं कर्तुं लक्ष्येन सह एतत् मञ्चः संरेखितः अस्ति। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः पश्चिमबंगस्य विकासयात्रां त्वरितं कर्तुम् उपायेषु विचारं कर्तुं पश्चिमबंगस्य मुख्यमन्त्रिणा शुभेन्दु अधिकारिणा सह नवदिल्ल्यां मेलनं कृतवती। राज्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु ऋणप्राप्ति विषये, सर्वकारस्य योजनानां कार्यान्वयनस्य विषयेऽपि चर्चा जाता। वित्तमन्त्री सीतारामनः अघोषयत् यत् राज्यसर्वकारेण सह निकटसमवायेन प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना, प्रधानमन्त्री जनधन योजना, प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमन्त्री स्वनिधि योजनादीनां नवीकृत संतृप्ति अभियानं प्रत्येकं योग्यं लाभार्थिम् आच्छादयितुं क्रियते। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् नवान्वेषणैः वैश्विक सहभागित्वेन अन्ताराष्ट्रिय आपणे प्रवेशस्य विस्तारेण च आगामिषु पञ्चवर्षेषु भारतस्य औषध निर्माण उद्योगस्य आकारः द्विगुणितः भविष्यति। श्रीगोयलवर्यः ह्यः नवदिल्ल्यां फार्मास्यूटिकल क्षेत्रस्य वैश्विक राजदूत सम्मेलनं षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमवर्षस्य ग्लोबल ड्रग रेगुलेटर्स कॉन्क्लेव तथा षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमवर्षस्य फार्मा एण्ड हेल्थ केयर इत्यस्य अन्ताराष्ट्रिय प्रदर्शन्याः पूर्वालोकन समारोहं च सम्बोधयन् इदमुक्तवान्। केन्द्रीय मन्त्री जी किशन रेड्डी वर्यः अवदत् यत् नरेन्द्र मोदिनः सर्वकारस्य द्वादश वर्षेषु भारतस्य अंगार खनन क्षेत्रयोः महतीं परिवर्तनम् अभवत्। महिला क्रिकेट क्रीडायां युनाइटेड किंगडम देशस्य कार्डिफ नगरे षड्विंशत्यधिक द्विसहस्रतम वर्षस्य आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्व चषक क्रीडायाः प्राक् ह्यः प्रथमायां पूर्वाभ्यास क्रीडायां भारतेन वेस्टइंडीज दलं षड्विंशति धावनांकैः पराजितम्। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर

0: पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्ष में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में कल फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हो चुके हैं, जिससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। असम की प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई के लिए रवाना की गई है। श्री गोयल ने कहा कि इस साल से तेजपुर लीची को वैश्विक पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और पूर्वोत्तर भारत के कृषि उत्पादों के लिए नए अवसर खुलेंगे। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हुए हैं। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार ये हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। दुर्घटना की जांच जारी है। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले शामिल थीं। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना ये शुल्क नहीं लगाया जा सकता। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। ये फैसला अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज दम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

संघर्ष, स्वाभिमान और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता ही किसी समाज की सबसे बड़ी शक्ति होती है। इसी प्रेरक भावना के साथ आज के नमस्कार जगदलपुर में स्वीकार कीजिए तृप्ति परिडा का अभिवादन। आज आपके लिए है पत्रांकन और मधुरिमा।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1-5-1-0-2।
3: श्रोताओं, आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा और जनजातीय समाज के प्रेरणा स्रोत भगवान बिरसा मुंडा को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहे हैं। 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातवी गांव में जन्मे बिरसा मुंडा ने कम उम्र में ही आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष का मार्ग चुना। उन्होंने जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए लोगों को संगठित किया। ब्रिटिश शासन और शोषणकारी व्यवस्थाओं के विरुद्ध उनके नेतृत्व में चला उल गुलान आंदोलन जनजातीय चेतना का प्रतीक बन गया। बिरसा मुंडा ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, शिक्षा को बढ़ावा देने और आत्मसम्मान की भावना को जगाने का भी कार्य किया। उनकी वाणी और नेतृत्व से हजारों लोग स्वतंत्रता और न्याय के लिए प्रेरित हुए। ब्रिटिश सरकार ने उनके बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। रांची जेल में कैद के दौरान 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। सरकारी अभिलेखों में मृत्यु का कारण हैजा बताया गया। हालांकि उनके निधन को लेकर समय समय पर विभिन्न प्रश्न भी उठाए जाते रहे हैं। अल्पायु में ही शहीद होने के बावजूद उनके विचारों और संघर्ष अमर हो गए और आज भी भगवान बिरसा मुंडा साहस, स्वाभिमान और जनसेवा के प्रतीक के रूप में याद किए जाते हैं। उनकी पुण्यतिथि पर हम इस महान जननायक को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्रोताओं, देश की आजादी और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए देश के सभी आदिवासी समुदायों ने अदम्य साहस और बलिदान का परिचय दिया। उनके संघर्षों ने आजादी की लौ जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है।

0: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 cc तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
2: आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर। श्रोताओं, भावनाओं, शुभकामनाओं और अपनेपन से सजे आपके पत्र ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। तो आइए खोलते हैं पत्रों की पोटली और सुनते हैं पत्रांकन। प्रस्तुति है चंद्र ऋषि ठाकुर की, संपादन है रूपाली पारोई का।

0: पत्रांकन सुन रहे आप सभी श्रोताओं को चंद्र ऋषि ठाकुर
1: और रूपाली पारे का
0: नमस्कार। तो रूपाली जी, आज हम पत्रांकन का एक नया अंक लेकर हाजिर है अपने श्रोताओं के समक्ष, और मैं देख पा रही हूँ कि हमारे पास बहुत सारे संदेश है। तो देरी ना करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं, और आप बताएं कि आज हमें पहला संदेश किन्होंने भेजा है।
1: आज पहला संदेश मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू जी का आया है। ये लिखते हैं, सादर अभिवादन, पत्रांकन कार्यक्रम में प्रशंसा पत्र है ये। दिनांक 27 मई के प्रसारित श्रोता सुमन कार्यक्रम को लेकर आया आदरणीय सुशील कुमार ठाकुर सर जी ने हमें मस्त मस्त फिल्मी गीत सुनवाए और श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी गानों को सुनकर हमारा मन गदगद हो गया, और इसी तरह मनोरंजन कराते रहे। और बहरहाल सफल प्रस्तुति के लिए सुशील ठाकुर जी और आकाशवाणी परिवार को हार्दिक बधाई।
0: तो सबसे पहले आप सभी को समय निकालकर हमें संदेश भेजने के लिए धन्यवाद।

0: और हमारे कार्यक्रम को प्रसन्न करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ से और भी बहुत सारे फरमाइशी
1: जी
0: कार्यक्रम जाते हैं। जैसे अभी अभी नया नया हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है जो कि
1: जी
0: श्रोताओं के पत्रों पर ही आधारित
1: आधारित
0: है,
1: है
0: और
1: जी
0: जो लोक गीतों का कार्यक्रम है
1: जी जी
0: मोचो मंचो गीत, और ये कार्यक्रम जाता है हर मंगलवार को रात में 9:30 बजे। तो
1: जी
0: हमारे श्रोता इस कार्यक्रम में भी अपने पत्र भेज सकते हैं और अपने पसंद के गीत सुन सकते हैं। तो फिर से आप तीनों को, श्रवण जी, योगेश जी और राहुल जी, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं, बताएं
1: जी
0: कि अगला मैसेज किनका है।
1: जी अगला मैसेज आया है मेघापारा लोरमी से कुसुम लता साहू जी का। ये लिखती हैं, जय जोहार। जुबान सबले गुत्तुर जीनियस आए, एखर उदाहरण दीदी बहिनी के गोट यानी घर द्वारला रिकिम रिकिम के फूल ले सजाए बर आथे, तेन दीदी बहिनी बन के जुबान हा आए। इखर जुबन माँ साक्षात सरस्वती विराजमान रहिए, हर आखर हा मधुरस ले बढ़ के गुत्तुर रही थे। ये मन जौन गोट बातला दही कसमत के लेवना निकाल के घीव बनाए बर आखिर माँ आगे के आंच माँ गरम करते, ओखर मही हा गली खोर के रंगईला अब बला थे। बढ़िया प्रस्तुति खातिर सबो झन ले हृदय ले बधाई, औ गली अंगना घर कुरियाला महकाए खातिर सुपा सुपा धन्यवाद।
0: रूपाली जी, लगता है आपको छत्तीसगढ़ी बोली नहीं आती है।
1: जी
0: ये जो संदेश भेजा है कुसुमलता साहू
1: बिल्कुल
0: जी ने,
1: हाँ
0: उन्होंने
1: जी
0: छत्तीसगढ़ी में भेजा है,
1: जी जी
0: तो जो श्रोता छत्तीसगढ़ी नहीं समझ पाते हैं
1: हाँ
0: उनके लिए
1: जी
0: मैं इसे हिंदी में
1: जी
0: बता देती
1: बिल्कुल
0: हूँ।
1: बिल्कुल
0: ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो घर आंगन कार्यक्रम है उसमें जितने भी कंपियर बहनें आती हैं, उनकी जो जुबान है, उनकी
1: जुबान
0: जो
1: जी
0: बोली है, वो
1: बोली
0: बहुत
1: है
0: मधुर होती
1: मधुर
0: है।
1: होती है
0: और
1: जी
0: उनकी बोली इस तरह से होती है जैसे हम घी जब
1: घी
0: बनाते हैं तो
1: हाँ
0: उसकी जो महक है वो
1: महक
0: बाहर
1: बाहर
0: फैलती है,
1: फैलती जी
0: उसी
1: जी
0: तरह
1: जी
0: उनकी बोली
1: बोली
0: की जो महक है वो बाहर फैलती है और
1: जी
0: लोग आकर्षित हो जाते हैं।
1: जी
0: तो इसका जवाब मैं भी छत्तीसगढ़ी में देना चाहूंगी।
1: जी
0: तो सबले
1: बिल्कुल
0: पहली हमारे जो बहनी है कुसुमलता साहू जी है, हमला संदेश भेजे है, तो आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मन समय निकाल के हमला संदेश भेजे, और आप मना जेन तरीका ले यहाँ हमारे कार्यक्रम के जो तुलना है वो घी ले और घी के जो महक आते तेकर ले करे हा, ये बहुत ही अच्छा लगी से,
1: अच्छा
0: मतलब
1: लगे
0: पढ़ के
1: हाँ
0: बढ़िया लगी से।
1: जी जी
0: और आप मन कथो कि हमार बोली माँ सरस्वती बिराज थे करके, तो इसने आप मन घला जब संदेश भेजते तो ऐसे लगते कि आप मन जो लिखे हो तहु माँ सरस्वती बिराजे हावे। और छत्तीसगढ़ी तो बर मीठी बोली हरे,
1: हाँ
0: और
1: जी
0: छत्तीसगढ़ी कभू कभू पढ़ के हम उला बढ़िया लगते।
1: जी
0: तो
1: जी
0: कुसुम लता साहू जी, आप मन है इसने हमार कार्यक्रम ला सुनत रहो, और जो हमारा घर द्वार घर आंगन कार्यक्रम हमार केंद्र ले प्रसारित करथन वो तो हमार बहनीच मन बर करथन,
1: हाँ
0: तो हमार
1: जी
0: बहनी मन है ये कार्यक्रम मन ला सुने और बढ़िया एकर आनंद ले, यही हमन चाहथन। तो आप मन है इसने संदेश घला आगू घला भेजते रहो हमार कार्यक्रम ला सुन के। तो एक बार फिर से कुसुमलता साहू जी, आप मल्ला दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और
1: धन्यवाद
0: खुबे खुबे मया।
1: माया सही। चलिए अगला पत्र पढ़ते हैं। ये पत्र आया है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन दिवांगन कौशला दिवांगन हेमलता डिंपल दिवांगन जी का। ये लिखते हैं, नमस्कार जय जोहार। पिछले पत्रांकन में मनिंदर सिंह देवगुण जी, सुखेंदु मलिक जी, आप दोनों की प्रस्तुति लाजवाब रही। पत्रांकन की लाजवाब प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। नमस्कार जगदलपुर, फोन इन चाहत, श्रोता सुमन, सभी कार्यक्रम में आशा दुल्हनी मैम, तृप्ति परिडा मैम, हरिप्रिया पाणिग्रही मैम, जूही जोशी मैम, प्रीति गुप्ता मैम, सभी कार्यक्रम सुनकर अच्छा लगा। आकाशवाणी जगदलपुर के सभी स्टाफ को धन्यवाद, शुक्रिया। आकाशवाणी जगदलपुर में एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ है, मोचो मंचो गीत, जो मंगलवार रात लगभग 9:30 में कार्यक्रम शुरू होता है और हम सुनते हैं और लगातार पत्र भेज रहे हैं। लेकिन 2 जून को मोचो मंचो गीत का प्रसारण हुआ, केवल गीत बजाए गए और फरमाइश नाम नहीं शामिल किए गए। जब फरमाइशी नाम शामिल नहीं करना है तो कार्यक्रम में हम पत्र क्यों भेजे? हम तो लगातार मोचो मंचो गीत में पत्र भेज रहे हैं। आकाशवाणी जगदलपुर केंद्र निदेशक जी से निवेदन है कि आप मेरे बात पर गौर करें।
0: तो सबसे पहले आप सभी को हमें संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने हमारे कार्यक्रमों को पसंद भी किया है और शिकायत भी
1: शिकायत
0: साथ
1: भी है
0: में की
1: जी
0: है।
1: जी जी
0: तो जो आपने हमारे कार्यक्रम को पसंद किया और हमारे जो उद्घोषक थे उन्हें आपने यहाँ पे बधाई प्रेषित किया है, ये तो हम उन तक पहुंचा
1: जी
0: देंगे।
1: बिल्कुल
0: और रही बात आपकी शिकायत की कि 2 जून को मोचो मंचो गीत का प्रसारण हुआ था लेकिन उनमें श्रोताओं के नामों को
1: नामों
0: शामिल
1: के शामिल
0: नहीं
1: नहीं
0: किया
1: किया
0: गया,
1: गया था जी
0: तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समय के साथ साथ
1: जी
0: कार्यक्रमों को एडजस्ट करना पड़ता
1: जी
0: है
1: जी
0: कि हमें किस तरह के कार्यक्रम बजाने हैं।
1: जी
0: तो
1: जी

0: दिन भी वैसा ही कुछ हुआ था। समय हमारे पास थोड़ा कम था
1: जी
0: और ऐन वक्त पर हमें कार्यक्रम की रूपरेखा को बदलना
1: बदलना
0: पड़ा
1: पड़ता
0: था।
1: है जी।
0: तो उस समय हमें कार्यक्रम की रूपरेखा जो है वो जल्दबाजी में बदलना पड़ा
1: बदलना
0: था
1: पड़ता है
0: और
1: जी,
0: इस कारण मोचो मंचो गीत में हम श्रोताओं के जो खत है उन्हें शामिल नहीं कर
1: कर
0: पाए
1: पाए
0: थे
1: जी जी
0: और इसके लिए हमें खेद है और हम ये आपको आगे शिकायत का
1: शिकायत
0: मौका
1: मौका
0: नहीं
1: नहीं
0: देंगे
1: देंगे
0: और
1: जी
0: आगे
1: जी
0: आपके खतों को जरूर शामिल किया जाएगा।
1: जी
0: तो आप हमें खत भेजते रहें रोशन जी, और आप हमारे काफी पुराने श्रोता भी हैं तो हम यही चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े ही रहें। अब आगे बढ़ते हैं, बताइए किनका
1: जी
0: पत्र है।
1: अगला पत्र आया है हमारे पास ग्राम बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा जी का। ये लिखते हैं, ये 2 जून को प्रसारित आकाशवाणी जगदलपुर से आज एक ही कलाकार के अंतर्गत महान फिल्म निर्माता निर्देशक मणिरत्नम की पर समर्पित गीत और जानकारी सुना। बहुत ही संवेदनशील और ज्वलंत मुद्दों पर फिल्म बनाने वाले ऐसे महान निर्माता निर्देशक को उनके बेहतरीन फिल्मों के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। शुभकामनाएं और बेहतरीन गीत के साथ जानकारी जुटाकर लायक कार्यक्रम पेशकर्ता निशा नायर जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
0: तो आपको भी संदेश लिखने के लिए धन्यवाद। और मणिरत्नम जी की इन्होंने यहाँ पे बात की है तो
1: जी जी
0: वो तमिल फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने तो क्रांति
1: हाँ
0: लाई ही
1: वो
0: थी,
1: तो है।
0: साथ ही साथ उन्होंने हिंदी
1: हिंदी
0: सिनेमा में भी
1: जी
0: क्रांति
1: जी
0: लाई
1: जी
0: और उनकी जो फिल्में थी जैसे रोजा हो
1: रोजा हो गया
0: गया,
1: जी।
0: बॉम्बे, ये ऐसी फिल्में थी जो उस टाइम पे सुपर डुपर हिट भी
1: जी
0: रही।
1: जी जी
0: तो उनके निर्माण का तरीका ही थोड़ा अलग
1: अलग है,
0: था
1: अलग है।
0: जी, और वो काफी प्रसिद्ध भी हैं और कई राष्ट्रीय
1: राष्ट्र
0: पुरस्कार
1: पुरस्कार
0: भी
1: भी
0: उन्हें
1: उन्हें
0: मिले हैं।
1: जी जी
0: तो ऐसे जो निर्देशक है या फिर ऐसे जो रत्न है जो मणिरत्नम
1: जी
0: साहब है
1: जी
0: उनको याद करना तो बनता है
1: बनता है
0: और ये
1: बिल्कुल
0: हमारी तरफ से उन्हें एक भेंट
1: भेंट भी
0: समझ
1: थी
0: लीजिए
1: जी
0: वो
1: जी
0: था।
1: अगला खत आया है हमारे पास। ये खत हमें लिख भेजा है जांगड़पाल राउतपारा ब्लॉक छिंदगढ़ जिला सुकमा से रितेश यादव जी ने लिखा है ये खत। ये लिखते हैं, कार्यक्रम पत्रांकन प्रस्तुत करने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारा भी नमस्कार आपको।
0: जी
1: मैं आपके केंद्र से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों को समय निकालकर जरूर सुनता हूँ। आपके केंद्र के कार्यक्रम हमेशा ज्ञानवर्धक, मनोरंजक एवं हमारी स्थानीय संस्कृति से जुड़े होते हैं। विशेष रूप से नमस्कार जगदलपुर, बस्तर डायरी, गांधी चर्चा, देवपाड़, एक ही फिल्म से फिल्म संगीत, श्रोता सुमन, घर द्वार, युवाणी, बस्तर के स्वर एवं आमचो गांव जैसे कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद है। जब हम छोटे थे तब अक्सर पिताजी सुबह सुबह रेडियो ऑन कर देते थे और रेडियो की मधुर आवाज सुनकर हमारी नींद खुल जाती थी। बचपन से ही आकाशवाणी जगदलपुर से एक अपनापन जुड़ा हुआ है। आज भी आपके कार्यक्रम सुनकर वही पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। मेरा सबसे पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर है। इसकी प्रस्तुति शैली, स्थानीय खबरें, श्रोताओं से जुड़ाव और मधुर अंदाज मन को बहुत अच्छा लगता है। यह कार्यक्रम बस्तर की संस्कृति और यहाँ की मिट्टी की खुशबू को लोगों तक पहुंचाने का बहुत सुंदर माध्यम है। मैं आकाशवाणी जगदलपुर की पूरी टीम को उत्कृष्ट प्रसारण हेतु हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार के शानदार कार्यक्रम प्रसारित होते रहेंगे। मैं आपके आकाशवाणी में भ्रमण हेतु आना चाहता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ? यदि हाँ तो कैसे? कोई परमिशन लेना तो नहीं है? इन्होंने ये
0: अच्छा,
1: लिखा है
0: ये पूछ रहे हैं।
1: जी
0: वैसे इनका संदेश जब आपने पढ़ा
1: जी
0: तो जो हमारे आकाशवाणी का उद्देश्य है
1: जी
0: सूचना, मनोरंजन और ज्ञान,
1: जी जी
0: इनके संदेश को पढ़कर ऐसा हमें प्रतीत हुआ
1: प्रतीत
0: कि
1: हुआ है
0: ये
1: कि
0: जो हमारे तीनों उद्देश्य हैं
1: ये
0: उसकी
1: पूरे हो रहे
0: पूर्ति
1: हैं,
0: हमने
1: हो रही
0: अच्छे
1: है
0: से की है
1: जी।
0: और हमारा जो ध्येय वाक्य है
1: हाँ
0: भोजन हिताय भोजन
1: भोजन
0: सुखाय,
1: सुखाए
0: तो इसको भी हम भली भांति पूर्ण कर रहे
1: पूर्ण
0: हैं
1: कर
0: और
1: रहे हैं,
0: इनके बस एक संदेश के माध्यम से हमें ये चीज पता
1: पता
0: चल
1: चल
0: गया
1: रही है जी।
0: और इन्होंने बहुत ही सुंदर शैली
1: शब्दों,
0: में
1: हाँ शब्दों
0: इस
1: और शैली का
0: संदेश
1: उन्होंने
0: को लिखा है
1: जी जी
0: और आपने कुछ जानना भी चाहा है कि क्या आप आकाशवाणी में भ्रमण हेतु आना चाहते हैं तो आप हमसे मिलने के लिए आ सकते हैं।
1: जी
0: और यदि कोई शैक्षणिक भ्रमण है जिसमें आपको कुछ सूचना चाहिए तो उसके लिए परमिशन लेनी
1: परमिशन
0: पड़ती
1: लेनी
0: है,
1: पड़ेगी जी
0: लेकिन अगर सिर्फ मिलने की बात हो तो आप हमारे स्टूडियो में हमसे मिलने के लिए और हमारे उद्घोषकों से या फिर जो भी आपके
1: कॉम्पियरों से भी,
0: पसंदीदा
1: पसंदीदा
0: कंपियर
1: कॉम्पियर
0: हैं
1: से
0: उनसे
1: उनसे भी
0: भेंट
1: मिलना
0: करने के
1: चाहे
0: लिए
1: तो
0: आप
1: जी
0: आ
1: जी
0: सकते हैं।
1: वैसे इनकी प्रतिक्रिया हमें आगे और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है।
0: जी जी।
1: तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो और खास करके हमारे आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों को इतने चाव से सुनते हैं और पसंद करते हैं। इसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी।
1: अगला पत्र आया है हमारे पास, अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती वंदना गौहर, चंद्रेश गौहर और जयपाल यादव जी का। ये लिखते हैं, सबसे पहले आप हमारा अभिवादन स्वीकार करें। पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत बड़े अभियानों से पहले व्यक्ति के दैनिक जीवन से होती है। विश्व पर्यावरण दिवस का संदेश स्पष्ट है कि विकास और पर्यावरण परस्पर विरोधी नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक है। प्रकृति का संरक्षण ही संस्कृति का संरक्षण है और संस्कृति का संरक्षण ही मानवता के सुरक्षित भविष्य की आधारशिला है। प्रकृति के पास खुद को ठीक करने की असीम और जादुई शक्ति है। उसे हमारे किसी कृत्रिम प्रयास की जरूरत नहीं बल्कि हमें केवल उसके रास्ते के अवरोधों और इंसानी दखल को हटाना होगा। पर्यावरण की रक्षा करना प्रकृति पर कोई उपकार नहीं है, ये तो हमारी अपनी सांसों और आने वाली नस्लों के वजूद की जंग है। क्योंकि जब तक प्रकृति सुरक्षित है तभी तक हमारा अस्तित्व है। आपके केंद्र से हमने दिनांक 5 जून को सुबह की सभा में कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर के तहत इस खास दिवस पर विस्तृत चर्चा सुनी जो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणास्पद, समसामयिक, सारगर्भित और उपयोगी लगी। कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर हमारा बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से अंचल की ताजा तरीन समसामयिक जानकारियां सुनने को तो मिलती ही है, साथ ही कई महत्वपूर्ण और रोचक और विशेष अवसरों के महत्व को दर्शाती बहुत जानकारियां मिल जाती हैं। आपके केंद्र द्वारा प्रसारित कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत केंद्र की उद्घोषिका प्रिय बहन आशा दुल्हानी जी द्वारा दिनांक 22 मई को सावन टांक, 25 मई को दिवंगत फिल्म अभिनेता सुनील दत्त जी एवं 28 मई को फिल्म अभिनेता करण जौहर जी पर दिनांक 1 जून को बहन हरिप्रिया जी द्वारा सुमन कल्याणपुर जी पर दिनांक 3 जून को जूही जोशी जी द्वारा फिल्म निर्माता निर्देशक महेश भट्ट जी पर दिनांक 5 जून को बहन हरिप्रिया जी द्वारा मशहूर फिल्म अभिनेत्री नूतन जी पर जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए, कम समय के कार्यक्रम में बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों का ज्ञानोपार्जन तो हुआ ही, साथ ही एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिले। उपरोक्त सभी उद्घोषक बहनों को हमारा दिल से साधुवाद स्वीकार हो। आकाशवाणी ने भारत के कोने कोने तक अपनी पहुंच बनाई है। आकाशवाणी ने विविध भाषाओं और बोलियों को मंच दिया। क्षेत्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत कलाओं और स्थानीय साहित्य को बढ़ावा देने में आकाशवाणी की भूमिका अतुलनीय है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ध्येय वाक्य के साथ आकाशवाणी सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम से देश के करोड़ों श्रोताओं के जीवन को समृद्ध बना रहा है। जून माह में आकाशवाणी अपनी यात्रा के 90 वर्ष पूर्ण करने जा रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि श्रोताओं के लिए 15 मिनट का हर सप्ताह में कोई ऐसा कार्यक्रम प्रसारित करें जिसमें श्रोताओं की सीधे भागीदारी हो। फोन के माध्यम से श्रोताओं के अनुभव रिकॉर्ड कर उन्हें प्रसारित करें। श्रोताओं के बिना आकाशवाणी का अस्तित्व अधूरा है। आशा है आप मेरे इस निवेदन पर अवश्य ही अपनी कृपा करेंगे। शेष अगले पत्र में।
0: काफी लंबा पत्र
1: था जी, बिल्कुल।
0: और सबसे पहले तो वंदना गौहर जी, चंद्रेश गौहर जी और जयपाल यादव जी, आप तीनों को धन्यवाद कि आपने समय निकालकर हमें पत्र भेजा। और इनके संदेश को पढ़कर हमें ये प्रतीत होता है, हमें ये मालूम चलता है कि ये सिर्फ एक जागरूक श्रोता भी नहीं, जागरूक नागरिक
1: भी है।
0: क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने संदेश की शुरुआत की है प्रकृति के महत्व के बारे में बातें करते हुए, लेकिन मैं अपने भारत में देखती हूँ, मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं दूसरे देशों में भी जाके वहां के जो पर्यावरण है, वहां किस तरह से जीवन शैली है, उसको भी मैं देख पाऊं।
1: जी,
0: तो जब मैंने हमारे देश और दूसरे देशों की तुलना की तो मुझे ये जानने का मौका मिला कि जैसे हमारे देश में हम पेड़ों को पूजते हैं, पेड़ों को ही काटते हैं, हम नदियों को पूजते हैं, नदियों को ही गंदा करते हैं, और जो हमारे धर्म स्थल है जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा साफ सुथरा होना चाहिए, वहीं पर ही हम
1: सबसे ज्यादा गंदगी करते हैं। बिल्कुल सही।
0: हम भगवान को हमें श्रद्धा अर्पण करना चाहिए, उन्हें प्रेम अर्पण करना चाहिए, अपनी भक्ति दिखानी चाहिए, लेकिन हम उसके चक्कर में इतनी सारी गंदगी साथ में लेकर आते हैं और उसे गंगा में बहा देते हैं। अभी दुनिया की जो 5 सबसे गंदी नदियां हैं उनमें गंगा का भी नाम शामिल है, जिसे हम माँ बोलते हैं और इतना पूजते हैं। यमुना, उसे भी हम माँ मानते हैं, लेकिन उसे भी हमने गंदा
1: कर दिया। सही है।
0: तो प्रकृति को बचाना भी है और उनको साफ सुथरा, स्वच्छ
1: भी बनाना है,
0: तभी हम एक डेवलप्ड कंट्री कहलाएंगे,
1: विकासशील देश भी
0: देश कहलाएंगे जी। और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें भी स्वच्छ और अच्छा माहौल दे पाएंगे
1: जी बिल्कुल।
0: और अगर हम AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें जो वायु प्रदूषण को भी दर्शाता है, उनमें भी भारत का जो नाम है सबसे टॉप 5 देशों में शामिल।

0: है भारत
1: जी
0: का
1: जी
0: नाम, तो सोचिए कितनी गंदगी हम
1: गंदगी
0: फैला
1: है,
0: रहे
1: सही
0: हैं। तो
1: है।
0: हमें प्रकृति को तो बचाना ही है, पर्यावरण को बचाना है, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हम अपने घर की साफ सफाई तो करते हैं लेकिन अपने आसपास भी
1: आसपास
0: गंदगी ना
1: ना
0: फैलाएं,
1: फैलाए
0: आसपास को भी साफ करें, धर्म
1: जी,
0: स्थलों का खासकर
1: खास खास
0: साफ
1: कर
0: सफाई रखें
1: जी
0: क्योंकि वहां पे दूसरे देशों के नागरिक भी आते हैं।
1: जी
0: और आपने साथ में अंत में जाते जाते एक और चीज कही थी कि श्रोताओं के लिए कुछ एक और कार्यक्रम भी शुरू करें, तो हम इस पर गौर जरूर करेंगे
1: जी
0: और हम देखते हैं कि आगे प्रक्रिया क्या हो सकती है इस पर। और आपने अपना समय दिया और इतना अच्छा संदेश हमारे श्रोताओं को दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं रूपाली जी, आप
1: जी
0: बताएं कि किन का संदेश है।
1: अगला संदेश आया है देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश राम मिस्त्री जी का। इन्होंने लिखा है, पत्रांकन कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं को हमारा सादर नमस्कार। 5 जून को नमस्कार जगदलपुर कार्यक्रम में विश्व पर्यावरण दिवस पर जल, जमीन और जंगल से संबंधित जानकारी के साथ कार्यक्रम को बेहतरीन गीतों से सजाया। वास्तव में हमें जल को बचाना होगा, इसके लिए छत के ऊपर वर्षा के जल को धरती में संग्रहित करना पड़ेगा, साथ ही जमीन को भी प्लास्टिक मुक्त करना होगा और किसानों को अपनी जमीन में संतुलित खाद का उपयोग करके बचाना होगा। लगातार रोज कटती पेड़ों को बचाना होगा, तभी जंगल बच पाएगी और हम स्वच्छ हवा ले पाएंगे, तभी पर्यावरण का संतुलन रहेगा। कविता पाठ में मनोज पाणिग्राही से काव्य पाठ में वन और जमीन पर बहुत सुंदर कविता अच्छा लगा। कविता पाठ के लिए मनोज पाणिग्राही को हार्दिक बधाई। मधुरिमा में सुंदर गीतों की प्रस्तुति के लिए प्रस्तुतकर्ता शिवा सिंह जी को ढेर सारी बधाई। इसी दिन एक ही कलाकार कार्यक्रम केंद्रित रहा अभिनेत्री नरगिस दत्त पर, बेहतरीन जानकारी के साथ सुंदर गीतों की प्रस्तुति अच्छी लगी। साथ ही श्रोताओं की लोकप्रिय कार्यक्रम श्रोता सुमन में बहुत सुंदर गीतों की प्रस्तुति के साथ श्रोताओं के अधिक से अधिक पत्रों को शामिल करने के लिए प्रस्तुतकर्ता हरिप्रिया जी को हार्दिक बधाई। 6 जून को प्रसारित नमस्कार जगदलपुर कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन पर माधुरी यादव जी की वार्ता में पर्यावरण पर हो रहे परिवर्तन पर जानकारी अच्छा लगा। एक ही फिल्म के क्रम में फिल्म वारिस की सभी गाने अच्छे लगे, इसके लिए तृप्ति परिडा जी को बधाई। इसी दिन एक ही कलाकार कार्यक्रम में सह अभिनेता विवेक मुशरान पर केंद्रित जानकारी और गीतों की प्रस्तुति अच्छी लगी। श्रोता सुमन कार्यक्रम में बहुत सुंदर गीतों की प्रस्तुति के साथ श्रोताओं के अधिक से अधिक पत्रों को शामिल करने के लिए प्रस्तुतकर्ता जूही जोशी जी को हार्दिक बधाई। 7 जून को देश की वाणी आकाशवाणी कार्यक्रम में आकाशवाणी के पूर्व वरिष्ठ उद्घोषिका श्रीमती कल्पना यादव जी से श्री दीपक हटवार जी की बातचीत में उनके पूरे आकाशवाणी में किए गए योगदान के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा लगा। इसके लिए कल्पना यादव जी दीपक हटवार जी के साथ आकाशवाणी जगदलपुर केंद्र को ढेर सारी बधाई। इसी दिन फोन इन चाहत कार्यक्रम में श्रोताओं से बहुत सुंदर बातचीत और उनके पसंद के गीत सुनवाने के लिए प्रस्तुतकर्ता हरिप्रिया जी के साथ आकाशवाणी जगदलपुर केंद्र को हार्दिक बधाई।
0: इन्होंने भी काफी लंबा संदेश लिखा है, हमारे श्रोता
1: जी
0: लगता है रुचि से हमारे सारे कार्यक्रमों को सुनते हैं
1: लगभग
0: और
1: सारे जितने पत्र हैं बहुत लंबे
0: लंबे
1: लंबे
0: लंबे
1: हैं।
0: ही हैं।
1: हाँ
0: और ये तो हमारे नियमित श्रोता भी हैं और हमें
1: जी
0: नियमित रूप से संदेश अपना भेजते रहते हैं, और इनके पत्र को भी देखकर ऐसा लगता है कि ये भी पर्यावरण के प्रति काफी
1: बहुत
0: जागरूक है।
1: जागरूक
0: इन्होंने
1: है।
0: यहाँ पे प्लास्टिक की बात की है, पहले
1: जी
0: तो हमने पर्यावरण के बारे में बात कर ही ली है। प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल,
1: जी
0: जिसे ना किसी भी प्रकार से उन्हें नष्ट
1: नष्ट
0: नहीं
1: नहीं
0: किया
1: किया जा
0: जाता,
1: सकता जी,
0: इसलिए अभी आप बाहर निकलेंगे, आप खुद ही अभी अपने घर के बाहर झांक कर देख लीजिए,
1: तो आस पड़ोस पे
0: आस पड़ोस
1: झिल्ली
0: में
1: ही झिल्ली,
0: प्लास्टिक ही
1: प्लास्टिक झिल्ली
0: प्लास्टिक
1: झिल्ली
0: आपको
1: जी।
0: मिलेगा। और उसे हम किसी तरह से नष्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका जो धरती पर जो थल प्रदूषण जिसे हम कहते हैं वो
1: जी
0: बढ़ता ही जा रहा है। और आपको एक बात जानकर हैरानी होगी रूपाली जी,
1: जी
0: कि जो खोज करता है उन्होंने ये पाया कि हमारा जो समुद्र है, सागर है,
1: जी
0: उसमें एक आइलैंड, आइलैंड मतलब एक द्वीप जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा प्लास्टिक के पूरे अपशिष्ट पदार्थ वहां पे है। तो
1: जी
0: अब आप सोच सकते हैं कि एक इंसान कितना ज्यादा प्लास्टिक का उपयोग करता है। हम भी जब बाजार जाते हैं थैला भूल जाते हैं, कुछ घरों में तो ऐसा होता है कि रोजाना प्लास्टिक
1: आ ही
0: आ
1: जा रहा है
0: रहा है
1: जी जी
0: और
1: जी
0: उसे हम नष्ट नहीं
1: नहीं
0: कर
1: कर
0: पा रहे
1: पा
0: हैं।
1: रहे
0: तो इस
1: हैं।
0: प्रकार से थल प्रदूषण जो है बहुत बढ़ रहा है, और हम सभी को जागरूक होने की जरूरत है
1: जरूरत है।
0: कि हम जब भी बाजार जाएं और कोशिश करें थैला लेकर जाएं, और
1: कपड़े का
0: अगर
1: थैला ले
0: कभी
1: जाए।
0: थैला लेकर नहीं भी जा रहे हैं तो कोशिश करें कि जो पेपर बैग्स होते
1: बैग्स
0: हैं
1: हाँ
0: उनका
1: उनका
0: इस्तेमाल करें।
1: इस्तेमाल
0: और जैसे हम लोग यहाँ पे बहुत सारे प्लास्टिक में हमें खाने के पदार्थ भी मिलते हैं,
1: जी जी
0: उनको भी जैसे हम हमारे इधर बस्तर क्षेत्र में मैंने देखा है कि लोग तंबाकू गुटखा
1: तंबाकू
0: का सेवन
1: गुटखा
0: बहुत ज्यादा करते हैं और
1: जी
0: उसके भी पाउचेस छोटे छोटे
1: छोटे
0: इधर
1: छोटे इधर
0: उधर
1: उधर
0: बिखरे ही
1: बिखरे
0: रहते
1: ही
0: हैं।
1: रहते हैं।
0: तो
1: सही
0: थोड़ी सी
1: है।
0: हमें

0: सिविक सेंस जिसे बोलते
1: जी, जी.
0: हैं, वो हम भारतीयों में डेवलप करना बहुत जरूरी है, थोड़ा कम है, उसे डेवलप करना बहुत जरूरी है. और आपने यहाँ पे जल की भी बात की है कि जल का हमें संरक्षण करना चाहिए और बहुत सारे इसके मेथड्स भी हैं.
1: हाँ है,
0: उन तरीकों से आप जल का संरक्षण कर सकते
1: किया
0: हैं,
1: जा सकता है जी.
0: और आपने हमारे केंद्र से तो नहीं लेकिन रायपुर केंद्र से जो प्रसारित हुआ था कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर मना रहे हैं, उस कार्यक्रम को भी पसंद किया है. तो हम जो आकाशवाणी रायपुर की जो टीम है, दीपक हटवार जी और श्रीमती कल्पना जी, उनको भी हम फोन के माध्यम से आपके जो संदेश है
1: पहुंचा देंगे.
0: जी, जी, जी. और आपने हमारे कार्यक्रमों को पसंद किया और हमारे द्वारा जो जानकारियां दी गई थी उसे आत्मसात किया और हमारे श्रोताओं तक भी उस संदेश को पहुंचाने की कोशिश की, इसके लिए आपका धन्यवाद. अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अगला संदेश. आप बताएं,
1: अगला संदेश पढ़ने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि आज का जो मनुष्य है वो बिना प्लास्टिक के नहीं जी पा रहा है, मुझे ऐसा लगता है.
0: उसका हर कुछ हमें विकल्प ढूंढना
1: चाहिए,
0: जिसे हम जो बायोडिग्रेडेबल हो, जिसे हम आराम से हमारे जो बैक्टीरियाज हैं या फिर फंजाई हैं वो सब उसको खत्म कर सके.
1: क्योंकि सिर्फ सब्जियां
0: आजकल हैं, ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं लेकिन वो थोड़े महंगे हो जाते हैं प्लास्टिक की तुलना में, इसलिए लोग उसे नहीं चुन रहे हैं विकल्प को. तो अब आगे बढ़ते हैं. रूपाली जी बताइए.
1: जी, ये अगला खत आया है हैदराबाद तेलंगाना इसनापुर से. रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का. इन्होंने लिखा है, 27 मई हमने रस रगा सुना, बिंदिया विषय पर अति सुंदर लगा. ये बिंदिया सुंदरता में चार चांद जड़ती ही है, साथ में चंचल मन को एकाग्र करने में भी सहायक होती है. जैसी विस्तृत चर्चा की चंद्र ऋषि ठाकुर जी ने बड़ी प्यारी बातें कही थी.
0: इन्होंने शायद रसरंग कार्यक्रम
1: जी रसरंग
0: यहाँ पे
1: ये थोड़ा उन्होंने गलत लिखा, रसरंगा लिख दिया है, लेकिन ये रसरंग कार्यक्रम के अंतर्गत बिंदिया विषय पर था. हाँ जी,
0: और इसमें मैंने बिंदिया की
1: बिंदिया विषय पर
0: महिलाएं लगाती है उसके बारे में इसमें मैंने जानकारी दी थी कि किस तरह से ये हमारे ध्यान और एकाग्रता में मदद करता है,
1: तनाव को कम करता है. जी,
0: कुछ जो हम आभूषण पहनते हैं उनके कुछ वैज्ञानिक
1: कारण होते हैं,
0: जिस कारण हम इनको पहनते हैं. तो उसी प्रकार जो बिंदिया हम लगाते हैं, जो महिलाएं लगाती हैं, उसमें भी बहुत सारे उसके लाभ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, तनाव को कम करने में, ध्यान और
1: एकाग्र करने में,
0: और यहाँ तक कि वो जो बिंदिया रहता है वो मेटल का होता है, धातु का होता है, और धातु हमारे माथे को ठंडा करता है, गर्मी में वो हमारे माथे को ठंडा भी करता है. तो ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसके कारण बिंदिया को लगाया जाता था, और इसी का मैंने इस कार्यक्रम में जिक्र किया था रसरंग के माध्यम से, और मुझे खुशी हुई कि ये कार्यक्रम उन्हें पसंद आया.
1: जी जी.
0: हमें उम्मीद है कि आगे जो हम और भी प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए कार्यक्रम बनाने में, उसे भी आप सराहेंगे और पसंद करेंगे. तो रूपाली जी, मैं देख पा रही हूँ कि अभी भी आपके पास बहुत सारे संदेश बचे हुए हैं.
1: जी जी.
0: तो हमें ऐसा लग रहा है कि इस बार कार्यक्रम पत्रांकन को हमें दो भागों में
1: जी बिल्कुल जी.
0: तो जिन श्रोताओं के मैसेज हमने आज शामिल नहीं किए हैं वो नाराज ना हो, कल हम फिर से आपके समक्ष हाजिर होंगे पत्रांकन का दूसरा भाग लेकर. तो आज कार्यक्रम पत्रांकन के पहले भाग से दे हमें अनुमति.
1: नमस्कार.

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पत्रांकन, प्रस्तुति थी चंद्र ऋषि ठाकुर की, संपादन था रूपाली पारोई का। आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
4: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
3: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
5: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
0: पेश है मधुरिमा।

चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। मौसम पल में बदल जाएगा, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। मेरी मोहब्बत में है कितना असर, देखो ना।

इश्क वो जज्बा है जो लफ्जों का मोहताज नहीं होता। इश्क वो जज्बा है जो लफ्जों का मोहताज नहीं होता। निगाहें अक्सर वो कह जाती हैं जो जुबां नहीं कह पाती।

मैं रंग बिरंगी मोरनी, मेरे पंख बहुत मुमताज, मेरा रक्स अनोखा रक्स है, मुझे अपने आप पे नाज़।

0: आप सुन रहे थे नमस्कार जगदलपुर। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी जगदलपुर से प्रसारित किया गया। इस वक्त सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों की सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणी एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: गृह मंत्रालय ने कहा है ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
6: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
4: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
7: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
4: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
8: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
9: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
8: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
10: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रहता हूँ।
8: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
11: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के लिए जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिनभर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
12: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
4: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दामबुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। Union Home Minister Amit Shah to launch Land Port Management System in New Delhi today. 5-day BRICS Agriculture Ministers meeting to begin today in Indore, Madhya Pradesh. Indian Embassy in Muscat confirms rescue of all 24 Indian seafarers aboard MT Merrivex after fire incident south of Strait of Hormuz. Iran and Israel announce halt in attacks against each other but warn of retaliation if ceasefire breached again. U.S. Federal Court strikes down President Donald Trump's $1,00,000 H-1B visa fee. And in men's cricket, India A to take on Sri Lanka A in opening match of Tri-Nation Series at Dambulla this morning. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System, LPMS, in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency,

लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां। संपादक और प्रस्तुतकर्ता हैं महेंद्र साहू।

0: छत्तीसगढ़ ही समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां के आज के ए अंक में आप मन के स्वागत है। जय जोहार, राम राम महेंद्र साहू को तीले। श्रोता साथी हो, आज के अंक में आप मन ल सुनवात हन कवि गोष्ठी, और एक कवि गोष्ठी के संचालन करत हैं श्री ईश्वर साहू।
1: संगवारी हो, जय जोहार। मोर भुइयां कार्यक्रम के कवि गोष्ठी में आज संग्रह हवें श्री शिव कुमार अंगारे जी, बंगला मटिया बालोदले, सुश्री सुनंदा शर्मा जी भनपुरी रायपुर ले, और मैं स्वयं ईश्वर साहू ग्राम बंधी बेमेतर।

0: वाले आज की कवि गोष्ठी में मैं सबले पहली आमंत्रित करत हूँ सुश्री सुनंदा शर्मा जी ला।
1: बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर भैया। और जैसे कि आज मोर भुइया कार्यक्रम के अंतर्गत हमन आयन कवि गोष्ठी करे बर और सबले पहली मैं गर्मी के बात ला करूँ। और कही थे ना कि जेठ जेठ ही होते, ये जेठ के महीना में सबो जन ला अपन मूड़ी ला ढाके ला पर जथे। मैं वही जेठ और गर्मी के बात ला करता हूँ और ये कविता ला आप मन के सामने रखता हूँ, सुनू।
0: स्वागत स्वागत।
1: जेठ के महीना, जेठ के महीना आवत है पसीना, जेठ के महीना।

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बढ़िया, श्री सुनंदा शर्मा जी ले आप मन सुने हो। जेठ के महीना आवत है पसीना। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री शिव कुमार अंगारे जी ला अपन कविता पाठ करे बार।
2: ये साल घाम बड़ जीवलेवा हो गए है और वही सब बात ल लेके मोरे रचना है सुरुज रिसागे घाम।

जंगल झन काटो, जंगल झन काटो, जिनगी ल दाव झन लगाओ हो। अपने च गोड़ माँ, अपने च गोड़ माँ, टंगिया झन मारो।

0: आघू के कवि गोष्ठीला आगे बढ़ाए बर में भैया ईश्वर साहू बंधीला आवाज देता हूँ।
1: धन्यवाद सुनंदा जी। गर्मी उमिया लेवत है, सबोला जियान परत है।
0: सही बात,
2: बढ़िया।
1: आवो वही जियान परत तेला सुनथन, कावर जियान परत है।
2: स्वागत,
0: स्वागत है भैया।

0: आवो आगू के काव्य गोष्ठी अब हमन बरसात के आगमन के ऊपर सुनथन। तो सबले पहली मैं श्री शिव कुमार जी अंगारेला आमंत्रित करत हूँ बरसात के स्वागत बर कविता पढ़े बर।
1: जेठ के घाम जब जनाथे तब सब ल बरसात के सुरता आथे। तो वही बात ला अपन रखत हूँ, बादर ल बलायक कोशिश करत हूँ।
2: स्वागत है सर।

गजब तपिस झांझ झोला जेठ के महीना, बाय बिया कुल करिस अबड़ घमुरी पछीना। गजब तपिस झांझ झोला।

लौकत बिजली के संग नरवा ढोड़गा हाँस ही, मिचका मन एक सुरमा तब आल्हा बाँच ही, मिचका मन एक सुरमा तब आल्हा बाँच ही, पानी के पहली फुहार।

0: वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप मन सुनियो श्री शिव कुमार अंगारे जी ले। अब मैं आमंत्रित करता हूँ सुश्री सुनंदा शर्माला।
1: धन्यवाद भैया। और जेठ के बाद तो मन कट ड्रेन, बारिश के बाद अब शुरू हो चुके हैं, तो कैसे हम मन इंतजार करथन कि पानी गिरे, हम मन के मन प्रसन्न होए। मैं वही क्रम लागे बढ़ाता हूँ, अपन कविता सुनाता हूँ। बरखरा

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी हमन सुश्री सुंदर शर्मा जी ला सुनत रहिन, बड़ अच्छा भाव लेके कविता सुनाइन। अब हमर संचालन करैया भाई ईश्वर साहू जी ला मैं आरो देत हूँ कि वो अपन सुघर कविता पाठ ला हमला सुनाए।
2: बहुत धन्यवाद। जब बारिश आए बर रहे थे तब हमर प्रकृति बहुत आनंद से झूमर उठते, काबर की सबके प्यास बुताए बर रहे।
0: हाँ।
2: तो आओ डबरा मुस्कावत है हासे नरवा ढोड़गा, रुखराई जामत है कांदी कोला करगा। अरे डबरा मुस्कावत है हासे नरवा ढोड़गा, रुखराई जामत है कांदी कोला करगा। धरती दाई हा सिंगार साजे रे, झमझमा झमना छत बरसात आगे रे। आज भुइया के हृदय सिर तो जुड़ा गे रे, झमझमा झमना छत बरसात आगे रे। आज भुइया के हृदय सिर तो जुड़ा गे रे। आगे है किसान बैला नागर लधर के, भुइया ला जोहारत है सुघर पाँव पर के। भुइया ला जोहारत है सुघर पाँव पर के, झुमर झुमर बैला रेंगे सुन के रे ददरिया। अर्रतता नहीं लागे जोते हरिया हरिया, अर्रतता नहीं लागे जोते हरिया हरिया। बाऊ को बोवारा माते चारो कोती जमके, पानी पी के भुइया गजब सोंधे सोंध गमके। बाऊ को बोवारा माते चारो कोती जमके, पानी पी के भुइया गजब सोंधे सोंध गमके। अन्नदाता के भाग जागे रे, झमझमा झमना छत बरसात आगे रे। आज भुइया के हृदय सिर तो जुड़ा गे रे, झमझमा झमना छत बरसात आगे रे। आज भुइया के हृदय सिर तो जुड़ा गे रे। डोंगरी

ला उमंग हे कभू घाम छाँव सुरुज रही रही के झाके शीतलपुर वैया सुघर संगीत साजे शीतलपुर वैया सुघर संगीत साजे।

चिरै चिरगुन मनोलियागे रे, झमझमा झम नाचत बरसात आगे रे, आज भुइया के हृदय सिर तो जुड़ागे रे, झमझमा झम नाचत बरसात आगे रे, आज भुइया के हृदय सिर तो जुड़ागे रे, डबरा

0: झमझमा झम नाचत बरसात आगे रे, आज भुइया के हृदय सिर तो जुड़ा गे रे। झमझमा झम नाचत बरसात आगे रे, आज भुइया के हृदय सिर तो जुड़ा गे रे। संगवारी हो, अब बेरा है जाए के, तो जाए के बेरा में एक ठन छोटे से कविता में फिर से आप मल्ला सुनावत हो।
1: स्वागत।
0: मऊ

0: घाम के देखे तरुआ झुकाते हो जाते अलहन।
1: वाह
0: अहिला जथे रुख राई संग माया टा जथे पानी। बिन बिरछा बिन जुड़ छई हाँ के जर जाथे जिन गानी।
1: वाह

0: भिजग हे भुइया के कोरा पेड़ लगा लो जी। बहुत बहुत धन्यवाद संगवारी हो, आज के कवि गोष्ठी माँ श्री शिव कुमार अंगारी जी संग्रह रहीन, सुश्री सुनंदा शर्मा जी संग्रह रहीन और महू ईश्वर साहू संग्रह रहो। तो जाय के बेरा आप सबला जय जोहार जय छत्तीसगढ़।
1: अभी आप मन सुनत रहो कवि गोष्ठी, एकर संचालन करत रहिन श्री ईश्वर साहू और एकरे संग छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया के आज के अंकले विदा देवा। जय जोहार, राम राम।

ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। आइए सुनते हैं रूपक मुंदरा माझी। लेखक हैं सुभाष पांडे। प्रस्तुति है बलबीर सिंह कच्छ की।

बस्तर अंचल की सांस्कृतिक परंपरा का अपना एक विशिष्ट महत्व है। एक साधक की भांति राग द्वेष से परे अपने जीवन संघर्ष में लीन शमवीर बस्तर के माटी पुत्र जब शाम को थके हारे अपने अपने घरों को लौटते हैं तो मनोरंजन की अपनी एक अलग दुनिया में खो जाते हैं, जहां किस्से कहानियों पहेलियों हास परिहास नृत्य गायन अभिनय की एक अभिनव छटा बिखरती है। बस्तर अंचल में मनोरंजन की एक आंचलिक विधा है नाट। नाट में ग्राम्य जीवन के प्राण बसते हैं। नाट में गायन वादन नृत्य अभिनय सभी कुछ समाहित होता है। बस्तर अंचल में अधिकांश नाट पौराणिक आख्यानों पर आधारित हैं, जिनका मंचन दर्शकों को सारी रात बांधे रखता है। सामाजिक समस्याओं पर आधारित अनेक ऐसे नाट हैं जो अंचल में खासे लोकप्रिय हैं। कहनी नाट नाम से प्रचलित इन नाटों में मुंद्रा मांझी पेटा हांडी रंगहजारी बैहा राजा आम कुंवर जैसे नाट दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हैं। इनमें मुंद्रा मांझी नाट की तो बात ही कुछ और है। प्रेम और शौर्य की अद्भुत गाथा मुंद्रा मांझी नाट बस्तर अंचल में विगत 100 वर्षों से खेला जा रहा है। तब से लेकर अब तक इस नाट की प्रसिद्धि में किंचित भी अंतर नहीं आया है। अंचल के ग्रामीण इस नाट में अपने सामाजिक परिवेश की खूबियों और आंचलिक परिपाटी से साक्षात्कार करते हैं। ग्राम्य जीवन की अपनी अलग अस्मिता होती है, जिसमें हर ग्रामीण का जीवन रचा बसा होता है। इसी अस्मिता से सराबोर मुंद्रा मांझी नाट ने सदैव ग्रामीणों के मन में अमिट छाप छोड़ी है। मुंद्रा मांझी नाट का नायक है मुंद्रा मांझी, जिसकी माँ का नाम है हैलामती और पिता का नाम है गोविंद मांझी। हैलामती और गोविंद मांझी संपन्न ग्रामीण हैं, धन धान्य गाय बैल से भरपूर है घर उनका, लेकिन वे संतानहीन हैं। वे एक बेटा चाहते हैं, इसलिए ईश्वर

0: इस संतानहीन दंपत्ति की कातर पुकार सुनकर ईश्वर द्रवित हो जाते हैं। तब आकाशवाणी होती है।
1: हैलामती और गोविंद मांझी, तुम्हारे घर पुत्र उत्पन्न होगा जिसका नाम रखना तुम मुंद्रा मांझी।
0: साथ ही इस दंपत्ति को आशीर्वाद भी मिलता है कि उनका बेटा अतिशय बलशाली होगा। समय चक्र घूमता है। देखते ही देखते मुंद्रा मांझी युवावस्था की दहलीज पर कदम रखता है। आम माता पिता की भांति हैलामती और गोविंद मांझी को अपने बेटे की ब्याह की चिंता सताती है। तब वे दोनों चीचरा डोंगरी निवासी अपने परिचित ग्रामीण काड़ी मांझी के घर की ओर महला विवाह प्रस्ताव लेकर कूच करते हैं।

काढ़ी मांझी के घर पहुंचकर हैलामती गोविंद मांझी के मध्य जोहार भेंट घाट की रस्म अदायगी होती है। काढ़ी मांझी अपनी पुत्री बूंद की धांगड़ी के लिए मुंद्रा मांझी जैसा वर पाने की कल्पना से अभिभूत हो जाता है और सहर्ष अपनी बेटी ब्याहने के लिए तैयार हो जाता है। ग्राम में परंपरा अनुसार ब्याह की सारी शर्तें तय हो जाने के पश्चात खुशी खुशी हैलामती और गोविंद मांझी अपने घर लौटते हैं। घर लौटने पर मुंद्रा मांझी अपने माता पिता से पूछता है कि वे कहां और क्यों गए थे। हैलामती और गोविंद मांझी बेटे को बताते हैं कि वे उसके विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर काढ़ी मांझी के घर गए थे। मुंद्रा मांझी को यह सब सुनकर अच्छा नहीं लगता। वो अपने माता पिता से पूछ बैठता है कि महला के लिए घर से निकलते वक्त क्या उन्होंने सुपली सांप, खाली हंडी, भाटा कुंडी देखी थी। माता पिता की हाँ कहने पर मुंद्रा मांझी कहता है कि ये सब वस्तुएं अशुभ हैं। ऐसी स्थिति में उसका ब्याह काढ़ी मांझी की पुत्री से करना उचित नहीं होगा। पुत्र की इन बातों से व्यथित अपने माता पिता को मुंद्रा मांझी समझाता है कि वे उसके ब्याह के लिए चिंतित ना हों। वो स्वयं अपने लिए ऐसी वधु की तलाश करेगा जो अपरूप सुंदरी होगी, जिसका चारों दिशाओं में नाम होगा। ऐसा कहकर मुंद्रा मांझी आवश्यक वस्तुओं की एक मोटरी लेकर निकल पड़ता है अबूझ माड़ के बीहड़ वन प्रांतर की ओर, ताकि अपने लिए एक सुंदर पत्नी की तलाश कर सके।

0: পারি কালে মুদ্রা মাঝি বলে কথা না করি জীবী বলে ময়নামতি পলাই গলা অবজুমারে গলি গলা অবজুমারে গলি গলা।
1: ঘাট মে পর্বত শৃঙ্খলাওঁ সে যুক্ত অবুঝ মাড় কে গহন বন প্রান্তর অবুঝ মার্গ পর যাত্রা কর রহা মুন্দ্রা মাঝি বন্য পশু পক্ষিও সে ভি ভয়ভীত নহীঁ হ্যায়। উসনে সুন রখা হ্যায় কি ইসি অবুঝ প্রদেশ মে এক গাঁও হ্যায় হিরণগড়, জহাঁ মৈনামতি নামক দিব্য সুন্দরী রহতি হ্যায়, জিসে পানা আসমান সে তারে তোড় লানে কে বরাবর হ্যায়। মুন্দ্রা মাঝি পর কেবল এক ধুন সওয়ার হ্যায় কি কিসি তরহ ও সারি বাধাওঁ কো পার কর হিরণগড় পহুঁচ যায়, লেকিন ওহাঁ তক পহুঁচ পানা ইতনা সহজ ভি তো নহীঁ হ্যায়। নাট মে মুন্দ্রা মাঝি কে ইস যাত্রা বৃত্তান্ত কো নাট কলাকার বখুবি দর্শাতে হ্যায়। ইসি তারতম্য মে নৃত্য গীত কে মাধ্যম সে মুন্দ্রা মাঝি কে হিরণগড় যাত্রা কো ইস তরহ রূপায়িত কিয়া জাতা হ্যায় কি ও দৃশ্য চিত্র সা বন জাতা হ্যায়। अबूझ माड़ में हिरणगढ़ नामक कोई गांव नहीं है। इस कल्पित ग्राम की अवधारणा मुन्द्रा मांझी नाट रचयिताओं की है। नाट देखने वाले प्रत्येक दर्शक अप्रत्यक्ष रूप से मुन्द्रा मांझी का हमसफर बना रहता है, अतः प्रत्येक दर्शक की उत्सुकता बनी रहती है कि मुन्द्रा मांझी कब हिरणगढ़ पहुंचेगा और कब उसकी भेंट मैनामती से होगी। यात्रा के दौरान मुन्द्रा मांझी की भेंट उसके मित्र रंगबांधा से होती है, जो सिद्ध हस्त मांत्रिक सिरहा है। रंगबांधा मुन्द्रा मांझी को समझाता है कि मैनामती से भेंट आसान नहीं है, क्योंकि मैनामती सात बांस पानी के नीचे बनी कुड़िया में रहती है और इस कुड़िया के चारों ओर जल कामिनियां पहरा देती है। मुन्द्रा मांझी के निवेदन पर रंगबांधा आठ कोड़ी मोहनी और नौ कोड़ी जलका से परिपूर्ण मोहनी मंत्र चक्र मैनामती की ओर प्रक्षेपित करता है, ताकि मैनावती मुन्द्रा मांझी के प्रेम में विवल हो जाए।
0: मोहनी पटे भी बोले देखो देखो मोर खांदरी मोहनी जलका मोहनी तू ही एबे मैनामती के मोई जाओ अटकड़ी मोहनी नकड़ी जलका মুদুরা মাঝি পটাই গলা
1: মোহিনী মন্ত্র কে প্রভাব সে প্রেম বিবহল মৈনামতি কি ভেট মুন্দ্রা মাঝি সে হতি হে। কিন্তু মৈনামতি কা পিতা বাঙ্গা মাঝি মুন্দ্রা মাঝি কে সামনে শর্ত রাখতা হে কি যদি ও বান্ডা গাগড়া কি মদদ সে হিরলা ডোঙ্গরি কি মাদা দন্তেল সুয়র কো মার ডালে তো ও মৈনামতি কা ব্যাহ মুন্দ্রা মাঝি সে কর দেগা। मुन्द्रा मांझी बांगा मांझी की शर्त अनुसार मादा सुअर को मार गिराता है और उसका अंग अंग काटकर बतौर सबूत बांगा मांझी और मैनामती के पूर्व मंगेतर लेखन मांझी के घर की ओर फेंकता है। अंततः मुन्द्रा मांझी मैनामती को ब्याह कर अपने घर लाता है, पर सास ससुर के द्वारा सताए जाने के कारण मैनामती अपने पिता के घर आ जाती है। मुन्द्रा मांझी पुनः मैनामती को लाने निकल पड़ता है। एक परब में मुन्द्रा मांझी की भेंट मैनामती से होती है।

0: मान मनोबल पश्चात मुंद्रा मांझी मैनामती को लेकर निकल पड़ता है। ग्रामवासियों की नजर से छुपा कर ले जाने के लिए मुंद्रा मांझी मैनामती को एक गठरी में बांधकर रवाना होता है। रास्ते में उसकी मुलाकात मैनामती के पूर्व मंगेतर लेखन मांझी से होती है, जो पोटली को टटोल टटोल कर तस्दीक करना चाहता है कि कहीं मुंद्रा मांझी ने मैनामती को पोटली में बांध कर छुपा कर तो नहीं रखा है। इस प्रसंग को बड़े रोचक वार्तालाप के जरिए प्रकट किया गया है।
1: मोर कोता सुनना बाबू मुद्रा माजी,
2: मोर कोता सुनना बाबू मुद्रा माजी,
1: तू ही कहने जाई रलिस बाबू,
2: तू ही कहने जाई रलिस बाबू।

0: लेखन मांझी जब पोटली को टटोलते टटोलते मैनामती की नाक दबा देता है तो मैनामती हंस पड़ती है और पोटली की पोल खुल जाती है। फिर लेखन मांझी और मुंद्रा मांझी के मध्य मैनामती को पाने के लिए युद्ध होता है जिसमें मुंद्रा मांझी की विजय होती है। विजयी मुंद्रा मांझी खुशी खुशी मैनामती को लेकर अपने गांव लौटता है और इस तरह नाटक का सुखांत होता है। ज्ञातव्य है कि नाट में स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष कलाकार ही निभाते हैं। मुंद्रा मांझी के लिए मैनामती की कातरता प्रेम विवलता दर्शकों को द्रवित कर देती है। मुंद्रा मांझी नाट में मैनामती की भूमिका निभाने वाले श्री कमल सिंह कहते हैं,
1: मुखे मन लागली कि मैनामती बांधलन मुखे अच्छा लागे दे बोलले मुखे किंडी अच्छा फन लागली शौक लागली कि बाइले लेकी बांध ले तो अच्छा है बोले दखें दे बोलली उन्हीं के मौके की चाह ली।
0: मुंद्रा मांझी नाट को गतिमय बनाए रखने में जहां एकल और समूह स्वरों का महत्व है वहीं मृदंग की प्रसंगानुसार तालबद्धता चकित कर देती है। मृदंग की लयकारी में महारत रखने वाले लोक कलाकार रघुनाथ नाट प्रसंग अनुरूप सुरताल में सामंजस्य बनाए रखते हैं। आइए सुने मृदंग वादन।

मुंद्रा मांझी नाट की प्रस्तुति उड़िया मिश्रित बोली में की जाती है, जिससे स्थानीय ग्रामवासी भलीभांति परिचित हैं। नाट के बीच बीच में गाए जाने वाले चटका गीत, हास्य गीत दर्शकों को खूब गुदगुदाते हैं।

प्रारंभ से लेकर अंत तक मुंद्रामान जी नाट की प्रस्तुति दर्शकों को ऐसे माया संसार में ले जाती है जहां नाट का प्रत्येक दर्शक स्वयं को नाट के विभिन्न पात्रों के रूप में देखता है। नाट में उल्लेखित गांव, इलाके उसके जाने पहचाने से लगते हैं। नाट में आंचलिक लोक कलाकारों की रूप सज्जा भी बेहद आकर्षक होती है। आमतौर पर नाट कलाकार रूप सज्जा के लिए सहज प्राप्त रंगों, खड़िया, कोयला, चिकमिकी, नकली बाल

0: होठों का उपयोग करते हैं। नाट कलाकारों की रूप सज्जा थोड़ी भड़कीली होती है। जरा सी रोशनी में चमकने वाले जरी लगे सलमा सितारों से गुथी पोशाक के कारण कलाकार बहुत आकर्षक लगते हैं। मुंद्रा मांझी भेष धरने वाले श्री गुलाब अपने अनुभव कुछ इस तरह बताते हैं।
1: मके सब जन बल लाइक मके हम दी नाच बा गाना देखी केरी तब सब हरिक लाग लाग गुनुक मक बने ले दक बक खूब कोशिश लगे ले नाच बा के ज्यादा करी ज्यादा मुद्रा माझी जोरदार नाच हुए मुद्रा माझी नी शख्सियत बोलू आता और लोग प्रबल लोग दक बक जे आसुआ।
0: बस्तर अंचल में मुंद्रा मांझी नाट की प्रसिद्धि को देखते हुए स्थानीय हिंदी रंगमंच के कलाकारों ने इसे हिंदी में प्रस्तुत करने का बीड़ा उठाया। समस्या नाट के मूल कथानक को यथावत रखते हुए भत्री बोली के इस नाट को हिंदी भाषा में अनुवाद कर सफल मंचन करने की थी। इस चुनौती को स्वीकार किया सांस्कृतिक संस्था जनरंग के निर्देशक वरिष्ठ रंगकर्मी जी एस मनमोहन ने। हिंदी में कैसे उन्होंने इस नाट को प्रस्तुत किया, आइए उन्हीं से पूछते हैं।
2: मुंद्रा मांझी को जहां तक हिंदी में नाटक के रूप में खेले जाने का प्रश्न है, हम काफी अरसे से बस्तर अंचल में हिंदी रंगमंच कर रहे थे। हमने देखा कि हमारे बस्तर अंचल में एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नाट है, जिससे कि हम हिंदी रंगमंच के निर्देशक, कलाकार, लेखक अभी तक उस क्षेत्र में हमने कुछ काम नहीं किया था। तो सबसे पहले हमारे बस्तर अंचल के वरिष्ठ लेखक रंगकर्मी श्री सुभाष पांडे जी ने इस संदर्भ में हमसे चर्चा की, रंगकर्मियों से, मुझसे खासकर उन्होंने चर्चा की कि क्यों ना हम भतरा नाट को हिंदी दर्शकों के बीच में ले जाएं। बात कुछ अच्छी लगी, जची, कुछ समझ में आई कि हाँ क्यों ना हम यहाँ के बस्तर के लोक रंगकर्म को, भतरा नाट को, हिंदी दर्शकों के बीच में ले जाकर उसकी प्रस्तुति करें। लेकिन बीड़ा उठाना बड़ा कठिन था, काफी लोग हमारे साथी रंगकर्मी इसमें जुड़े और हमने हमारी टीम बनाकर जगह जगह गांव में जो रात भर भतरा नाट खेले जाते हैं उन नाटकों का प्रदर्शन हमने देखा, उन कलाकारों से, लोक रंगकर्मियों से हमने मुलाकात की और तब काफी मेहनत मशक्कत के बाद एक हिंदी में भतरा नाट जो रात भर चलता है उसको 2 घंटे की अवधि में लिखा उसको, फिर हमने रिहर्सल शुरू की बाकायदा। रिहर्सल्स में हमने इस बात का, लेखक ने, रंगकर्मियों ने और मैंने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि जो लोक रंगकर्म है उसके जो लोक पुट है उसकी आंचलिकता जो है वो हिंदी भाषा में करने के कारण कहीं गुम ना हो जाए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था टीम के लिए और टीम ने इसे स्वीकार किया। जैसे जैसे रिहर्सल्स आगे बढ़ती गई इसमें कई सुधार हुए, लोक रंग कर्मियों को भी हमने इसमें शामिल किया और उनसे काफी चर्चा की और सबसे पहले हमने इसमें यह किया कि इस नाटक को तैयार करने के बाद हम सीधे हिंदी रंगमंच के दर्शकों के समक्ष हमने इसका प्रदर्शन नहीं किया। क्यों ना हम जिन लोगों का ये नाटक है, जो लोग ये खेलते आए हैं अपने लोक बिंबों को लेकर, क्यों ना हम सबसे पहले उन्हीं के बीच में हम हिंदी भाषा में ये नाटक खेलें, क्योंकि वही हमारा मुख्य दर्शक है। अगर वो अगर इसे स्वीकार करते हैं तो हमारा ये मानना था कि हिंदी दर्शक भी इसे कबूल करेंगे और हमने इसको सबसे पहले गांव में जाकर, बकावन क्षेत्र के एक छोटे से गांव में जाकर, बिल्कुल जैसे कि भतरा नाट का मंचन किया जाता है, वो लोग जिस तरह से खेलते हैं उसी तरह से हमने इसको खेला और हमने देखा कि वहां के दर्शकों ने, ग्रामीण दर्शकों ने बाकायदा इस हिंदी प्रस्तुति को सहर्ष स्वीकार किया। तब हमें हिम्मत बंधी कि हाँ अब हम इसको हिंदी दर्शकों के बीच में ले जा सकते हैं। फिर हमने हिंदी दर्शकों के लिए इसकी प्रस्तुति की, लेकिन हमने इस प्रस्तुति में इस बात का विशेष ध्यान रखा कि उसके लोक रंग, उसकी लोक संस्कृति, उनकी बोली, उनकी वेशभूषा, उनकी रंगभूषा, उनका संगीत, उनके गीत, उसको हमने जस का तस रखा। सिर्फ हमने उसके जो संवाद होते हैं, जो गायन शैली में होता है, उसको हमने संवाद के रूप में दृश्य बंद कर हिंदी भाषा में इसको प्रस्तुत किया और हमने देखा कि हिंदी दर्शकों ने उसके, हमने काफी मंचन किए, लोगों ने स्वीकार किया।
0: नाट परिपाटी से कुछ परे हटकर मैनामती की भूमिका एक महिला रंगकर्मी ने निभाई थी। नाट में महिला कलाकार को देखना ग्रामीणों के लिए अचंभा था। इसी तरह नाट के नायक मुंद्रा मांझी की चुनौतीपूर्ण भूमिका को साकार किया था वरिष्ठ रंगकर्मी खुर्शीद खान ने। हिंदी में उच्चारित नाटक के संवाद की वानगी देखने योग्य थी।

0: पहली बार किसी नाट में अभिनय करने का अनुभव कैसा रहा, आइए पूछते हैं रंगकर्मी खुर्शीद खान से।
1: यूं तो हिंदी रंगमंच पर एक अरसे से काम किया है और हर किसी तरह की भूमिका अदा की है, मगर मुंद्रा मांझी में पहली बार बस्तर के नाट पर काम किया, ये एकदम अनोखा और नया अनुभव था जो आज तक जहन पर अंकित है। गांव में जाकर कई बार नाट देखा और उनकी स्टेपिंग, डांस मूवमेंट की रिहर्सल की, काफी मेहनत की और उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स भी आए और मुंद्रा मांझी एक अविस्मरणीय नाट्य प्रस्तुति बन सका। शानदार टीम वर्क इसके लिए जिम्मेदार था। इसका एक संवाद। मैं मुंद्रा मांझी, इस गांव प्रधान का बेटा, अभुतमार का बेटा, मेरी आया का नाम हैलामती और बाबा का नाम गोविंद मांझी, समय पड़े तो खाली हाथों चीर कर रख दूं बाघ का जबड़ा और तोड़ दूं दहेज सुअर के दांत और उठा लूं कावड़ में चार चार आदमी एक साथ, मैं मुंद्रा मांझी।
0: हिंदी में प्रस्तुत मुंद्रा मांझी नाट को दर्शकों का वांछित प्रतिसाद मिला, फलतः इस नाट के 3 शो हुए जो अत्यंत सफल रहे। हिंदी प्रस्तुति की एक खासियत यह भी रही कि नाट में गायन वादन का जिम्मा नाट गुरु गंगाराम, मृदंग वादक रघुनाथ के साथ स्थानीय कलाकारों ने बखूबी संभाला। नाट की एक खासियत यह भी होती है कि नाट का संपूर्ण आख्यान प्रत्येक नाट कलाकार को कंठस्थ रहता है, इसलिए प्रस्तुति के दौरान गति भंग की स्थिति नहीं आती। मुंद्रा मांझी की आंचलिक प्रस्तुतियों में भी इन्हीं खूबियों का समावेश रहता है।

0: नाट कलाकारों को कैसे प्रशिक्षित किया नाट गुरु ने, चलिए जानते हैं उन्हीं से। आप हैं नाट गुरु गंगाराम।
1: एबे जैसन की मुंद्रा माजी, अच्छा कुमकुम, मेचा, लोक दकबार, टोकी पीला, मोयमा आसन, अच्छा सुंदर पीला के मुंद्रा माजी बांध बराय। और जो पातर कटिया जोर सी कुंडरू आसन, ताके रानी बांध ले, अच्छा पोपू आए ता कच्चा पोटी और किरोटी चूड़ी अच्छा पिंदा बाराय, तेबे अच्छा दखा दे हुआ है राजा रानी एक बराबर कोनी बाटे इंडी गले पुनी नाट ने पुनी अच्छा सुंदर दखा दे हुआ है। नाट सिखाए ले जैसन की पिलामन जो सिकुआत पहले गणेश नाचाय बराय, सरस्वती बाद ने आए लेडीज उइकरिनिस कुआ है, और तार आगे राजा रानी पुनी नहीं सके सके संगे तार पीछे और राजा मन पुनी आस भाई जैसन की राजा लोग के मेचा ठीक रबार आचे और रानी के साड़ी अच्छा पिंदे बार आचे, हाथे चूड़ी टोडरा ने माली काने किलुआ और लंबा बाल और किरोटी तेबे अच्छा पो भी बुआ है और दकबाल लोग के पब्लिक के पने ठीक है।
0: सच कहा जाए तो बस्तर अंचल में प्रचलित विभिन्न नाट प्रस्तुतियों में मुंद्रा मांझी नाट का स्थान कालजयी है। विगत एक सदी से निरंतर खेले जा रहे इस नाट में नाट गुरु और नाट कलाकार बदलते रहे, लेकिन मूल कथानक यथावत रहा। प्रेम, शौर्य और आत्मीयता से भरपूर इस नाट को कोई भी व्यक्ति सहज ही आत्मसात कर सकता है।

अभी आप सुन रहे थे रूपक मुंद्रा मांझी, लेखक थे सुभाष पांडे, परिकल्पना थी नारायण सिंह बघेल की, वाचन जी श्याम का और इस रूपक के प्रस्तुतकर्ता थे बलबीर सिंह कच्छ। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 बजे हैं, पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोता, इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे 1967 में प्रदर्शित सफल फिल्म मिलन की। पुनर्जन्म की अनोखी कहानी, भावपूर्ण अभिनय और कालजयी संगीत से सजी ये फिल्म हिंदी फिल्म जगत के स्वर्णिम दौर की सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाती है।

फिल्म मिलन का निर्माण प्रसिद्ध निर्माता एलवी प्रसाद ने किया है और निर्देशन अदूर्थि सुब्बाराव ने किया। ये उनकी तेलुगु फिल्म मूगा मनासुलु का हिंदी रूपांतरण है।

फिल्म मिलन की कहानी गंगा किनारे रहने वाले नाविक गोपी और राधा के प्रेम की है, जो सामाजिक बंधनों के कारण अधूरा रह जाता है। परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि दोनों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अगले जन्म में उनका मिलन होता है। फिल्म में सुनील दत्त गोपी और नूतन ने राधा की भूमिका निभाई है। इनके अलावा प्राण, जमुना, देवेन वर्मा, मुकरी और लीला मिश्रा भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई दिए।

फिल्म मिलन का संगीत लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल की जोड़ी ने तैयार किया, जबकि गीत लिखे हैं आनंद बख्शी ने। फिल्म के गीत आनंद बख्शी के लिए निर्णायक साबित हुए और उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद की, जिनमें सावन का महीना, पवन करे शोर, राम करे ऐसा हो जा और भूल गोरी भूल जैसे गीत शामिल हैं। इन गीतों के लिए अपनी आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और मुकेश ने।

करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

फिल्म मिलन के लिए नूतन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, जमुना को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। आज भी फिल्म मिलन के गीत रेडियो

0: एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम में अभी आपने सुने फिल्म मिलन के गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ के 3 जवानों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर आज से राष्ट्रव्यापी समारोह की शुरुआत होगी। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर आंधी के साथ बारिश होने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में प्रदान किए गए। छत्तीसगढ़ के 3 लोगों को राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। इनमें असम राइफल के राइफलमैन भोजराम साहू के साथ ही छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान बहादुरी और नेतृत्व क्षमता का परिचय देने वाले पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर देशमुख शामिल हैं। भोजराम साहू बालोद जिले के रहने वाले हैं। इन्होंने वर्ष 2025 में मणिपुर में एक आतंकवादी विरोधी अभियान के दौरान अद्भुत वीरता का परिचय दिया था। वहीं पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर देशमुख लंबे समय से बस्तर और राजनांदगांव के दुर्गम जंगलों में नक्सल विरोधी अभियानों का नेतृत्व कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि पुलिस इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर प्रसाद देशमुख को उनके अदम्य साहस, असाधारण वीरता और राष्ट्र सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र प्रदान किया जाना पूरे प्रदेश के लिए गर्व और गौरव का क्षण है। इन्होंने नक्सल विरोधी अभियान के दौरान विषम परिस्थितियों में प्रदर्शित अदम्य साहस, रणनीतिक कौशल और कर्तव्य निष्ठा से न केवल अभियान को सफल बनाया बल्कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के संकल्प को नई ऊर्जा भी दी है। उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने भी छत्तीसगढ़ पुलिस के दोनों अधिकारियों को शौर्य चक्र से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से पीएमएसएमए के 10 वर्ष एक दशक की देखभाल राष्ट्रव्यापी समारोह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता और जनसंपर्क गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे से नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। महासमुंद जिले की बसना पुलिस ने धान खरीदी में करीब 4.5 करोड़ रुपए के गबन मामले में लंबे समय से फरार 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पिरदा में वर्ष 2020-21 के दौरान 17,210 क्विंटल से अधिक धान की हेराफेरी की गई थी। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तत्कालीन व्यवस्थापक कन्हाई सेठ और सेल्समैन राजकुमार पटेल को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर आंधी के साथ बारिश होने की चेतावनी दी है। इस दौरान करीब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिर सकती है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देशभर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि ईंधन की निर्बाध आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ के 3 जवानों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर आज से राष्ट्रव्यापी समारोह की शुरुआत होगी। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर आंधी के साथ बारिश होने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं। डीजे सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर।
3: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के विकास के लिए कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। अपने नागरिकों की खुशहाली के लिए प्रदेश शासन कृत संकल्पित है। सरकार ऐसा कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती।

0: जाति जिससे संवादहीनता की स्थिति पैदा हो। इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार लेकर आई है वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम। राज्य में उद्योगों की स्थापना और निवेश प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तेज बनाने के लिए ये एक एकीकृत औद्योगिक मंच है। सिंगल विंडो सिस्टम से कम समय में सभी सेवाएं एक जगह पर पूरी पारदर्शिता के साथ उपलब्ध होती है। इससे भूमि आवंटन और सब्सिडी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। सिंगल विंडो सिस्टम के आ जाने से विभिन्न विभागों से मिलने वाली स्वीकृतियों का समय अधिकतम 30 दिन हो गया है। साथ ही 90 से अधिक औद्योगिक सेवाएं एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो गई है। इसके साथ सेम डे इंस्पेक्शन रिपोर्टिंग को जोड़कर इसे द्रुतगामी बना दिया गया है, ताकि उद्योगों की स्थापना प्रक्रिया सरल और तेज हो सके।
1: मैं ऋतुराज ताम्रकार, उप संचालक उद्योग संचालनालय रायपुर में पदस्थ हूँ। छत्तीसगढ़ आज देश के उभरते हुए औद्योगिक राज्यों में अपनी एक मजबूत पहचान बना रहा है। हमारी औद्योगिक विकास नीति 2024-30 और निवेशक अनुकूल दृष्टिकोण का मूल उद्देश्य है कि निवेशकों को उद्योग स्थापित करने और संचालित करने की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समयबद्ध रूप से उपलब्ध हो। इसी सोच को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 इसके अंतर्गत इन्वेस्ट सीजी पोर्टल विकसित किया है, जो निवेशकों और शासन के बीच एक आधुनिक, डिजिटल और पारदर्शी मंच के रूप में कार्य कर रहा है। अक्सर निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के दौरान विभिन्न विभागों से अनुमति, लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अलग अलग कार्यालयों में जाना पड़ता था। कई बार आवेदन की स्थिति जानना भी चुनौतीपूर्ण होता था। इन समस्याओं को दूर करने के लिए इन्वेस्ट सीजी को एक ऐसे एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है, जहां निवेशक को अधिकांश सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाती है। वर्तमान में इन्वेस्ट सीजी के माध्यम से 10 विभागों की 130 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। निवेशक एक ही पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और अपने आवेदन की प्रगति को रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही एक बार आवेदन में दी गई जानकारी को बार बार भरने की भी आवश्यकता नहीं रहती। आवेदक द्वारा दी गई जानकारी सिस्टम में स्वतः उपलब्ध हो जाती है। सिंगल विंडो 2.0 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पारदर्शिता और जवाबदेही। जब कोई आवेदन ऑनलाइन जमा किया जाता है तो उसकी पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से रिकॉर्ड होती है। आवेदन किस अधिकारी के पास लंबित है, किस स्तर पर परीक्षण चल रहा है, आगे क्या कार्यवाही हुई है, इसकी जानकारी सिस्टम में उपलब्ध रहती है। इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनती है और निवेशकों का विश्वास भी बढ़ता है। इसके साथ ही विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम में मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। इससे विभागों की जवाबदेहिता बढ़ती है और निवेशकों को समयबद्ध सेवाएं प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है। इसी प्रकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय करने में सुगमता केवल नियमों को सरल बनाने तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ है कि निवेशक अपना समय उद्योग के विकास और अपने उत्पादन पर लगाएं, न कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में। इन्वेस्ट सीजी इसी उद्देश्य को पूरा करता है। इस प्रणाली के माध्यम से विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। पहले जहां विभिन्न विभागों में अलग अलग आवेदन करने पड़ते थे, वहीं अब एकीकृत डिजिटल व्यवस्था के कारण प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और सुविधाजनक बन गई है। इससे समय की भी बचत होती है, कागजी कार्यवाही कम होती है और निवेशकों को एक बेहतर अनुभव प्राप्त होता है। साथ ही एक बार आवेदन में दी गई जानकारी को बार बार भरने की आवश्यकता नहीं रहती। आवेदक द्वारा दी गई जानकारी सिस्टम में स्वतः उपलब्ध होती है, जैसा मैंने पहले भी बताया। इसके साथ साथ इन्वेस्ट सीजी निवेशकों के लिए एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां पे राज्य की औद्योगिक नीति, निवेश के क्या अवसर हैं, औद्योगिक भूमि की उपलब्धता, कोई सेक्टर विशेष में क्या संभावनाएं हैं, निर्यात, स्टार्टअप, उद्यमिता प्रशिक्षण, इस तरह की समस्त जानकारियां एक ही प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। अर्थात निवेश की योजना बनाने से लेकर आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने तक की पूरी यात्रा को एक ही डिजिटल इकोसिस्टम में समाहित किया गया है। इसके अतिरिक्त हमने नई तकनीकों का भी प्रयोग करना शुरू किया है। तो हमने ये किया कि निवेशकों की सहायता के लिए वाणी AI आधारित एक वर्चुअल असिस्टेंस उपलब्ध है। वाणी के माध्यम से निवेशक जो है अपनी विभिन्न प्रक्रियाओं, सेवाओं,

और प्रावधानों की जानकारी सरल भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। इससे जानकारी सामान्य जन तक और भी आसानी से पहुंच जाती है। तो छत्तीसगढ़ सरकार का स्पष्ट विश्वास है कि निवेश आकर्षित करने का सबसे प्रभावी तरीका है निवेशकों को भरोसेमंद, पारदर्शी और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करना। हमारा सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो तकनीक के माध्यम से प्रशासन को और अधिक उत्तरदायी और निवेशक केंद्रित बना रहा है। आज छत्तीसगढ़ केवल प्राकृतिक संसाधनों के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रगतिशील नीतियों और निवेशक अनुकूल प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी जाना जा रहा है। इन्वेस्टिजी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म इस परिवर्तन के प्रमुख आधार है। मैं सभी उद्यमियों, निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करता हूँ कि वे छत्तीसगढ़ में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएं और राज्य की विकास यात्रा के भागीदार बने।

0: छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति रोजगार और आर्थिक समृद्धि पर केंद्रित है। सरकार ये चाहती है कि प्रदेश की युवा शक्ति इधर उधर भटके बिना अपने ही राज्य में रोजगार पाकर राज्य की उन्नति में सहायक बने। छत्तीसगढ़ अब बड़ी ही तेजी के साथ औद्योगिक और तकनीकी हब बन रहा है। ये अब निवेश का सबसे आकर्षक केंद्र बन चुका है। छत्तीसगढ़ में कई संरचनात्मक सुधार लागू किए गए हैं, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस में अभूतपूर्व सुधार हुआ है।
1: मैं गुंजन शुक्ला, मुख्य निवेशक वाष्पेन छत्तीसगढ़। साथियों, जैसा कि आप सभी भलीभांति जानते हैं कि छत्तीसगढ़ महतारी की ये पावन धरती हमारे देश की औद्योगिक तरक्की का एक बहुत मजबूत पावर हाउस बनती जा रही है और शासन की सुगम नीति के कारण उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर लगातार अग्रसर है। फैक्ट्रियों और मिलों की धड़कनों के देने का काम वाल्व या वाष्प यंत्र करते हैं। हमारे विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी हमारे प्रदेश की औद्योगिक सुरक्षा को सबसे ऊपर रखने के लिए और आपकी सेवा में सर्वदेव पर रहने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हमारा एकमात्र उद्देश्य यह है कि बेहतर से बेहतर सर्विस देकर एक सुरक्षित वातावरण में छत्तीसगढ़ को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार और उद्योग को और अधिक सफल बनाने और आसान बनाने की अवधारणा को एक नई ऊंचाई पर ले आया जा सके। इसी कड़ी में सेवा और सुरक्षा की भावना के साथ शासन के मार्गदर्शन में निर्मित एक बेहद आसान डिजिटल समाधान SWS 2.0 वन क्लिक बनाया गया है। आइए सरल शब्दों में इसे समझते हैं कि एक नया पोर्टल आपके लिए कितना मददगार साबित होगा और इसे अधिक बेहतर बनाने के लिए भविष्य में हम निरंतर प्रयास जारी रखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापित करने और व्यवसाय को पंजीकृत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक नया एकीकृत वन क्लिक और सिंगल विंडो पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल से बॉयलर से संबंधित सुरक्षाओं में कितनी बढ़ोतरी हुई है, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। एक ही छत के नीचे अब आपको सब कुछ मिलेगा। बॉयलर की स्थापना से लेकर ड्रॉइंग्स का अनुमोदन एवं बॉयलर का हर साल होने वाला रिन्यूअल, ये सभी सुविधाएं एक ही वेबसाइट पे उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त वेल्डर टेस्ट की नई सुविधा हमने चालू की है SWS 2 में, जिससे बॉयलर को सुरक्षित चलाने के लिए कुशल वेल्डर्स की जो जरूरत होती है उसकी कमी को छत्तीसगढ़ राज्य में ही टेस्ट और सर्टिफिकेशन के माध्यम से पूर्ण किया लिया जाएगा। ये प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है जिससे उद्योगों को समय पर प्रमाणित कुशल कारीगर मिल सके। इकोनॉमाइजर की सेवा को भी हमने ऑनलाइन कर दिया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन और उसका सालाना रिन्यूअल भी अब एक ही पोर्टल में जोड़ दिया है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से स्थानांतरित होने वाले बॉलरों को स्थानांतरण की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन प्रारंभ कर दी गई है। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि उद्योगों में अब सरकारी जो काम है वो कागजी काम बहुत आसान कर दिया गया है। कागजी काम की जरूरत ही नहीं है। समझने के लिए बहुत एक आसान फॉर्म्स हमने बनाए हैं। आवेदन फॉर्म्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो पूरी जानकारी देने के साथ साथ बेहद सरल भी रहे, जिसे भरने में किसी भी इंडस्ट्री को कोई उलझन नहीं हो। जब आप कोई एक फॉर्म भरते हैं और दोबारा उस फॉर्म को लिए रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते हैं तो बुनियादी जानकारी जैसे फैक्ट्री का नाम, बॉयलर का मॉडल, पता सब फॉर्म में पहले से भरा हुआ मिलेगा, जिससे आपका कीमती समय बचेगा। करेक्शन ऑफ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को भी आसान बना दिया गया है। ऑनरशिप चेंज होने की प्रक्रिया भी आसान कर दी गई है और यह भी प्रक्रिया सब ऑनलाइन शामिल कर ली गई है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि फाइलों के निपटारे और काम की रफ्तार में बहुत तेजी से गति आई है। दिनों की पक्की सीमा कर दी गई है, जिसके लिए लोक सेवा गारंटी नियमों के अंतर्गत हर काम के लिए दिन तय कर दिए गए हैं। बॉयलर के रजिस्ट्रेशन नियम निरीक्षण के लिए अधिकतम 30 दिन और नवीनीकरण के लिए अधिकतम 15 दिन का समय सीमा है। कंप्यूटर का ऑटोमेटिक रिमाइंडर है, यदि किसी फाइल पर तय समय पर फैसला नहीं हो पाता है तो कंप्यूटर सिस्टम उसे खुद ब खुद वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में ले आएगा। अगर कोई राइस मिल या इंडस्ट्री वाला बॉयलर का रिन्यूअल या वार्षिक अनुमोदन कराना भूल जाता है तो हमारा सिस्टम उसे 30 दिन पहले ही SMS के माध्यम से याद दिला देगा, जिससे समय पर उसकी जांच हो सकती है और फैक्ट्री का अनावश्यक उत्पादन रुकेगा भी नहीं। ऑनलाइन बातचीत और सुधार में अगर कोई कमी रह जाती है तो उसे आवेदन को खारिज करने की जगह हमारे अधिकारी उसे सीधे ऑनलाइन पे ही आप संपर्क कर सकते हैं और उसे करेक्शन करके वापस अपलोड कर सकते हैं। सबसे प्रमुख जो चीज हमने इसमें इंट्रोड्यूस की है वो पारदर्शिता। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि किसी भी व्यवस्था में काम करने के लिए पूर्ण पारदर्शिता सबसे अच्छी बात होती है। घर बैठे अब कोई भी उद्योगपति अपने आवेदन की प्रकृति को मोबाइल या कंप्यूटर पर लाइव देख सकता है। यदि समय पे आवेदन पे आपको सेवा नहीं प्राप्त होती है तो पोर्टल के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी समीक्षा का अनुरोध भी कर सकते हैं। जब कोई भी इंस्पेक्टर साइट पे जांच के लिए जाता है, मोबाइल ऐप के माध्यम से उसकी सटीक लोकेशन और समय सिस्टम खुद ही दर्ज हो जाएगा। निरीक्षण के समय बॉलर की तस्वीर जो ली जाती है वो लाइव रहेगी, जिससे अपने आप यह साबित हो जाएगा कि जांच किस तारीख को, किस समय और किस कारखाने में जाके की गई। इसके बाद जब जैसे ही जांच का काम सफलतापूर्वक पूर्ण होता है, डिजिटल सर्टिफिकेट का लिंक तुरंत आपके सिंगल विंडो आईडी पर आ जाता है, जिसे आप तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको तुरंत प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आप प्रोडक्शंस को स्टार्ट कर सकते हैं। अंत में प्रिय मित्रों, हमारा एकमात्र लक्ष्य प्रगतिशील और सुरक्षित औद्योगिक माहौल तैयार करना है, जहां हमारी फैक्ट्री बिना किसी रुकावट के प्रदेश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। वास्तव में निष्ठालय की यह पहल और पेपरलेस व्यवस्था छत्तीसगढ़ के उद्योगों को एक नया आयाम देगी। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इस आधुनिक SWS 2.0 पोर्टल को अधिक से अधिक उपयोग में लाएं और सुरक्षा के साथ साथ छत्तीसगढ़ को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएं।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

0: छत्तीसगढ़ में सिंगल विंडो सिस्टम को सुशासन की दिशा में एक अभूतपूर्व पहल के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसके तहत प्रदेश में निवेश और उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाया है। अब सभी विभाग एक ही मंच पर आ गए हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कम समय में ऑनलाइन क्लीयरेंस इस सिस्टम की विशेषता है। सिंगल विंडो सिस्टम यानी एक क्लिक में मंजूरी। जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र रायपुर के उप महाप्रबंधक श्री विश्वजीत का कहना है,
1: अगर देखें कि एक उद्योग को स्थापित होने के लिए विभिन्न शासकीय विभागों से अनुमति, NOC, क्लियरेंस की आवश्यकता होती है, तो इन सब के लिए भी औद्योगिक नीति के अंदर ही ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए उद्योग विभाग की invest.cg.gov.in वेबसाइट लाइव है। इस वेबसाइट के माध्यम से विभिन्न शासकीय NOC, अनुज्ञप्ति, लाइसेंस इत्यादि के लिए, जो कि उद्योग स्थापना करने के लिए, उद्योग को संचालन करने के लिए आवश्यक होते हैं, अनिवार्य होते हैं, इन सब के लिए जो निवेशक हैं, जो उद्योगपति हैं, वो सीधे इस वेबसाइट के माध्यम से, सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन एक ही जगह पर एकल खिड़की के रूप में आवेदन कर सकते हैं। जब कोई उद्योग स्थापित होता है तो उद्योग स्थापित करने के लिए जो पूंजी निवेश निवेशक करता है, यानी जो अपने अपने पैसे लगाता है उद्योग को स्थापित करने के लिए, तो उस पर शासन की तरफ से अनुदान छूट का प्रावधान है। तो ये अनुदान छूट विभिन्न प्रकार के अनुदान छूट औद्योगिक विकास नीति के अंतर्गत है, जैसे कि कुछ का मैं नाम आपको बता देता हूँ, जैसे स्टाम्प शुल्क से छूट, स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, ब्याज अनुदान, विद्युत शुल्क में भी छूट है। इन सब के अलावा ऐसे विभिन्न प्रकार के 20-22 प्रकार के अनुदान छूट एवं रियायतें इस नीति के अंतर्गत निवेशकों को मिल सकती है। अर्थात कुल मिलाकर उद्योग लगाने में जो खर्च, जो निवेश होता है, उसका कुछ प्रतिशत नीति के माध्यम से निवेशक वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो यह निवेश प्रोत्साहन उद्योगों के सफल स्थापना के लिए इसलिए भी दिया जाता है कि अधिकाधिक मात्रा में वो छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों को रोजगार दे सके और साथ ही साथ शीघ्र ही वो अपने उद्योग को स्थापित करके राज्य के व्यापार, व्यवसाय और निवेश में प्रोत्साहन दे सके। तो जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विदेशों में भी, जैसे जापान और दक्षिण कोरिया का भी दौरा कर नीति का प्रचार प्रसार किया, साथ ही साथ हमारे माननीय उद्योग मंत्री जी ने विदेश में जर्मनी का दौरा किया था विगत वित्तीय वर्ष में, वर्ष 2025 में। इसके अलावा देश के जो प्रमुख शहर हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद, यहाँ पर भी निवेश को आकर्षित करने के लिए निवेशकों के निवेश के सम्मेलन किए गए, इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम किए गए, जहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में निवेश के विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हमारे प्रदेश के अंदर रायपुर, बस्तर एवं अन्य समस्त जिलों में भी इन्वेस्टर कनेक्ट के कार्यक्रम सफलतापूर्वक कराए गए हैं, जिसमें भी संपूर्ण प्रदेश के निवेशकों, उद्योगपतियों द्वारा विभिन्न निवेश के प्रस्ताव उद्योग विभाग को दिए गए हैं और इसके आधार पर अभी पूंजी निवेश चल भी रहा है।

छत्तीसगढ़ अब समझ रहा है नई तेज और पारदर्शी योजनाओं की बदौलत। ऐसी ही एक कारगर और सर्व सुलभ व्यवस्था का नाम है वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0। ये व्यवस्था छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्रांति लाने के दिशा में तेजी के साथ अग्रसर है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ भारत का नया ग्रोथ इंजन बनने की राह पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ अब कोर सेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये अत्याधुनिक उद्योगों का राष्ट्रीय केंद्र बनने के लिए तैयार है।

छत्तीसगढ़ अब औद्योगिक विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए विकसित राज्य की श्रेणी में आने के लिए बेताब है। उद्योग धंधों ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां प्रदान की है। मांग और पूर्ति के वैश्विक सिद्धांत पर आधारित छत्तीसगढ़ की बाजार व्यवस्था में सिंगल विंडो सिस्टम का बड़ा योगदान है। उद्योग भले घरेलू या पारंपरिक हो या फिर अति आधुनिक तकनीक पर आधारित, सभी का लक्ष्य एक है,

0: छत्तीसगढ़ में छोटे मझौले और भारी उद्योग पहले से ही स्थापित हैं, लेकिन अब वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम के आ जाने से नए उद्योगों को लगाने का सिलसिला गति पकड़ रहा है। इससे प्रदेश में रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ रही है और कौशल विकास को भी बल मिल रहा है। तकनीकी संस्थानों से प्रशिक्षित युवा नई औद्योगिक नीति के प्रति जितने आश्वस्त हैं, उतने ही उत्साहित हैं। सिंगल विंडो सिस्टम को लेकर ये है सरकार के प्रति युवाओं और निवेशकों का विश्वास। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र सरगुजा के मुख्य महाप्रबंधक श्री त्रिपुरारी राम कश्यप।
1: औद्योगिक विकास नीति के तहत हम लोग शासन के निर्देश के अनुसार जो औद्योगिक विकास नीति को हमारे जिले सरगुजा के हिसाब से तीन समूह में बांटा गया है, पूरे राज्य में तीन समूह, समूह एक, समूह दो और समूह तीन, जिसमें हमारे जिले के 7 विकास खंड में समूह दो और समूह तीन प्रावधानित है। समूह एक में अंबिकापुर विकास खंड है और समूह तीन में लुंड्रा, बतौली, मैनपाट, सीतापुर, ये 6 विकास खंड अंबित है। तो मैं जो शासन के प्रावधान हैं और छूट और रियायतें हैं उसके संबंध में बिंदुवार बताना चाहूंगा। स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम और बृहद श्रेणी के उद्योग सम्मिलित हैं। सूक्ष्म उद्योग में निवेश राशि 1 करोड़ तक का है और लघु उद्योग में 10 करोड़ तक का है, मध्यम में 50 करोड़ और बृहद में 50 करोड़ से अधिक की है। इस राशि में बताना चाहूंगा कि ये राशि तो अधिकतम राशि है, लेकिन इसमें हम लोग न्यूनतम राशि से भी अपने उद्योगों को प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे स्थायी पूंजी निवेश, इसमें जो भूमि रहता है या जो शेड बनता है फैक्ट्री के लिए, उसमें हमको सूक्ष्म उद्योग में 45% तक का छूट मिलता है। मतलब कोई उद्योग यदि 1 करोड़ का राशि का लागत है तो उसमें 45% छूट मिलेगा, ये लघु उद्योग में है। उसी प्रकार मध्यम उद्योग में 35% छूट है और अधिकतम राशि इसका 4.5 करोड़ है। ब्याज अनुदान में सूक्ष्म उद्योग में समूह एक मतलब अंबिकापुर विकास खंड में 45% का अनुदान है और समूह तीन मतलब अंबिकापुर छोड़ के 6 जो विकास खंड हमारे आते हैं जिले के अंतर्गत, उसमें 50% का अनुदान है। मतलब ब्याज अनुदान ऐसा है जैसे अपन बैंक से ऋण लेते हैं तो उसमें जो ब्याज लगता है उसमें 50% तक शासन अनुदान के रूप में संबंधित इकाई जो उद्योग लगाता है उसको दिया जाता है। उसी प्रकार लघु उद्योग के लिए अंबिकापुर विकास खंड में 45% छूट है जो अधिकतम राशि 30 लाख तक की जाती है और समूह तीन जो अंबिकापुर विकास खंड छोड़कर शेष 6 विकास खंड बचते हैं उसमें 50% तक का अनुदान मिलता है जो बैंक से ब्याज मिलता है उसमें। इसी प्रकार विद्युत शुल्क छूट, मतलब विद्युत शुल्क में कोई इकाई उद्योग लगाता है तो उसमें विद्युत शुल्क में जो छूट होता है, जो बिल देयक राशि होता है उसको छोड़ के जो विद्युत विभाग द्वारा शुल्क लिया जाता है उसमें 7 वर्ष तक का पूर्ण छूट अंबिकापुर विकास खंड में है और शेष विकास खंड में 9 वर्ष तक का पूर्ण छूट मिलता है। उसी प्रकार स्टाम्प शुल्क छूट में यदि कोई इकाई उद्योग लगाना चाहते हैं और किसी से जमीन खरीदते हैं उसमें भी जो स्टाम्प शुल्क का प्रावधान है उसमें 1 लाख तक का छूट इनको मिलता है। और उसी प्रकार बैंक से ऋण लेते हैं और उसमें जो अनुबंध करते हैं उसमें भी 1 लाख तक का छूट इनको स्टाम्प शुल्क से छूट मिलता है। उसी प्रकार परियोजना प्रतिवेदन में यदि उनकी लागत आती है उसमें 2% तक का छूट है, यदि कुल इनका लागत 1 करोड़ का आता है तो उसमें 2% 2 लाख, ये भी उसमें छूट का प्रावधान है।

भौगोलिक विविधताओं से भरा छत्तीसगढ़ का हर भूभाग अपनी किसी न किसी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। यही खासियत अपने संसाधनों के साथ अब उभर कर सामने आ रही है। वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम वो झरोखा है जो छत्तीसगढ़ की समृद्ध विरासत को लेकर बढ़ रहा है उजाले की ओर।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
2: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोजे शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782222666।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। लोकगीतों के कार्यक्रम गुरुदुम में लीजिए सुनिए नीलू राम और साथियों के गाए भद्री लोकगीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: लोकगीतों के कार्यक्रम गुर्दू में आप सुन रहे हैं नीलू राम और साथियों के गाए भतरी लोकगीत।
3: आज यो देगला को

0: कार्यक्रम गुड़दुम में आप सुन रहे थे नीलू राम और साथी से भतरी लोकगीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
4: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। हमारे कार्यक्रम आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। श्रोताओं एक सूचना सुनिए, फोन इन किसानवाड़ी की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक की जाती है। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं आज कार्यक्रम एक ही कलाकार में एक ऐसे गीतकार जिनके गीतों ने लोगों को मोहब्बत का मतलब सिखाया, जिंदगी की पहेली को अपने गीत के जरिए कहानी में पिरोया और मोहब्बत को भूलने भुलाने की हद से बाहर निकालकर रिश्ते नातों के बंधन में बांध दिया। जितना लिखा सब सुपरहिट लिखा। प्रेम रोग वाले आशिकों के मिलने बिछड़ने वाले सुख दुख को जिन्होंने अपने लफ्जों से पिरोया और इनकी कविताओं ने देश का सम्मान बढ़ाया। जी हाँ, हमारे कार्यक्रम एक ही कलाकार में आज हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्म के मशहूर गीतकार और कवि संतोष आनंद की। 70 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के गीतों को अपने लफ्जों से सजाने वाले गीतकार संतोष आनंद के करियर की शुरुआत हुई एक काव्यदान से। कवि सम्मेलनों में अपने गीतों के जरिए देश का गौरवगान करने वाले संतोष आनंद मुशायरों पर हुकूमत कर चुके थे।

संतोष आनंद शायरी की दुनिया से होते हुए फिल्मों में आए, यानी कि फिल्मों में आने से पहले ही शायरी के आसमान पर एक चमकता सितारा बन चुके थे। वो मुशायरों की जान हुआ करते थे। 60 के दशक में उन्हें मुंबई के एक कवि सम्मेलन में काव्य पाठ करने का मौका मिला, जहां उनकी मुलाकात तारा चंद्र बड़जात्या से हुई। फिर दिल्ली में मनोज कुमार से हुई। यह वह समय था जिसने संतोष आनंद को कवि से गीतकार बना दिया। वर्ष 1970 में आई फिल्म पूरब और पश्चिम का ये गीत

वर्ष 1972 में आई फिल्म शोर के इस गीत ने तो कामयाबी का ऐसा शोर मचाया कि मिलेनियन यानी हजार वर्षों का सबसे सफल गीत बन गया। सॉन्ग ऑफ द मिलेनियन का खिताब अपने नाम करने वाले इस गीत के लिए संतोष आनंद को फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड मिला।

इस फिल्म का एक और गीत पानी रे पानी तेरा रंग कैसा भी बेहद पसंद किया गया। इसके बाद संतोष आनंद की सफलता का सिलसिला चलता गया। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के इस गीत ने महेंद्र कपूर को बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिलवाया। इस फिल्म के जिस गीत के लिए संतोष आनंद को फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार मिला वह गीत था

मनोज कुमार की फिल्मकारी में संतोष आनंद की लेखनी का गहरा प्रभाव रहा है। संतोष आनंद की लेखनी ने फिल्म इंडस्ट्री को एक के बाद एक कई सुपरहिट गीतों की सौगात दी। 30 वर्षों के अपने गीतों के सफर में संतोष जी ने 26 फिल्मों में करीब 109 गीतों के बोल अपने कलम से सजाए हैं। श्रोताओं, फिर आई वो फिल्म जिसने संतोष आनंद का नाम हमेशा के लिए हिंदी फिल्म जगत के गीतकारों के बीच स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। फिल्म थी क्रांति। जितनी हिट ये फिल्म रही उससे कहीं ज्यादा इसके गीत हिट हुए। इस जमाने में हर किसी के जुबान पर थे संतोष जी के लिखे ये गीत।

संतोष आनंद के दिल से निकले गीत लोगों के दिलों को छूते रहे और पता ही नहीं चला कि कब कामयाबी का एक दशक गुजर गया। मनोज कुमार के अलावा राज कपूर भी संतोष आनंद के कलम के कमाल से बखूबी वाकिफ थे। वो अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में ही संतोष आनंद से गीत लिखवाना चाह रहे थे, लेकिन तब संतोष आनंद इसके लिए राजी नहीं हुए। लेकिन वर्ष 1982 में आई फिल्म प्रेम रोग में गीत लिखने से ये प्रेम रोगी गीतकार खुद को जुदा नहीं रख पाया।

इस गीत के लिए एक बार फिर उन्हें फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ गीतकार के पुरस्कार से नवाजा गया। फिल्म प्रेम रोग के गीत भी न सिर्फ मकबूल हुए बल्कि आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। श्रोताओं, आज जिस गीतकार की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कई बड़ी बड़ी फिल्मों में बेशुमार सुपरहिट गीत लिखे हैं। 5 मार्च 1940 में जन्मे थे संतोष आनंद, सिकंदराबाद में एक मध्यम वर्गीय परिवार में। संतोष आनंद युवावस्था में ही किसी दुर्घटना की वजह से व्हीलचेयर पर आ गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सच, खुद अपना चाह गिरेबासी रहे हैं हम, जीना किसे अजीज है पर जी रहे हैं हम। संतोष आनंद की भी आजकल बिल्कुल यही दिली कैफियत है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज के कलाकार थे गीतकार संतोष आनंद। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: हम आकाशवाणी की जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए कार्यक्रम पाड़ में लोक वाद्य धुन। वादक कलाकार हैं गणपति कड़ियारी और साथी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम पाड़ में गणपति कड़ियारी और साथी से लोक वाद्य धुन। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करते हैं।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री आज सीएम हेल्पलाइन नंबर का शुभारंभ करेंगे और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर आज से राष्ट्रव्यापी समारोह शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों के आशीर्वाद और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन अथक प्रयासों के फलस्वरूप आज देश ने बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल क्रांति तक वैश्विक मंच पर एक नई पहचान हासिल की है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत के अपने संकल्प को साकार करने के लिए सरकार सेवा, सुशासन और समृद्धि के इस पथ पर निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। आज से प्रदेश में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसका शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री नवा रायपुर में स्थित सीएम हेल्पलाइन कॉल सेंटर का अवलोकन भी करेंगे। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076-1076 होगा। ये एक टोल फ्री नंबर होगा। इसके अलावा नागरिक वेब मोबाइल, मोबाइल ऐप या व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। शिकायत दर्ज होते ही आवेदक को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। इसके जरिए वो अपनी शिकायत की पूरी प्रगति को ऑनलाइन देख सकेगा। ये हेल्पलाइन नंबर सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे संचालित रहेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने उल गुलान आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता का स्वर बुलंद किया। उन्हें आदिवासी गौरव, देशभक्ति और सांस्कृतिक चेतना का अमर प्रतीक बताते हुए गृहमंत्री ने कहा कि बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज को उनके अधिकारों और विरासत की रक्षा के लिए संगठित किया और जल, जंगल और जमीन के संरक्षण को जन आंदोलन का रूप दिया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से पीएमएसएमए के 10 वर्ष एक दशक की देखभाल राष्ट्रव्यापी समारोह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता और जनसंपर्क गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में प्रदान किए गए। छत्तीसगढ़ के 3 लोगों को राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। इनमें असम राइफल के राइफलमैन भोजराम साहू के साथ ही छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान बहादुरी और नेतृत्व क्षमता का परिचय देने वाले पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर देशमुख शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। रायपुर जिले में कल देर रात तेज बारिश हुई, इससे तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। मौसम विभाग ने इसे प्री मानसून की बारिश बताया है। अगले 2 से 3 दिनों में छत्तीसगढ़ के

0: कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बताई गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश में गर्जन, तेज हवा और हल्की बारिश की गतिविधियां जारी रहने तथा 11 जून से इसमें वृद्धि होने का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री आज सीएम हेल्पलाइन नंबर का शुभारंभ करेंगे और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर आज से राष्ट्रव्यापी समारोह शुरू हो रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला और कलाकार। दादा दा। दादा दा।

0: जुहार कलाकार दादा दीदी मन, जुहार। कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तो सब पाए कलाकार दादा दीदी मन के मैं दसरी करें से जुहार, और नानी नानी पिला मन के मुझे बाटले खूबे खूबे माया। तो दादा दीदी मन रोजे दिन आसन फिर मैं तुम उनका ज्ञान चुगोट मन और गीत गोविंद ये सब पाए जमक के आप लोग मोटर अंधर न मरले से। तो दादा दीदी मन अमी तो रोजी दिना कहीं ना कहीं असन मतलब ने कमानी करतो गोट मन के हमी गोठियात रहूं से। तो उसने आज बोले दादा दीदी मन मैं तुम मन संगे ये जो कला और जो तकनीक है ये गोट के गोठियातों का जमर ले से। तो उसने दादा दीदी मन देखा अमी देखूं से कि हम जो जोन कला और तकनीक बोलों से ये जो जोन रिश्ता नाता एक खूबे बल्लो ने बाढ़ती करते जाए से और समय समय संगे संगे ये बदलते बल्ले जाए से। कसम बल्लो ने कलाकार दादा दीदी मन अमी देखूं से कि आगे झुक चो जोन कलाकार दादा दीदी मन रहो थोन मन तो कई ठन असन जिनिस मन बनाते रहो मानतर हूं थन खिंडी के बल्लो ने रंग रोगन और बरन बरन चो जसन चित्रकारी ऐसा पाए हूं मन थाने देखा नहीं देते रहे मानतर आजकल समय हिसाब ने हमें देखू से कि हूं कलाकार दादा दीदी मन जो बना सोत कई चिबल जिनिस हो हूं थाने का सुंदर सुंदर चित्रकारी और बरन बरन चो रंग रोगन ऐसा पाए के हमके देखो मेरे से। तो बल तो गोटे या दादा दीदी मन की आगे चो समय और ए भी समय ने खूबे फर्क होली से और ए हिसाब ने हम चो जोन कलाकार दादा दीदी मन चो जोन बना तो जिनिस बनाए कलाकृति बनाए ऐसा पान बोले खंडे फर्क खुली से। तो उसने दादा दीदी मन हमें देखू से कि आगे जुगे हम छो जोन दादा दीदी मनात कलाकार दादा दीदी मन हन मन कहीं पेंटिंग बनात रहो नाले चित्रकारी करत रहो तो हन मन कागज आए ब्रश आए ये सब पाए के काम ने अंतर हो अंतर आजकल हमें देखू से कि दादा दीदी मन हन डिजिटल तकनीक ले के एक्चुअली हन मन हम छो जोन कलाकार दादा दीदी मन काम बुता के कर सो। तो एक्चुअली का हन मन नुआ नुआ मशीन ले नुआ नुआ और सुंदर सुंदर जो जिनिस मन बना सोत और आज इंटरनेट और सोशल मीडिया ले कलाकार दादा दीदी मन आप लोग कला के दुनिया चो सपाए भाग ने और दुनिया चो सपाए लोग मन पूरी आप लोग कला के मन अमरस हो। और इचुल का दादा दीदी मन असन बोल हो कि जोन हम जो कलाकार दादा दीदी मना जोन का ही कारण ने हनुमान आप लोग कला के नहीं बना बोलो ने जान सो। तो आजकल हम जो जोन हन इंटरनेट बोलो से इचुल हन मन के जसने कहीं चीवल कला हो इच बना तो ने हन मन के खूबे सरल होली से आसान होली से और हन मन का जे देखा काम चो रोजगार अवसर वाले मिरे से। तो दादा दीदी मन तुम्हें बल देखा बढ़ते युग है और बढ़ते युग हिसाब ने असन वाट मन के करुण भाती हम लोग जो कलाकार दादा दीदी मनाते काम बुता के कर ले हन मन चो काम बोले झपके हो दे और संगे संगे लोग मन बोले हन मन चो काम बुता के खूबे मन कर दे। तो दादा दीदी मन एक गोट मन तो होली मानतर हम चले और नगद गोट मना से अले की बोले सुनो
1: बधाई हो सेठ जी आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब आप देखते जाइए अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई सिर्फ शहर में अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
6: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कॉन्क्रीट चॉइस।
7: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग हो से रोजे मंगलवार अड़ौपहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आम चो फोन नंबर आए 07782222666। फोन इन किसान वाणी आपन मन चो सवाल आपन मन चो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
0: तो दादा दीदी मन एगोट मन के तो सुनलस मंतर कलाकार दादा दीदी मन देखा तो मन का जमी आजीचो कलाकार भितरे कई जन असन कलाकार दादा दीदी मन संग भेट करात रह से जो ना कोनी कोनी तो काय सुंदर दारू खुर्चो जिनिस बना सोत कोनी कोनी मुर्गी पालन कर सोत नाले कोनी कोनी जैसन लोग गायक आत नाले कोनी कोनी बाजा बजा तो वाट केवल जान सोत तो असन कलाकार दादा दीदी मन के हमी तो मन जो संगे भेटघाट कराते रह से तो उसने अजीब बोले दादा दीदी मन ए आजीज कलाकार भितरे हम चलो ये भाई अमर लसोत ए भाई यात मधुरा और ये मनात लोक गायक और ये मन संगे गुड बात कर सो से यार कस्य तो आले ये मन जो गुड बात के हम ये बोले सुनो
7: रेडियो सुन तो सपाय भाई बहन मन के जुहार
8: जुहार
7: तो असन है कि आमचो बस्तर ने कला बोलो ने कई लोग लगे असन कला मन आसे जे कि आमी तो जानू से यार जो नी बोल जानू से तो असन लोग मन के आमी भेटघाट खरुन बाती गुड बात खरुन बाती सुनाते रहूं से जानाते रहूं से कि बस्तर ने बोले लोग एवे पूरे उन बाती आप लोग कला के दखा सोत और बाढ़ती कर सोत और ये तो जोन पीढ़ी आय बोले सीखा सोत बोले कि आमचो बस्तर ने असन असन गीत गोविंद बल हुआ है बोलते असनी ची आज ही आमचो स्टूडियो ने इला सोत ये दादा मन लगे कई कसन कला मना से गीत गाओ बल जानो नाट बल सिखाते रहो तर एवे बल सिखा सोत और असनी संगे संगे कई कसन गीत मन बोले गावला सोत तो ये दादा चुनाव के और गाँव चुनाव के हम ये मन ची टोनले जानुआ तो दादा तू के सब लगे जुहार ना
8: जुहार राम राम
7: हाँ तू चो नाव और गाँव चो नाव सांगो देस
8: मचो नाव मधुराम आए मचो गाँव मुंडा गाँव है
7: अच्छा मुंडा गाँव ले हाँ हाँ तो मधुराम दादा ये सांग ना तू जसन गीत गोविंद जाने बोल लीस गीत गाओ कुलाए तो ये गीत कित बरक ले सन होली ना तू चो गाँव तर
8: मचो गाँव तो 71 ले चले
7: अच्छा 1971 ले एबे तक
8: एबे तक
7: तू की कोनी सीखा ला की खुद ले सीख ले
8: मैं खुद सीख ले और मैं खूब लोग के सिखा ले
7: अच्छा
8: ये लग आली पाली मचन भजन कीर्तन रोल भी बीती
7: हाँ
8: ये लग रेली बल नहीं आ जाता आकाशवाणी बल मच पहले पहले लग लो बेला उतरो कलाकार ये था नहीं रहा
7: अच्छा अच्छा उदल दायले तो गीत गोविंद चले चले
8: मच
7: तो गीत हिसाब ने बोलते कई कसन गीत मन हुआ ना दसन हल्बी भतरी छत्तीसगढ़ी तू के काय काय जानी जाले
8: मैं हल्बी जीत आए
7: हल्बी
8: आए छत्तीसगढ़ी हिंदी ओडिया तो जाने लेकिन ये था मच आकाशवाणी हल्बी की मच प्रसिद्ध होली
7: अच्छा अच्छा और हल्बी गीत ने बोले जसन की नाट गीत भजन गीत असनी प्रकार चो गायसित होती ने हाँ हाँ तो दादा ये सांगना जसन की तु गीत गाऊ जाने बोले तो कहीं बोले असन खिनिक गीत सुरता आसे चलाम चो रेडियो सुन तो भाई बहन मनोल खिनिक सुनाऊ दिस कोनी बोले गीत
8: गीत हाँ गोटक और बोले भगवान बीती बोले सुनवा जाल बोले गोटक लोक गीत

मंद सलपी बरणी लंदा ये सब निशा बेकार फांदा ये सब निशा बेकार फांदा मंद सलपी बरणी लंदा ये सब निशा बेकार फांदा ये सब निशा बेकार फांदा हाप गुंजई भांग उरामो ये सब निशा बेकार कामो ये सब निशा बेकार कामो हाटिया हाप गुंजई भांग उरामो ये सब निशा बेकार कामो ये सब निशा बेकार कामो ए निशा के पीउली आम के ए निशा के पीउली।

की एनी साके टकर पड़े ए काई चो फायदा नहीं गौरिया भाई तुम्ही तो मंद की पिया नहीं गौरिया भाई तुम्ही तो मंद की पिया नहीं राजसिरिया रु खजाना घुटका सुरती ढूंगिया चूना राजसिरिया रु खजाना घुटका सुरती ढूंगिया चूना बीड़ी सिगरेट आदत पड़े बीड़ी सिगरेट।

बर्षा पानी कम होए से मांगा होए से चाउर निशा खातो काजी पैसा कौड़ी कांच पावा और बाल बच्चा के पोस्तो काजी बाल बच्चा के पोस्तो काजी।

बुरे से धन सरे से शरीर होय से घाटा घर चुमाई पिला झगड़ा टेंटा हो सुत मारा पेटा मंद खाद लोने मोरू कचिया गे से मंद खाद लोने मोरू कचिया गे।

गला मथुरा पूरे कंस राजा बन जाऊं एक ठाकुरे बंदी घरे कंस राजा बन जाऊं एक ठाकुरे बंदी घरे देवकी माता गर्भ धारी चपेट ने पर घूरल।

मोला काय सुंदर सामल रंगाई देवकी चोपिला दखा दखा मथुरा ने कृष्ण जन्म मोला देवकी माता गर्भधारी वसुदेव आय बाबा श्री कृष्ण जन्म मत के दकुन होला काबा श्री कृष्ण जन्म मत के दकुन होला काबा श्री कृष्ण स्वरूप के दकुन माता पिता चकित होला माता पिता चकित होला दखा दखा मथुरा ने कृष्ण जन्म मोला काय सुंदर सामल रंगाई देवकी चोपिला आ सरकपुर नहीं द राजा गर्जन करे से घुलुन घुलुन बिजली रानी चमकुक धरे से घुलुन घुलुन बिजली रानी चमकुक धरे से इंदर वरुण घर बरसा पानी बरसाउंदीला दखा पानी बरसाउंदीला दखा दखा मथुरा ने कृष्ण जन्म मोला काय सुंदर सामल रंगाई देवकी चोपिला आज कृष्ण बंदी घरे जन्म मोलो येता बोलुन नहा दखुन खुबे हरिक होली माटी धरती माता दखुन खुबे हरिक होली माटी धरती माता पवन देवता सीतर पवन लेरा बुहाउंदीला दखा लेरा बुहाउंदीला दखा

0: के देखाऊं दिला भगवान रूप के देखाऊं दिला देखा देखा मथुराने के नजन मोला काय सुंदर सामर रंगाई देवकी चोपिला देखा देखा मथुराने कृष्ण नजन मोला।
1: कितलो अच्छा ये कृष्ण जन्माष्टमी भजन गीत भजन सुनालीस और गीत गान बोले सांगलीस और सुनालीस बोले हो दे इतने रहो किनी किनी गाओ और दादा ये सांगना जैसा ये तो भजन गीत तो गाउन सुनालीस ऐसे पहली बार बोलीस कि नाट बोले सिखाते रहे बोलते तो नाट गुरु बोल रिलीज होती
0: नाट गुरु मैं जो बेटा हो रहा
1: था। अच्छा तो उनके तू ही सिखा लीस कि
0: मैं गीत के लिख ले बेटा नाट सिखा ला।
1: अच्छा अच्छा मतलब नाट गीत के तू ही लिख
0: ली
1: तो उनके खिनिक बोल सुरता से कहीं ऐसा तीन चार लाइन सुनाती मातर जो पहली सांग की जो बजाई सी ये बाजाज का नाम है ना ये
0: ये बाजाज खंजरी नाम खंजरी बाजाज
1: खंजरी उनके बजात का बड़ा कला लागे इसमें अंडकी दखते रहे कि तुझे तीन ठन अंडकी उता पड़े से
0: नहीं
1: हम खंजरी बजात नहीं
0: पड़ी जाए रजी जितने बोली बाय जसन पानी हो सुन बात ये तो ये भी ये क्या उता का बोली ने ये जसन बजा लिखा हाँ गोटक पाल हो
1: के बजात का छे बोले भी तो खुद ले सिकलिस की को कि देखन सिकलिस ये
0: नो असने हम जो बाप दादी दिन ले बजावत मानतर मैं सब ले सियान मन बोले उतरो नी बजावत
1: हाँ, नी हाँ, नहीं सपाय लोग तो बजाव जानो नी
0: हो नी बजावत दर्शन बिना आसन का है सब बजावत
1: होता रास्ते भी उनके बजावत
0: है मैं तो कितनी खंजरी फटा ले पासे
1: हाँ तू चल
0: गई दुर्गा गाड़ी डेंग का नाले मंगा ले लेकिन बड़ी मन चुबती मकमानी पसंद नहीं
1: हाँ हाँ ये कितना रकासन होली तू चल गा
0: ये खंजरी मुझे धर लो 25 रुपया खंजरी आई अबे 500 600 नाल खंजरी नहीं
1: अच्छा अच्छा
0: 25 रुपया बेरा धर लो
1: कितना रकासन ले आज तू चल
0: ये लगी खूब

0: तालले आज भाउ म के थोत्रो सनसनी के वाटनी आइ मान्छ असले असले पनि मञ्च खञ्जरी ढोल्की बनात गयो काय चित्री के मनी पास नि लिगनु एक हुनी भगत मर्ने बाट्यो अलिक बिता मनात हुन भगत मन बाटे बाट गेले तारापुर भन्या गाउँ बाटे आज हुन मन के माङ जन्ने जाउत जुर्गा गादी तल मगाउ हुन मन चोक मै दोखुन दोखुने बाट भगत मन चोक म भाउली तो मकबल यसने खञ्जरी मिर्तो राय आनन्दी आवल दोकान दिला लाई 25 रुपियाँ चाहे 5 रुपियाँ फेर अलिक भगवान मन के काहीँ भगवान जति एकाध काहीँ दिले 30 रुपियाँ कर जाए
1: नाट गीत बोल लिखवाए बोलते तो नाट गीत बोल सुरता जल खिनिक आमचो रेडियो सुन तो भाई बहन बोल खिनिक सन सुनाऊ देस मतलब खूबी निगा ज्यादा लंबा हो
0: गटक सुलचना हरण माधव राजा जो चरित्र आए देखा होता ये गटक बीता का मांगुरला ये विद्याधर राजा का उनके माधव राजा गेल और फिर माधव राजा उनकी उबरात का जी उबरा उबरा बलून भाती गंदनी वाली फुलवार इनके फिर चिट्ठी पठा लो फूल को दीप चो गुणा कर राजा चो बेटा का जो उनकी देवरला हाँ गुणा कर चो मैं मानी विद्याधर का जो उन देवरलो आ हो तो फिर माधव राजा आए हुन बिताए उनके सांगुन दिला गुन चंद्रकला मन हुन पर गटक लिखी आसे जान राजा चंद्रकला के उसको गाय तो उरा उरा करते रहे नहीं राजा मैं बोल गरीब घरों लोग आए वो मज पर घरों बुआ दी आई पर घर मुख बिया दान कर ला गटक लेकी आस का ना जिन मांगो तु जानू फूल को दीप ने गुणा कर चु बेटी आसे सुलोचना हुन काय सुंदर आए तू कि दखलन ती पल से बोल तो राजा एकदम उनके सुन लो और घोड़ा की घुमाती गेल वालू बोल तो गन्नी मालिन फुलवारी लग गेलो
1: अच्छा
0: गेलो तेबी गन्नी मालिन फुलवारी जुन चो कैसा लेन देन जाने बोलून भाती चंद्रकला सांगुरे कसन बोलले राजा घर उन फुलवारी ना लेकी चो घोट की होना से जाने हुन कही लग जा कुटन धरलो नाल बायली उपरो को उन भाई आर उकिल धरलो नाल निया लोड़ी को उन भाई आई आर उपर दलार धरलो नाल बोय लगा धरू को उन भाई हुन तो कुटन धर से उनके बोल तो गेलो मने

0: दाग भाई चुकली जन दादा एटा मेला इली 10 दिन चुका है नी निवरला आज ले 10 दिन होली इनकी महालापाती कर ला होता दिला काल की बी आई हुआ हर आज ती मग बोलूं देश बोल सी चुकली होती भी जंतु चुका जैसा बोल तो राजा छी बोल वार हो लाए गागलो इतनी गाग तो भी थी होता
1: तो वली गोटक नाट
0: ये ना नाच उसकी राम नीला नाच हो लगा से
1: दक मधुराम दादा तू इतलो अच्छा तू चो कला के अच्छा ले सरसरा ले सांगलीस गीत गान बोले सुनालीस और नाट बोले लिखवाए बोलीस नाट गीत के बोले इनके बोल सुनालीस ये बोल गोटो कला ये भी तो लोग उतलो नी जान सो भुलकते जा सो दाई कसन मात्र तू अच्छा करलीस की तू चो बेटा तू बोल लीस तुम तन आसे तो उनके सिखा लेस बोलते तुम बोले ये भी नाट सिखाए सुनने ये तो समय पीला कर दे ये बल गोटक आम चो बस्तर ने आम चो कला संस्कृति के बचा तो काचे बल गोटक बोलवे उट है की आप लोग पीला बोलसनी सीखा तो रहा है जाना तो रहा है ते भी आम चो जो उन कला है उन बाचू रहे थे जान दे लोग तो पीढ़ी तो इतलो अच्छा गोट बात के तुम सर सर वाले सांगली सा उनको कहते खूबे खूबे जुहार
0: जुहार दादा
2: तो दादा दिन में तो कितरो अच्छा ये मधुराम भाई आप लोग आलो गीत के हमके सुनाते रहो और ये में संगे गोट बात करते रहो से यार कर से अब तो इमरान जो जो गीत गोविंद कथा में सुन लो मंत्र संगे संगे दादा दीदी मन में बोलते रहे गोट गीत सुन ले और नंगत लगती ने तो वाले गीत के सुनो अरे गीत के गा सोत मेघनाथ पटनायक और मंच संगवारी मन

तो दादा दिन में तो काई सुंदर गीत रहे और एक गीत गाउन रहत मेघनाथ पटनायक और मुझे संगवारी मान तो दादा दीदी में दाम छो जातो बेरा फसे तो वाले विदा दियास कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तो सब पाए कलाकार दादा दीदी मन के मैं दसरी करें से जुहार।

अभी कार्यक्रम कला और कलाकार का प्रसारण हो रहा था। हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 12:30 हुए हैं, आइए सुने ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार।

जुहार दीदी मन, जुहार। घर द्वार कार्यक्रम सुन तो सब पाए दीदी मन और संगवारी बहिन मन के मैं दसरी करें से जुहार। और रोजी दिन असन नान नान पीला मन के मचो बाटले खुबे खुबे माया। तो दीदी मन देखा अमी देखो सी कि हम जो घरे मल्लो ने सियान सजन पीला झीला सब पाए मिसुन मिसुन रहूं से। तो असन हमी घर ने रहूं से पीला झीला संगे सियान सजन संगे तो घर भले उदिम लागे से। और दीदी मन तुम्हें सब पाए देखे साहस जाने साहस कि हम जो घरे पीला मन नहीं रहले बल्लो ने गोटक दिन बले बाठन बाट जाऊन रहे तो घर बल खेडी खाम के चिमना लागे से ने। और हम जो घर जो सियान सजन रसोत उन मन बले के भी बल्लो ने कहे गेले बले हम केवल खेडी अच्छा नहीं लागे से। तो बलतर गोटी आए दादा दीदी मन की हम जो घरे सियान सजन पीला झीला ये सब पाए हमें मिसुन रहूं से तो हम के बले खूबे हरेक लागे से बल्लन घर बले खूबे भरे भरा लागे से। और संगे संगे गोड बात बल करूं से तो हमी हमके अच्छा लागे से। तो असन ने दादा दीदी मन हमें देखो से कि हम जो जोन दीदी मनात हुन मन आप लोग जोन घरे माए बाप रसो सास ससुर रसो हुन मन संगे देखा कभी कभी तो असन है से कि चिड़चिड़ान भाती गोट बात कर सोत। और कभी कभी असन है से कि हुन मन संगे नंगत गोट बात वाले कर सोत। तो ये सफाई गोट के हम जो घरे जोन पीला मन रसोत हुन मन लेख कर सोत पक्की। तो यही काजे दीदी मन हमके लेख कर तो रहा कि पीला मन चो बल्लो ने पूरे हमके चिड़चिड़ फटफट नहीं होता रहा कसन बल्ल ने दीदी मन हमी जसन हमें जैसे सियान सजन मन संग हमी गोड बात करुआ हुन मन जो आदर सत्भाव करुआ तो उसने हम जो घरे जोन पीला मन रसो तो हुन मन दखा दखी हुन मन भले उसने कर दे। तो एक आज दीदी मन हमके जो हम जो घर जो सियान सजन मन संग नंगत गोड बात करते रहे आदर नंगत प्रेम भाव ले हुन मन संगे रहते रहे। तो उसने दीदी मन दखा और असन बोले से कि हमी जसन घरे तो हम जो घरे सियान मन रसो तो हमके खिंडिक बल्लो ने डर और भय बल नहीं लागे से। कसन बल्लो ने हमके एक खिंडिक नंगत लागे से कि हमी बल्लो ने कि हमके कोनी बाहर चो लोग मन हमके कहीं लुक नहीं सकोत ना कोनी डरक बल नहीं सकोत। तो असन हम जो मन में खिंडी हम जो बोलो ने गर्व रहे से कि हम जो घरे सियान सजन असद बल थे ने। तो उसने पीला झीला बोले देखा हम जो बल्लो जहाँ मैं करूँ से जसन हम बल्लू से उसने हमें सीख सोत। तो ऐ काजे दीदी मन हम जो जोन पीला मन रसोत घरे नानी पीला मन हन मन के हमके ए नंगत गोट मन के सिखा तो रहा है कि तुम जो दादा आए कि आई आए

0: संगे तुम के मतलब बल्लू ने नंगत गुड बात करते रहे अच्छा नंगत प्रेम ले नंगत हन मंचो आदर्श भाव करते रहे तो जैसन हमें सीखा वहाँ पिला मन उसने कर दे और दादा दीदी मन हमें देखो से कि हम जो घरे से आंसर जनरल हमें केवल खूबे नंगत लागे से और खिंड हम जो वर्षक से आंसर जनरल ने हम कैसन लागे से कि हम जो घरे वर्षक खूटा सना से जैसन और खिंड हरी खुदी भले लागे से तो दीदी मन दखाई गोट मन तो होली मान तर हमचे संगी हमचे लगी और ये गोट बात आसे तो वाले की बोले सुनो।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कॉन्क्रीट चॉइस।
3: सो बिड़किन बिड़िया राहत तिंदनत उंडना सामान तलाय दरकता डबल रोटी आरी और छेना पनीर असित के इंजे जीएसटी लगे मयो इदेन संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोलावेंट कम की सित तोड़ अदेन के इलाज तलाय खर्चावेंट कम लगे माता जीवन बीमा तगवेंट इंजे जीएसटी छूट दरकिता अदेन के पॉलिसी पोइतनत इंजे सस्ता आंता सुडला कार गाड़ी और 350 सीसी ता पोटरो गाड़ी ता पर्रो 28% जीएसटी मत्ता अद कम मास इंजे 18% अत्ता इदेन मतलब इद की इंजे गाड़ी पोटरो गाड़ी असित के सस्ता दोर की ता।
0: तो दीदी मैंने गोट मन के तो सुन लू अंतर दीदी मन देखा अभी तो उन मन का जो समय समय ने भेंट वार्ता भीतर का एक ठन असन कमानी कर तो हम चो बहन मन दीदी मन संग भेंट कराते रहूं से तो उसने आजी बोले दीदी मन तो उन मन का जी भेंट वार्ता भीतर आसे जय माँ लक्ष्मी स्व सहायता समूह चो बहन ए बहिनात श्रीमती रतनी और ये बहन समूह ने अध्यक्ष पद ने काम कर सो और देखा ये बहन कितरो अच्छा ये समूह ने रहून भाते कई ठन काम होता के बोले करसो तो इनमन समूह ने रहून भाती काय काय काम होता के करसो तो वाली इनमन इनमन चमूले हमें सुनुआ और इनमन संगे गुड बात करसो सीआर कश्यप तो वाली इनमन च गुड बात के हमें बोले सुनो।
4: रेडियो सुन तो सपाय लोग के जुहार तो बहिन मन ऐसा ना है कि आमी तो आमचो जीवना चला तो काचे कई कसन काम बुता मन करूं से और जीवना अच्छा चलो बोलते काम बुता संग संगे अगर आ कहीं आमदनी मीरो बोलते आसन कहीं वाड़ बोल करूं से सोच विचार बोल करूं से उन्हीं हिसाब ने आमचो जीवना जो ना है उन चले से और घर चो जितने लोग आसो तुम मनचो खान पान नहले फिंदा वड़ा होली ना लापलो अपलो जीवना के अच्छा अस्थिर बना तो काचे पीला झीला मंचो पढ़ाई लिखाई काचे नहाले आमचो घरचो सियान सजन मनासो तुन मंचो दखा रखा काचे आमचे खुदचो खान पान काचे कई नाल कई आमके मूर काम बुता करुक लाए लागे से उन्हीं हिसाब ने आमके आमचो गांव पारा ने बोले कई कसन दीदी मनासो बहन मनासो जो नापलो मसागत करुन बाती आगे बढ़ सोत असनीची एबे कई कसन गांव मन ने बोले स्व सहायता समूह मन बल बनान बाती आपलो काम धाम मन बोले मूर कर सोत असनीची आजी आमचो लगे अमर लासोत ई दीदी मन स्व सहायता समूह ले जुड़न बाती आपलो काम मूर करला अरे मन चुनाव गांव के मैं मन चीची टोंड ले सुनुक लाए मेरे दे तो दीदी तू के सब लागे जुहार
5: जुहार
4: तू चो नाव और गांव चो नाव सांगो दे
5: मचे नाव रतनी बगेला केसापुर कतवाल पारा चुआ है मैं हुताज जानू ये मच समूच नाम है जय माँ लक्ष्मी समूह
4: अच्छा।
5: मैं हुताज अध्यक्ष चुआ है
4: अमी
5: जानू समूह जोड़लू 2010 ने समूह जोड़लू आरु अमी समूह जोड़न बारी फिर गांव गांव ने अमी दुई भोईन जानू समूह जोड़ाते बुल्लू ये प्रधान संस्था दादा मनी लागुन
4: अच्छा
5: आमी समूह जोड़ाते बोलू दीदी मन आमी कसन समूह आयाले आमी नी जोड़ू बोलते रहूँ आमी बोलते रहू दीदी मन एवं जानू राशन काट के काटुआ समूह नी जोड़ाले बोलू बोलू आमी जानू समूह जोड़ाते बोलू
4: अच्छा 2010 ने
5: 10 ने हाँ समूह जोड़ाते बोलू समूह जोड़लू आरु आमी जान एवं समूह जोड़ तक आमके खूब बहरी खोली आर मैं जानू समूह जोड़ाल साल ने 12 ने जानू मैं साग सब्जी मंडाले
4: अच्छा
5: बाड़ी ने
4: हाँ
5: हमें बर को डाले
4: अच्छा
5: हाँ बर को डाले और साग सब्जी मंडाले आरु 8-9 हजार साग सब्जी के बिकले आरु फूल के बल बिकले 3 हजार
4: अच्छा।
5: गेंदा फूल के आरु तुलो ने जानू मैं के खूब हरिक लागली मैं काय हो मैं के खूब खूब जग्गा बल जानू हम चे केसापुर

0: पंचायत ले झारखंड बोल नहीं उड़ला।
1: अच्छा
0: 15 दिन हम झारखंड रेलो मैं 30 गांव के दखले ये पशु सखी मंच नारी अदालत के बहन दखले हुतावल नहीं उड़ला महाप्रभु च दयाने समूच दयाने हुतावल गेले आर मैं दखुन बारी ले आर एबे बोले जानू मैं समूचो का तो उपसमति चो दीदी आए मैं हुनता ने आउर जानू टूटलो फुटलो समूह मन के आउर बोले मैं जोड़ा के जाऊ आए आर खूबे सुंदर होली खूब आम चो केसापुर ने तेवीस समूह आसू आमी
1: अच्छा अच्छा
0: तेवीस समूह आसू हुनता ने जानू आमी पैसा 10 रुपया 20 रुपया जमा करून खूबे पैसा होली गुनुक जान आमी एबे खूबे बोलू गुनु आमी साल ने 1000 जान दीदी मंडी बनाऊ आमी एक दीदी के 30 रुपया बनाऊ आरु आम चो खुशी चो दीदी मंडी बनाऊ।
1: अच्छा
0: आरु आमी जानू एबे बड़े बड़े अधिकारी मन के बोले जानू आमी सांग ते बुलवाऊ कागज दे आमी सब के सांसद बन ने अरे सब लोग के आमी सांग हुआ।
1: अच्छा अच्छा ये दक तू के समूह ने जसन 2010 ने जुड़ मूर कर लो बोलिस तो उदल ना है असन समूह के जुड़ तो काचे तो के असन तकलीफ नहीं लगली दीदी कि ये काय काम आए असन होलो ने काय होए दे बोलता असन कहीं विचार ने बोली ली
0: पीली मांतर जन पांच जन मौके राति बेरा बोले ये ते रोत मैं हाँ। भात गारून बोल समूह जोड़ा जाते रहे।
1: अच्छा
0: अरे उन बारी जो राम ते रहे
1: हाँ हाँ।
0: मके एक बाबू आए मके जान गाड़ी चेगान चेगान ने तरह जो दीदी तु गोटे वास बोल तरह आए और आम के पास जानू समूह जोड़ा बुला सास बोल नाम के 100 रुपया पैसा बोल देते रहे।
1: अच्छा अच्छा उधर दाए ने अरे बे बोल मेरे से पसंद कहीं पैसा को
0: ये बे आमी उपसमति ने और नवा जोड़ लू से ये थाने का है मेरे देखा समझा
1: हाँ, हाँ।
0: ना जुन होली से।
1: अच्छा अच्छा आओ जसन समूह जोड़ तो काचे जसन तुम से पंचायत ने चीज दखवास की और गांव ने बोल दखवास
0: और गांव ने बोले चिंगपाल बोले आए।
1: अच्छा
0: और माली पदर बोलू आते तू हाँ, जानी हाँ। माली पदर बोले आए टॉपर बोले आए हम बार बार बोले जानू बुलून बुलून सांगू।
1: अच्छा गोटोक समूह ने कितक जान दीदी मंडराय साथ जाले
0: आमचे समूह ने 10 जन आसू कोनी थाने 12 जन आसू कोनी थाने जानू 15 जन बोले आसत कोनी समूह ने।
1: अच्छा अच्छा और द कसन समूह बनान बाती बोले कई कसन दीदी मन काम बुता मन बोल धरचो सरकार बाटले जितो बोल योजना मन मिरे सा सन कई योजना मन चो लाभ धरला सा
0: धरलू से।
1: अच्छा
0: आमी धरलू से लाभ बोले मिरली आमके एबे जानू समूह ले जोड़न बल पैसा निकरान आमी खेती किसान बल बनालू
1: हाँ,
0: हाँ। आरु सीखलू।
1: अच्छा
0: धान रोपत काजे डोरी लमान धान रोपत राय बोलून
1: हाँ, हाँ।
0: साग सब्जी बोले बाड़ी ने बनात राय गोरला बाड़ी बना बोलून सांग लागन हुनके बोले आमी एबे सीखुक मिरली।
1: अच्छा अच्छा और दक तुमी सिखालो ना और बल सीख तो काजे तुम चो मनासे असर ने
0: आमके
1: और दसन अभी बोला से चलो आगे बोल बोला कि झारखंड बोले जाओ रहे बोलते तो झारखंड तुम चो समूह ने बोलो बे 10 जन आसात बोला तू एकला जाओ रे की 10 जन
0: नहीं मैं आम चो समूह का एक जान।
1: अच्छा
0: बोलू केसापुर पंचायत का 2 दीदी।
1: अच्छा
0: पंचायत
1: तो उता बोल कहीं असन ट्रेनिंग असन होली कहीं कहीं सिखाला
0: सिखाला का आमी अच्छा जानू दादा मन के बोले पिए खाए लोग के तुम्ही जानू सुध रहा गाली लोग के बोलून बोलला और सिखाला आमी कुकड़ा गाली बोल बंद कर लू आम चे चिंग पालने होते रहे गुन।
1: अच्छा
0: और गुनता ने बोले आमी 2 दीदी जाऊ रलू और बोले धमतरी जानू मके एक दीदी आम च पंचायत च पटा रला।
1: अच्छा उता कित दिन रली जाले
0: उता 5 दिन रले
1: हाँ, हाँ।
0: जेंडर बीती चो टेरलिंग पटा रला।
1: अच्छा
0: उन टेरलिंग 5 दिन कर ले आर ये उन बारी मैं जेंडर चो काम करते रहे आर जन कोरोना होली।
1: अच्छा हाँ,
0: हाँ। एक बैठक ने जानो 200 पैसा जमा होते रहे।
1: अच्छा अच्छा तो जसन जहाँ जहाँ गेली तु ट्रेनिंग मन धरली सुन मन तले कागज मन बोले मिर ली
0: मिर ली का संगाले से बोले मैं टेरलिंग कर लो बीती मन के आर रायपुर ने बोले जाऊ रे मैं आम चो पंचायत का जे मके पटा अच्छे मैं खुबे जगह मैं बुल ले से।
1: अच्छा हाँ तो जसन के भी असन तू मन ने बोले असन के भी लागली का नहीं जाले जसन की कोनी साहब मन आसो नाल कोनी अधिकारी आसो तुम मन के कसन गोठियात राय कोनी कोनी दीदी मन असन हुआ की पूरे जन लाज बल हुआ उन मन से तानले गोट निकरू बोलना आए तो असन तू के भी असन नहीं लागली
0: मके पहले पहले लागते रहे
1: हाँ, हाँ।
0: मांतर जानु मैं हिंदी गोटे नहीं जाने मांतर ये भी जानू मके बिकट मया करू आ तो बड़े बड़े अधिकारी मन बोले ये दीदी बढ़िया गोटे हुआ है बोलून बाहर चो दादा मन बोले ला जाले मके तिहारू आत गोटे आओ दीदी बोलू आत आरु मैं उबुआ आरु मैं हुन मन के असनी अच्छा गोटे वहाँ आगे तो पहले पेंट शर्ट पिन्ह दल के पुलिस भी तामनी ला बोलू खूब डरते रहलू
1: नहीं तुम तुम्ही सी नहीं गांव पराने सपाई लोग असन मन ने रहते रहे बे बोला से उन सब के आम के असन सोचतर न है आम के पूरे हन बाती काम धाम कर लन काहे कि आम जो बढ़ती अच्छा हो गले सके और दीदी दा की जो समूह संग संग और कहीं असन बुता कहीं करो आज जैसे खेती बाड़ी होली
0: खेती बाड़ी बल कर
1: पशु जानवर पोस्त और असन कहीं
0: और ये वे बोले और जानो बकरी बल पसंद बोले मैं सांग ले से
1: अच्छा
0: मान तर मेरे दे दीदी बल ला से मैं खुद के जानू कुकड़ा मन काज बल जानू मैं ईटा मार ले हाँ। और जानू मैं घर बना ले कुकड़ा काजे
1: बल्लू बे कुकड़ा बल पोसली से
0: ओ पसंद से
1: कित बर कसन होली
0: दो साल होली पहले बेरा जानू 6,000 बिकले और दूसरा बेरा जानू 4,000 बिकले
1: अच्छा ये जोन कुकड़ा पोस्तो का जोन बीजाए बोलो बे तो उन कहाँ ले मिरे जाए
0: ये जानू पैसा थोड़े जमा कर पड़वा उन समूह बिता मन जानू पहनने सांगुआत हम पैसा जमा करा दीदी हम कुकड़ा मिरवा बोलवात मचे दीदी मन के सांगुन तो कुआ हम नहीं बोलवात मैं ये बोले और बिष्ठान थानी छठान मरला और चौदह थान ने जान और 1800 बिकले और छठान कुकड़ी आस और फिर जान 1800 से जानू और छोटे कुकड़ी में धर अच्छा। ले
1: और दक इतलो जक कुकड़ी चिमड़ी पोषण बाती बोलती मन का चबल घर बना ले बोल सी इतना बेटा बोला नन बाती उनी आमदनी इंची आई कि और कहीं उनचो लागा बोल धर रेस था काई का संजल कुकड़ी घर बना तो काच कि उनी बिक्री बाजरी करून बाती
0: बिक्री बाजरी करून करून बारी ए बना ले है ओले मिर ली सीट अच्छा, बोले
1: हाँ, हाँ।
0: सीट और पाइप मिर ली मैं खुद के हुनी माटी बना ले अच्छा, ईटा अच्छा, उनके जानो उठा ले गुनम के बल्ला की दीदी आप खुद के बना ली बोलन बारी मके बल्ला बना ले मके कोनी बना देते लोग नहीं बोल ले यार मके अभी आमदनी होली यार खूब भरी खोली आगे तो काई के नहीं जानते रहू और गाँव पारा बोले जानू ये बे उजरते गेला
1: और दीदी दक जसन ये कुकड़ी पोसली सी बोलली तो उनमन चो चारा दाना का सर असनी ढिलुरु आस के गए
0: ना ही मैं अब जानू सास सच दाना घेनु नीले उनी कुकड़ी मन के बिकले आरु
1: अच्छा
0: और फिर जानू ये जंदरा घेनु बारी और पिसा ले
1: हाँ।
0: मिलन कुकड़ी मन खुआ
1: हुआ अच्छा और उमन के जसन बीमारी सीमारी बल हुआ है तो उसन काज बोला सर डॉक्टर मन बोल दखवास की असनी कहीं नहीं मरुन जासो तो सन कहीं
0: विचार मरु आत का है मर तो भी थी मांतर जानू दो ही बल दिला से पैसा अच्छा। दे उन बैठ धर ले से उन दो ही बल कोंडा संग मिलान बैठ कुआं हुआ है
1: अच्छा और ये कुकड़ी बिकतो काचे लोग घेनु कुले तुम चो घरी बात की हट बाजार नहीं वहाँ
0: नहीं घरे वाले हुआ मोचो दादा जानू एबे मैं समूह पैसा धर ले आरु कुकड़ा घेन तो काज तक पूंजी काज दिले हाँ। जान कुकड़ी जगर हुआ है देसी कुकड़ी और जान तोका पालने और कोड़े नार ने जानू बिकुक नहीं हुआ है मुझे दादा
1: अच्छा
0: बिकुक नहीं उन्हीं संग दूटान तीन ठान के ये सोनाली कुकड़ी की बोले नहीं हुआ यार बिकुक
1: अच्छा अच्छा तो दक तू तो इतलो अच्छा काम बुतक कर से समूह संग संग रो रो ने कुकड़ी चिमड़ी बोल पोसित और जो लागे बोल सांगलीस की साग सब्जी बोल लगवाए बोलते तो सपाए साग भाजी तो तू घर चीज कमाए सी तू जो खातो काज बोलो बिक्री भाजी कर
0: दे और एक दूसरा को मैं देऊ बोले
1: बोले
0: एबे पहले चो दादा मन तो गेला एबे नवा दादा मनीला प्रधान ने पहले जोड़लू एबे बिहान होली
1: हाँ, हाँ,
0: बिहान ने बल फिर आउर जानू एबे एता होता जात का जे मके हाग देवात मैं जाऊँ आए
1: एता
0: होता और मके खूब भरिक लगुआ है मैं नी गेलो ने छिया जी का होली बे बोलून बात मके उन चिंता ने रुआ है मुके जाऊ भाऊ है आजी बोले हाक दे उरला
1: अच्छा।
0: भाटा गुड़ा ने
1: हाँ, हाँ।
0: मांतर मैं जानू ये भाटे उन दिन ने उरलू उनी का जाऊ दिखाए मैं थोड़े असन बोले मैं गोटे आए दे बोले
1: नहीं नहीं अच्छा बोली
0: और इलू मके खूब भरिक लागू है और मैं थोड़े असन मैं गोटे गाना गाए समझो
2: जा तोरा दीदी दीदी मंडई जा तोरा जा तोरा दीदी दीदी मंडई जा तोरा दीदी मंडी गेलु जाले खूबे सीख कमीरे दे दीदी मंडी गेलु जाले खूबे सीख कमीरे दे जा तोरा दीदी दीदी मीटिंगो जा तोरा যতরা যতরা যতরা দিদি দিদি মিটি গো যা।

0: वैसी कुकमीरे दे जा तो रहा दीदी दीदी मीटिंगो जा तो रहा दीदी दीदी मीटिंगो जा तो रहा।
1: दा कितलो अच्छा गीत बोल जानिस तुई, तुझ लग तो खूबे कला वाला से हुनर वाला से कसन। तो ये जो गीत गावली से के ऐसन कहीं ट्रेनिंग मने सिखा ला कि तुई तुचो बाट ले ऐसन गीत गाउ बोल जानी सागत ले
0: नहीं सागत ले नहीं जाने बाबू समझ और तो के
1: अच्छा
0: और फिर वाल गोटक ना नहीं सुना और गाएं ता
1: आले आले सुना दे।
0: ए राम चो समू कितलो सुंदर आय ए राम चो समू कितलो सुंदर आय गाँव गाँव ने जातो राय समूह जोड़ा ने तो राय गाँव गाँव ने जातो राय समूह जोड़ा ने तो राय ए राम चो समू कितलो सुंदर आय ए राम चो समू कितलो सुंदर आय सरकार ने जातो राय मिलून मिसून रतो राय सरकार ने जातो राय मिलून मिसून रतो राय ए आमचो समू कितलो सुंदर आय ए आमचो समू कितलो सुंदर आय पंचायत ने जातो राय गाँव के विकास करतो राय पंचायत ने जातो राय गाँव के विकास करतो राय ए आमचो समू कितलो सुंदर आय ए आमचो समू कितलो सुंदर आय गाँव गाँव ने जातो राय सबके समूह जोड़ा तो राय गाँव गाँव ने जातो राय सबके समूह के जोड़ा तो राय।

तो दीदीमन एमन चो गोट बात के तो हम सुनलो मानतर दीदीमन मैं बलत रहे कि कमानी धमानी चो गोट संग संगे गीत गोविंद बोले हम चो जीवन आने खूब जरूरी हो से तो आले बिरानी बनाऊ और एक गीत के सुनू।

तो दीदी मैंने तो काय सुंदर गीत रहे और एक गीत के गान रोहत विपिन बिहारी दास और मंचो संगवारी मन। तो दीदी मन देखा मैं बोलते रहे कि आजकल हमें देखो से कि घाम तो लागे सीमांतर संगे संगे मंझन पहाड़ के कभी पानी लहरा पानी बल हो से नहा फिर कभी कभी बलो ने सांझ पहाड़ के बल ऐसे तो असन समय दीदी मन देखा हम कभी कहीं काम बुता का बल बाहर जाऊँ से तो असन समय ने दीदी मन हम के खिंडी का बल्लो ने कोई दुकान थाने नाले घर थाने असन डनिक भी सातरो वाला है बल्लो ने बाटे घाटे पानी अमराली बल्ले ने बल्लोन कहीं हमके जसन गज खुट जो खाड़ ले हमके निरत रहे तो दीदी मन असन करुन हम ये बोले कहीं गरहा ले हमें बाचुक सकूं। तो दीदी मन दखाए गुट मन तो होली मांतर संगे संगे मचो जातो बेरा बोल से तो आले विदा दिया घर द्वार कार्यक्रम सुनतो सब पाए दीदी मन और संगवारी बहन मन के मैं दसरी करें से जुहार।

0: अभी बहनें सुन रही थीं अपना कार्यक्रम घर द्वार। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है, दिन के 1 बजने को हैं। अब समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है।
2: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकाबंदी बमबारी से कहीं अधिक प्रभावी साबित हुई है। श्री ट्रंप ने कहा कि सीमा पार हालिया मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता आगे बढ़ रही है। आज झारखंड सहित पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।

0: पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 42वें ओवर में 3 विकेट पर 202 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान तथा विदर्भ में लू की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आइए सुने कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चुगोट।
2: काश्तकार भाई बहन मन, रकम रकम चो साग कमानी तो तुम्ही मन करे साथ। मांतर गोटुक साग जिचो फूल के आमट, फर के झोर साग और एचो पाना के भाजी साग रूप ने आमी खाऊं से तो हुन साग होए से मुनगा। दादा दीदी मन मुनगा ने कई किस्म चो बलबफू आम के मिरे से जे आमचो देह पाए काजे खुबे नगद होए से। एचो कमानी कर ले आमी नगद देह पाए संगे अच्छा आमदनी वाले धरुकला सकू। खेती हर दादा दीदी मन काई बले कमानी कर ले लेहरा पानी और माटी के बले दखोक लागे से। मुनगा कमानी तुम्ही सफाय बरन माटी चो बेड़ा ने करुक सकास। मांतर बालू बीती लाल माटी भुई और करिया माटी चो बेड़ा मुनगा कमानी काजे खुबे नगत रहे से। मुनगा चो दुई किस्म होए से, बरककार बीती आरु खुबे बरक धरतो बीती। मुनगा कमातो काजे बले नगद किसीम आसे। जसन एक बरक ने होतो मुनगा किसीम मंचो नाम KM1, PKM01, PKM02 आरु मादिकल मुरुंगाई। एक किसीम मंचो मुनगा बरककार ने उपजन देव मुरियाय से। एकी बीचा मडाउन आरु कलम हिसाब ने बले रोपुक सकास। बूटा के रोपलो नहाले बुनलोर 90 से 100 दिन ने फूले उप मुरियाय से। ये मुनगा बूटा झपल नाय नानी बूटा मनसन होय से। असने बहुवर्षीय बल्ले खुबे बरक फसल धरतो किसी मन ने जाफना मूलानोर मुरुंगाई, चवा काचेरी मुरुंगाई, चिमुरुंगाई आरु पाल मुरुंगाई, पलामेड़ू मुरुंगाई नामन खुबे नगद किसी मन होय से। बहुवर्षीय मुनगा रोप तो काजे कलम विधि ने करुक सकास। बरक कारचो जूना रुख ले आमी नवा बूटा बना तो काजे कलम धरुक सकू। एचो काजे जड़ चो खंडिक ऊपर चो भाग बल्लो ने तना भाग नगद ठोसर और मजबूत होतोर आसे। रुख ले कलम काटून एक सीधा थाला ने रोपन देतो राय। बूटा ने झपके जड़ धरा तो काजे IBA रूटेक्स सी हार्मोन्स नाचो ओखत के देतो राय। बरककार ने कमानी धरतो मुनगा किस्म के बीचा मंडाक लागू आए आरु 2.5 एकड़ भूई ने मंडालो बीचा के 625 ग्राम लागू आए। बहुवर्षीय कलम विधि ने कलम रोप तो काजे खोड़लो खोदरा 2 से 3 भीता रतोरा से बूटा ले बूटा चो दूरिया बल्ले 5.35 मीटर बल्ले 12 से 15 हाथ रतोरा से। असने एक वर्षीय बल्लो ने बरककार ने होतो बीती मुनगा काजे खोदरा बल्ले 1.5 से 2 बल्ले 2.5 भीता रतोरा से। एक वर्षीय बल्ले बरककार ने होतो मुनगा काजे खुदरा 1.5 से 2.5 भीता रतोरा से आरु बूटा ले बूटा चो दूरिया 2.5 मीटर बल्ले 6 हाथ होतोरा से। बूटा मंडा तो पहेल खुदरा मन ने गोबर खत देउक लागे से। बीचा किसीम के रोप तो काजे प्लास्टिक झिली मन ने बीचा के अकराउन पाछे खुदरा ने रोपुक सकास। मुनगा कमानी ने बूटा मन के नगद गोबर खत देउक लागे से। बूटा मंडालो रोपलो बरककार ने गोबर खत बूटा चो 1 मीटर बल्ले 2.5 हाथ दूरिया ले गोंडरा पाड़ून देतो राय। संगे संग 230 ग्राम यूरिया, 1 किलो फास्फोरस और 250 ग्राम पोटास गोटोक गोटोक बूटा चो हिसाब ने देतो राय। मुनगा बूटा खांदक अमरलो तंवल होले ऊपर चो खेंदा खाबड़ा मन के चोखाड़ून देतो राय। चोखाड़ून दिलो ने नगद पील धरे दे और बूटा मन घुबरा घुबरा होए दे। जेथा ने नगद भाजी और फर फूल आम के मिरे से। बरककार चो कमानी मुनगा फसल चो पाना भाजी मन के 3 महीना ने टूटा तो असन हो जाए से आरु 6 महीना ने फर बले टूटा तो असन होक मुरियाए से। कलम मुनगा बल्लो ने जसन हमी खुबे बरक काजे लगालू से तो असन बूटा मन ने मुनगा फर 8 से 9 महीना ने धरुक मुरियाए से। मुनगा बूटा ने बल नी रहे बूटा खंडिक लेहरा ने ढुलन जाए से। एचो ले बचातो काजे आम के एचो जड़ चो लगे लगे ले बूटा के बचातो काजे खंडिक आड़ असन बनाओक लागू आए। तो दादा दीदी मन असन उपाय करून भाती तुम्ही मुनगा कमानी करला साले नंगत उपजन धरुकले सकासे।
1: अभी आपने सुना कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चौघोट का पुनः प्रसारण। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र। श्रोताओं एक सूचना सुनिए, फोन इन किसानवाड़ी की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक की जाती है। इस बार का विषय है खरीफ में सब्जियों की खेती। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ईशांत कुमार सुखदेवे।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
2: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर 0 कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है, क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
3: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। पेश है पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो साथी प्रीति। आपके पत्रों की खुशबू और आपकी फरमाइशों को लेकर फिर हाजिर हूं आपके बीच। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और सुनवाते हैं आपको ये पहली फरमाइश फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से। आवाज है लता मंगेशकर की। अनजान के शब्द संयोजन में धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने। फरमाइशी खत है आपके। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन। गोगावा जिला खरगोन से उस्मान खत्री, रिजवान खत्री, अब्दुल गफ्फार खत्री। बमरचाटी डीह से हैं गंगा देवी देवांगन, पूनम देवांगन, धनेश्वरी देवांगन, महेश्वरी देवांगन, कुमारी मिल्की देवांगन, बेबी मीनाक्षी निधि देवांगन। कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश देवांगन, आशीष देवांगन, रवि, मोनू, सोनू, काना, आदित्य देवांगन। मध्य प्रदेश खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ललित, मनीषा, शुभम, भावना, कनिका, आदित्य, मानस पटेल और मन पटेल। मध्य प्रदेश रतलाम से हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजू बाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा, यशस्वी वर्मा। पाठर कवड़ा से हैं अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, प्राची बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनुश्री बुरांडे। फुटानी चौक से ललन मिश्रा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या, लल्लू पंडित, भाई फटफटिया झा, गुंजन परासर, डब्बू मिश्रा, छोटू मिश्रा, बीके सुरगनिया। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया। करता

बेडी सिंह, राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री दोमने, वैष्णवी दोमने, चंचल दोमने, अर्जुन गवेनकर और धीरज। भाटापारा से हैं सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, दिनेश तिवारी, सावर नायक, अंकिता जोशी, वैदेही जोशी। जगदलपुर से पूनम नायडू। सागर मध्य प्रदेश से हैं चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक एवं तन्वी गौहर। पन्ना मध्य प्रदेश से कौशल किशोर, संगीता, हर्षित एवं वैभव मट्टू। नागपुर से हैं कैलाश प्रसाद शर्मा, किरण शर्मा, आशीष कुमार शर्मा और अमृता शर्मा। तो लीजिए सुनिए ये गीत।

महेंद्र कपूर के स्वर में सुनिए फिल्म हमराज का गीत। साहिर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है रवि ने। पसंद है आपकी। वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से हैं कुमारी वंदना मराठा, कुमारी देविका चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाव मराठा, परी संजना मराठा, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और ललिता नारायण खर्चे। छत्री तालाब

अमरावती से है साधना रानी गुप्ता, किशोर गुप्ता। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, ताज देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा। सतना बिल्डिंग जबलपुर से अनीता तिवारी, अंजना तिवारी, बीना तिवारी, ज्योति और गौरी। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। बेडी से हैं हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची करमकर, तनिया करमकर। पांगरा शिंदे हिंगोली से हैं सुनील जबड़े, टेलर आरडी इंगोले, देव किशन इंगोले और चांदू बलखंडे। नागेश्वर नगर माटेगांव से हैं शेष राव बोबडे, सुवर्णा, सोनाजी, सीताराम, शुभम, बालाजी बोबडे, वेणुताई, वैष्णवी बोबडे, नावकीकार मातोराम भुसारे। अशोकनगर हिंगोली से हैं दीपाली राजू ठोके, पार्वती सखाराम ठोके, रोहित सोनू मोनू ठोके। छत्रपति साहू नगर हिंगोली से हैं पेंटर रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत, टिंकू इंगोले, रमाबाई, सुरेंद्र इंगोले, मयूरी, सुरभि, मंजूषा, गौतम इंगोले। ताजपुर मोरबा से हैं भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंज राज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नित, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, जयंत कुमार बैरागी। जतुका किशनपुर से हैं आलम दिलकश, शबाना आलम, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम, नाज प्रवान, चांदनी नाज। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम। उत्तर बस्तर कांकेर भानु प्रताप से हैं प्रकाश तिरसुनिया, विकास तिरसुनिया, नैतिक, मुकुल, दिव्यांश, धैर्य और आराध्या। तो लीजिए सुनिए फिल्म हमराज का ये गीत।

ढाई अक्षर प्रेम के अगला गीत है इस फिल्म से, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल ने। गीत रचना भैरव अरुण की, संगीतकार हैं जतिन ललित। और पत्र लिख भेजा है आप सभी ने, ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से हैं राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति, शशिकांता प्रजापति। अनारकली बाजार जगराओं से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा पाठक। गणेशपेट पारथड़ी महाराष्ट्र से अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल, अमृत और सुवर्णा शिंदे। टिकरी मेटा बिल्हारी पाटन दुर्ग से हैं संतोष शर्मा, रुकमणी शर्मा। गुरामी डोंडी लोहारा बालोद से हैं पीयूष नेताम, जोहत्रीबाई नेताम और कोमल नेताम। हथखेरा भाटापारा से पंचू यादव, दादू यादव। बावली से हैं कमलेश साहू, हरेंद्र साहू, सुशील बेल, सुप्रिया। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं रामकुमार राउत, अमरीका राउत, गणेश राउत, कार्तिक राउत, युवराज राउत। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, राधिका तुषार तामुरिया, डॉली मास्टर अलकबीर, बेबी पूजा तामुरिया और प्रभा देवी तामुरिया। डुमराव से हैं वल्ली उल्लाह अंसारी, आसमा नाज अंसारी, सोनम, लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जतेक बीरक, मीका बीरक। देवरी भाटापारा से हैं गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा और गणेश मिस्त्री।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और विभा शर्मा की आवाज में। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीत है आनंद राज आनंद का। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी, बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया मध्य प्रदेश से हैं संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह, शुभम विश्वकर्मा, अरुण विश्वकर्मा। कलाना राजस्थान से हैं विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना, भरत कुमार। नाईवाला राजस्थान से वेद मीणा, अलका मीणा। जागोद राजस्थान से हैं शंभू दयाल खटक, बिमला देवी खटक। हीरावली फाजिलका पंजाब से हैं सुभाष गुदारा, विमला गुदारा। जलालाबाद वेस्ट पंजाब से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी अरोड़ा। पदमपुर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा। साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से हैं गुरमीत सिंह मीता। गांधीग्राम गुजरात से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राय, महराज जहां। बोटसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली, प्रियांशु साहू। कवर कॉलोनी बड़वा से है प्रवीर श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू, रीतु सिंह, ऋषभ सिंह। बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू रोशनी और अजय गंगराड़े। लक्कर बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोइन छोटू पवार और मोहम्मद हसनैन पवार। गांधीबाग अकोला से रमेश कटंकर, वैशाली कटंकर। महाराष्ट्र से है रुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा सालिया, शोएब खान, मुस्तबा खान, रऊफ भाई, शहीद भाई। गौतम नगर नांदेड़ से हैं प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले।

अभी आपने सुना हद कर दी आपने इस फिल्म का गीत। अगली फरमाइश आई है गोल बाजार बक्सर से हैं श्रद्धा नंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित, झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश, कमल, सेतपाल, भूमिका सुशीला दादी, चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से हैं दरिया नामल, अनीता मोटवानी, राजेश, मुकेश मोटवानी, मूर्तिजापुर से हारून शाह, शाजिया बानो, नवागढ़ कटई से हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामनी वर्मा, राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से हैं राष्ट्रपाल गजबीय, राधिका गजबीय, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबीय, महामायापारा ग्राम दरचूरा से हैं फिरंता साहू, दुलोरिन साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू, ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा, मोतीलाल साहू, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हैं रविन्द्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा, स्वीटी छावड़ा, अनूपपुर से हैं श्रीमती जयमंत्री, कृष्ण केवट, अंजलि केवट, रेणु केवट, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तानिया, कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से हैं योगेश गुजराती, रेखा गुजराती, तुषार, किशु, आनंद जोशी, अभय गुजराती और भवानी सिंह बैस, मयूरी परिसर भोपाल से श्रवण सिंह गिन्नारे, जगदीश गिन्नारे, रेखा, विनीता, शेर सिंह गिन्नारे, संजय पगारे, कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक और समस्त बत्ता परिवार।

आप सभी ने सुनना चाहा है इश्क है तुमसे। इस फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका यागी के युगल स्वर में, समीर के शब्द संयोजन में धुन तैयार की है हिमेश रेशमिया ने।

इंदिवर का लिखा गीत सुनिए फिल्म आशिक से, जिसे गाया है अलका याज्ञिक और कुमार सानू ने। संगीतकार हैं जतिन ललित। चाहत है आपकी। दिल्ली शहर मोरी रोड से हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, शेरी वडनेर अकोला से बलदेव दामोदर, अरुणा दामोदर। दरियापुर बावली महाराष्ट्र से हैं गजाना नेले, नवदीप येले। कोरदा लवन से भूधर प्रसाद वर्मा, घनश्याम प्रसाद वर्मा, गुलशन कुमार वर्मा, शिव कुमारी वर्मा, हेमलता वर्मा, वेद किरण वर्मा। झुमरी तलैया से देव इंगोले, छोटू दादा इंगोले, छकुली इंगोले। पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन और वंशिका दिवाकर। जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्ला आसमा बेलदार। बिहारी कॉलोनी लोनी से हैं परवीन डोम, सरूफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम।

सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, कटोरा तालाब रायपुर से हैं मोहनलाल देवांगन, कृष्ण कुमार ध्रुव, तामनलाल भारती, झावेंद्र कुमार ध्रुव, तालुका निवासा खुपटी महाराष्ट्र से हैं बंडू लोहार पोपलघट, माया शिवांश, चंद्रकला पोपलघट, देवीदास पोपलघट, राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सूर्यांशी गुप्ता, कोमल गुप्ता, मेनका गुप्ता, माधवी साध्वी, एमके गुप्ता, राजू गुप्ता और विनीता गुप्ता। ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से हैं मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक गुप्ता, पंखुरी गुप्ता। राजनगर मधुबनी से हैं कुशेश्वर कांति गुप्ता, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र गुप्ता और रिद्धि सिद्धि गुप्ता। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म आशिक का ये गीत।

कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए फिल्म इतिहास से, अलका याकिक और कुमार सानू के युगल स्वर में। गीतकार हैं समीर, अनुरोध है आपका। गीदम रोड जगदलपुर से हैं टी राजू राव, टी सुनील राव, शिवानी राव, तुलसी जया राव, भाग्य लक्ष्मी राव, कीर्ति राव, आनंद राव, मनीषा राव, नानू राव, रोहिणी राव और राधिका राव। बुराला धरण मालेगांव से हैं दत्ता घयाल, सुनीता बाई घयाल, सानिका घयाल, गजानन घयाल। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण गरोवर, रमेश मिगलानी। बोरखेड़ा उज्जैन से हैं विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मूड़त। फरड्डी बालो छत्तीसगढ़ से हैं मंतुराम यादव, चित्ररेखा यादव, साहिल यादव, शिवम यादव, केशव यादव, माधव यादव, राकेश यादव, रितेश यादव, पोषण यादव, नेत्राम यादव, संतुराम यादव और विजय यादव। बंगला मटिया बालोद से शिवकुमार अंगारे, अंजनी, त्र्यंबिका, लीना, अंश और आशुतोष अंगारे। दंतेवाड़ा बचेली से बलराम सेन, इंदु सेन, पुष्पराज सेन, रितिका सेन, पोषण सेन, भुवनेश्वर सेन और समस्त सेन परिवार। झारखंड बड़ा बाम्बो सुपाई साई गांव से हैं देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश तांती, कुमारो निशा, रेशमा, प्रीति और देवन जी। यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से हैं दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार। कुम्भार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, राजी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन और संतोष चंदन। इसी गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी घंटाघर चौक खंडवा से हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया। धांडी नांदुरा महाराष्ट्र से हैं संदीप बाठे, श्री कृष्ण बाठे, अमूल्य बाठे। रायगढ़ से हैं अक्रम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद नूरजहां, वलीउल्लाह नूरजहां, रेशमा तिवारी, सोनम और आदिया। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्लाह फकीर, डब्लू उल्लाह फकीर, परवीन आजमा फकीर। बाग बहरा भदरसी से हैं पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन, खुशबू सेन। गुमला झारखंड से एसएम जावेद, शगुप्ता अंजुम। गोरबा बिलाईगढ़ से देवलाल कर्ष, कामनी कर्ष, यश कर्ष। यवतमाल विदर्भ से हैं संतोष खड़से, विनोद खड़से। औरंगाबाद से राजेश आबेल पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश। कुर्मीपारा बेमेतरा से हैं सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता सारथी, कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। ये हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से। छोटी बलिया करजत से हैं नुरैशा अहमद, आमना असरीन, इमरान इकबाल। शेरकोट बिजनौर से हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कौसर। सनावद मध्य प्रदेश से हुकुम चंद कटारिया, पिंटू सेन, हरि निवास खेड़े, दीपक, सचिन कटारिया, श्रीमती प्रभा कटारिया, कृष्णा, विराज, अर्णव और काव्यांशी कटारिया। यहीं से हैं दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार।

तो श्रोताओं, लीजिए इस गीत का आनंद और दीजिए मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त प्रीति को कार्यक्रम श्रोता सुमन से इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। दोपहर समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद

0: 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेंतुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
3: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
0: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित है। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर

0: शब्दांग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
0: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
0: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना पक्षियों को दाना खिलाना डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
0: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
0: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अलवर टिक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
0: तो विमलेश जी अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
0: जी।
2: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह, इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानो यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है
0: जी। हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान शांति अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
2: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
0: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं।
2: जी अजीत जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
0: जैसे?
2: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
0: जी सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
2: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
0: तो क्या क्या नियम है इसके?
2: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वा
0: यानी
2: हारमोनी या सामंजस्य।
0: और दूसरा शब्द क्या है?
2: दूसरा शब्द है केई
0: जी,
2: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
0: और श्रोताओं, तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
2: श्रोताओं, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
0: जी हाँ, तो श्रोताओं, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं, ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है
2: जी। एक और खास बात ये है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा
0: जी। और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
2: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
0: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह सादगी विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है
2: जी।
0: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
2: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
0: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
2: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
0: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
2: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
2: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
0: और हाँ,
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
2: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
3: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से, बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
4: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ। पाए लागू बड़ी बहुरिया।
5: आ गए भैया।
4: हाँ।
5: लो ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ।
4: हाँ। बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन? बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी?
1: अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
2: अरे देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ।
3: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
2: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ।

0: लो।
1: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से। कह देती हूँ, बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते।
0: और हाय,
2: हर गोविंद भाई,
0: हाँ?
2: तुमको एक संवाद ले जाना है आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
0: कहाँ बड़ी बहुरिया?
2: मेरी माँ के पास।
0: माँ के पास? कहिए, क्या संवाद है?
2: माँ से कहना मैं भाभी भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए?
0: बड़ी बहुरिया,

0: हर कोबिन भैया, ये 5 का नोट ही बचा है अब। पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिक्र मत करिए। ये नोट रखिए,
0: अरे
1: हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा, चलता हूँ।
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: भाई साहब,
1: हाँ
0: थाना भीमपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना भीमपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
1: हाँ, घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है।
0: हाँ?

0: थाना बिहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रहकर उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हरगोबिंद भाई, मां से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी मां तो है, किस लिए, किसके लिए मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं।

0: बड़ी बहुया, हम क्या करें?
1: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
2: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
3: पाए लागू माँ जी।
4: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
3: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
4: मेरी बेटी का कोई संवाद?
3: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं। हाँ? बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
4: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
3: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
4: सो तो है।
3: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
4: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहाँ अब क्या रह गया है उसका? जमीन जायदाद तो सब चली गई, तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी?
4: हाँ सो तो है। चलो अच्छा है बबुआ, अब थोड़ा जलपान कर लो।
3: अच्छा अच्छा माँ जी।
4: अरे हरगोबिंद, क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
1: हरगोबिंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हरगोबिंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया? वो किस लिए आया था? वो झूठ क्यों बोला? ये सोच सोच कर रात भर हरगोबिंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माँ जी के पास जा पहुंचा।
3: माँ जी, अब आज्ञा दीजिए।
4: अरे
3: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी, अब पाए लागू।
4: जीते रहो बेटा,
3: अब चलता हूँ।
2: क्यों भाई, रहा खर्च तो है?
3: अरे भैया जी, आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
2: अच्छा
3: अच्छा, राम राम।
2: राम राम
3: राम राम।

टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान।

0: भूख से बेहाल, थकान से चूर, लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
2: बड़ी बहुरिया।
1: हरगोबिंद भाई, लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, आप पी लो, पी लो। शाबाश शाबाश शाबाश, अब जी कैसा है?
2: बड़ी बहुरिया, मुझे माफ कर दो।
1: कहे?
2: मुझे माफ कर दो,
1: पर
2: मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
1: हरगोबिंद भाई,
2: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम सारे गांव की माँ हो, तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
1: हरगोबिंद भाई, तुम
2: मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। बोलो बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? नहीं जाओगी ना? नहीं जाओगी ना?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी।
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम संवदिया। आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिए।
4: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration and the journey towards Viksit Bharat. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, tribal communities move forward with hope, dignity and determination. Celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive and empowered Viksit Bharat.
5: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम जो हमें लेकर जाएगा मरुभूमि यानी
3: मरुस्थल में या रेगिस्तान में
5: जी,
3: और बताएगा विस्तार से रेगिस्तान के बारे में। तो आइए जानते हैं रेगिस्तान या मरुभूमि के बारे में और सुनते हैं कार्यक्रम द डेजर्ट।
6: दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजन्स कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड सराउंडेड बाय हिल्स may find it difficult to imagine what a desert is really like. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and, therefore, no vegetation grows. It is dry, hot, waterless and without shelter. But this is not entirely correct. For those who have studied it, the desert can be a beautiful place. It is the home of a variety of people, animals and plants that have learnt to live under very hot and dry conditions.

0: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज रात 8:15 पर मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में आज शाम 5:05 पर। आज शाम 5:10 पर होगा युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी हिंदी भाषा में। सुखराम बघेल और साथियों के स्वर में ध्रुवी लोकगीत आज शाम 6:35 पर। आज शाम 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम बस्तर के स्वर। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी आज शाम 7:21 पर। आज रात 8 बजे कार्यक्रम शिक्षकों के लिए, विषय बाल अवस्था में शरीर पोषण और स्वास्थ्य। वार्ताकार होंगी स्नेहलता दीवान। बच्चों का कार्यक्रम पिलामन काजे गोठ आज रात 8:30 पर। प्रस्तुति होगी सुक्रुराम यादव की। आज रात 9:15 पर कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। पत्रों पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम मोचो मंचो गीत आज रात 9:30 पर। आज रात 10 बजे लोकवाद्य धुन के कार्यक्रम पाड़ में सुनिएगा लोहंडिन गुडिन पाड़ और हिंगलाजिन माता पाड़। वादक कलाकार होंगे कालिदास और साथी। ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब सुनिए कल के कार्यक्रमों के बारे में। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना कल सुबह 6:05 पर। सुबह 6:20 पर सुनिएगा चिंतन। आलेख और स्वर होगा गर्जन सिंह वरकड़े का। श्री रामचरितमानस का गायन कल सुबह 6:25 पर। स्वर होगा सविता देवी का। संगीत निर्देशक होंगे सतीश भाटिया। कल सुबह 6:35 पर और कल दोपहर 1:05 पर कृषि शामी की बेड़ा खड़ा चो गोठ। कार्यक्रम भुलोली में कल सुबह 6:40 पर आप सुनेंगे राउत गिरली पाड़। कलाकार होंगे गणपति कड़ियारी और साथी। कल सुबह 7:05 पर होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। इसके आकर्षण होंगे पत्रांकन का भाग 2। प्रस्तुति होगी चंद्रशी ठाकुर की, संपादक रूपाली पारोई। साथ होगा हल्बी समाचार बुलेटिन और होगी मधुर गीतों की मधुरिमा। कार्यक्रम लोकमंजरी में कल सुबह 8:30 पर सुनिएगा विभिन्न बोलियों में लोकगीत। कल सुबह 9 बजे कार्यक्रम झुमझुमा में आप सुनेंगे नीरबती और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत। कार्यक्रम एक ही फिल्म से कल सुबह 9:30 पर। फिल्म होगी दिल ही तो है। कल सुबह 10 बजे कार्यक्रम गुलशन में सुनिएगा शीर्षक फिल्मी गीत। शीर्षक होगा मंदिर। कार्यक्रम गुरुदू में सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे सुखमती और साथियों के स्वर में भतरी लोकगीत। कल सुबह 11 बजे कार्यक्रम एक ही कलाकार। कलाकार होंगे गीतकार हसरत जयपुरी। कार्यक्रम सबरस में विभिन्न प्रदेश के लोकगीत सुनिएगा कल सुबह 11:30 पर। कल दोपहर 12 बजे कार्यक्रम कला और कलाकार। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार कल दोपहर 12:30 पर। कल दोपहर 1:10 पर होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT कल दोपहर 2:30 पर। कल शाम 5:10 पर सुनिएगा युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युवाणी हल्बी बोली में। गोंडी समाचार बुलेटिन कल शाम 6:30 पर। कल शाम 7 बजे कार्यक्रम बस्तर के स्वर। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव कल शाम 7:21 पर। कल रात 8 बजे कार्यक्रम कूड़े फूल में आप सुनेंगे रायबारी और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत। बच्चों का कार्यक्रम पिलामन काजे गोठ कल रात 8:30 पर। प्रस्तुति होगी शंभुनाथ नाग की। कल रात 9:15 पर कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम उवाट में कल रात 9:30 पर आप सुनेंगे अजय मीरी से बलवीर सिंह कच्छ की भेंट वार्ता। कल रात 10 कार्यक्रम परिचर्चा में आप सुनेंगे बस और नातापंता विषय पर लोकनाथ बघेल और बलदेव मौर्य से बलवीर सिंह कच्छ की भेंट वार्ता। पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा कल रात 10:30 पर। यह थी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में।
1: केंजनोरी श्रम सामयिक विषय नग आधारित कार्यक्रम त संघ नन सावित्री नाग केंजनोरी नेर तमावा इत कार्यक्रम छत्तीसगढ़ संघ देश भर तक चला की मुतत खेत बचाओ अभियान तक केंद्रित मिंदे। प्राकृतिक खेती तीन परिस्थिति न माटी त उर्वरकता नेहताना और रासायनिक खाद त असंतुलित उपयोग तीन कम की न उद्देश्य ते देश भर तक यु दिनाम खेत बचाओ अभियान चला की मुतुर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान 9 जून ते मध्य प्रदेश त रायसेन जिला तक रमाशिया नार तिना ईद अभियान त मूर कित्तुर। ईद अवसर ते श्री चौहान कित्तुर की खेत बचाओ अभियान ओंड सरकारी योजना अयो बल्कि धरती माता नेहतना ओंड राष्ट्रीय संकल्प और कित्तुर की तोड़ी नेह के वेडा नहीं दीता किसानीर बरकश आतोर आर देश समृद्ध दाता और संतुलित उर्वरक न उपयोग मिट्टी परीक्षण मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राकृतिक खेती जल संरक्षण और वैज्ञानिक कृषि पद्धति तीन परिस्थिति न आह्वान कित्तुर। श्री चौहान किसानीर किन अपील कित्तुर की वीर रासायनिक खाद और कीटनाशक न अंधाधुंध उपयोग की मत बल्कि थोड़ी त जांच की जरूरत अनुसार उर्वरक की न उपयोग की वीर और कित्तुर की रासायनिक खाद त दिब्बे उपयोग कितके थोड़े तिना उर्वरक का मायनद और अगमंदनद लाभकारी सूक्ष्म जीव माननद इदिना सीधा असर उत्पादन और खेती त लागत तक आयनद। ईद अभियान ताकेट किसानीर किन तोड़े परीक्षण संतुलित पोषण प्रबंधन प्राकृतिक खेती आधुनिक बुवाई तकनीकी जल संरक्षण और उन्नत खेती ता तरीका करितुर। श्री चौहान कित्तुर की खेती तीन लाभकारी पारना केंद्र सरकार ता प्राथमिकता मिंदे। केंद्रीय मंत्री कित्तुर की स्व सहायता समूह

0: का माध्यम ते मुते किन रोजगार आय तक वृद्धि और स्वरोजगार तीना जोड़ा किनोर पात्र मुते किन समूह ते जोड़ा किस मंज अविकिन प्रशिक्षण इनोर तान संग अविकिन वित्तीय सहयोग और चुटला व्यवसाय मुर्कीना अवसर वेंडे इनोर अवेटे अव आत्मनिर्भर बने मई श्री चौहान अधिकारी लोरिन केत्तुर की वेर अभियान तचुट नियमित रूप ते नारी नग अंज किसानीर किन तकनीकी सहायता ईविर खेत बचाओ अभियान ताकेट छत्तीसगढ़ तक वेंडे किसानीर किन प्राकृतिक खेती संतुलित उर्वरक उपयोग और मृदा संरक्षण तक प्रति चेता की मुतुर अभियान ताकेट ग्राम पंचायत विकासखंड और जिला स्तर तक कृषि संगोष्ठी चौपाल जागरूकता कार्यक्रम ता आयोजन की मुतुर इदिना अलावा जैविक उत्पादी नग प्रदर्शनी वाटमुतुर इचुटन कृषि वैज्ञानिक किसानीर किन रासायनिक उर्वरक की न दुष्प्रभाव प्राकृतिक खेती तालाब मृदा स्वास्थ्य संरक्षण और खेती त लागत तग कम की न उपाय त कबूल इमुतुर तान संग मृदा परीक्षण आधारित पोषक तत्व प्रबंधन और फसल त आवश्यकता अनुरूप उर्वरक की न उपयोग त संबंध तक वेंडे अर्थोतमुतुर प्रदेश भर तक नेका आवागमन क्षेत्री नग बीतिलिका किना माध्यम ते मृदा संरक्षण और प्राकृतिक खेती त प्रति किसानीर किन चेता की मुतुर इदिना अलावा किसानीर किन प्राकृतिक खेती अपना किला शपथ वेंडे पितुर अभियान ताकेट स्वस्थ जीवन शैली तीन प्रसितीना आर तिंदना नी त खपत कमी तना उद्देश्य ते वेंडे माने किन चेता की मुतुर अगर हरी खाद जैव उर्वरक नैनो उर्वरक SSP NPK और सूक्ष्म पोषक तत्वी न उपयोग तलाय किसानीर किन प्रेरित की मुतुर इदिना संग पंचायत स्तर तक गठित खेत बचाओ समिति त वेटका वेंडे पितुर 30 जून एवना चले मायनद खेत बचाओ अभियान कृषि भूम तीन नैताना और किसानीर किन वैज्ञानिक खेती तलाय चेता की न दिशा तक ओंड बिड़िया पहल इद अभियान ताकेट कृषि वैज्ञानिक कृषि विश्वविद्यालय नोर विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र नोर अधिकारी कृषि विभाग तर टीम और जनप्रतिनिधि नार अंज किसानीर किन चेता की मुतुर
1: आप सुन रहे थे समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युवावाणी हिंदी भाषा में।

0: हेलो, हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। उम्मीद है आप सभी जहाँ भी हैं अच्छे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और इस खूबसूरत शाम का आनंद ले रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस सुहानी सी शाम में आपके और हमारे पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, जिसमें मैं हूँ आपके साथ आपका रेडियो साथी खिलेश पांडे।
1: और दोस्तों, मैं आपकी रेडियो कंपेयर दोस्त ऋषिका वर्मा। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा अभिवादन।
0: नमस्कार। तो ऋषिका, कैसी हो तुम?
1: मैं तो बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो खिलेश?
0: मैं भी बढ़िया हूँ ऋषिका। ऋषिका, आज सुबह मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था। बातचीत के दौरान रिश्तों की अहमियत पर चर्चा होने लगी।
1: अच्छा।
0: हाँ, आजकल अक्सर सुनने को मिलता है कि रिश्तों में पहले जैसी मिठास नहीं रही। तुमको क्या लगता है इसकी क्या वजह रही होगी?
1: देखो खिलेश, मुझे लगता है कि इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है एक दूसरे को ठीक से ना समझ पाना। लोग अपनी बात तो कहना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले की बात सुनने के लिए समय कम निकालते हैं या सुनना ही नहीं चाहते।
0: हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। जब सुनना कम और अनुमान लगाना ज्यादा हो जाए तो गलत फहमियां पैदा होना स्वाभाविक है।
1: सही है। और खिलेश, यही जो गलत फहमियां है ना, वो धीरे धीरे रिश्तों के बीच दूरी बढ़ाने लगती है। इसलिए आज हम बात करेंगे रिश्तों में विश्वास और समझदारी की।
0: बिल्कुल, अगर विश्वास की बात करें तो यह किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है।
1: हाँ, और खिलेश

0: चाहे दोस्ती हो, भाई बहन का रिश्ता हो या माता पिता के साथ संबंध, विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता लंबे समय तक मजबूत नहीं रह पाता।
1: बिल्कुल, तुमने देखा होगा कि जिन रिश्तों में भरोसा नहीं होता
0: हाँ,
1: वहां छोटी छोटी बातों पर भी विवाद होने लगते
0: सही
1: हैं।
0: बात है, क्योंकि वहां लोग एक दूसरे की नियत पर संदेह नहीं करते, वे जानते हैं कि सामने वाला उनका बुरा नहीं चाहेगा।
1: बिल्कुल, लेकिन कई बार लोग दूसरों की बातों में आकर अपने करीबी लोगों पर ही शक करने लग जाते हैं।
0: सही बात है, और यही वही सिचुएशन होती है खिलेश, जहां समझदारी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और किसी भी रिजल्ट पर पहुंचने से पहले पूरी बात जानना बहुत जरूरी है।
1: हाँ, सही कहा। कई बार एक छोटी सी बातचीत बड़ी से बड़ी समस्या को हल कर देती
0: हाँ,
1: है ना?
0: और कई बार बातचीत ना करने से छोटी सी बात भी परेशानी बन जाती
1: बन
0: है।
1: जाती है। तो दोस्तों, रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए समय देना भी बहुत जरूरी है।
0: और आज के जो बिजी जीवन शैली है उसमें लोग अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना भूल जाते हैं, जबकि रिश्ते समय और ध्यान दोनों मांगते हैं।
1: हाँ ऋषिका, मुझे तो ये लगता है कि सम्मान भी विश्वास जितना ही महत्वपूर्ण है।
0: हाँ, और खिलेश, जब हम किसी की भावनाओं और विचारों का सम्मान करते हैं, तब सामने वाला भी खुद को इम्पोर्टेंट महसूस करता है।
1: बिल्कुल, और यही भावना रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत बनाती है।
0: हाँ, और जो हमारे युवा हैं, युवाओं के लिए ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के दौर में रिश्ते जल्दी बनते हैं, लेकिन उन्हें निभाने के लिए एक पेशेंस और समझदारी बहुत ज्यादा आवश्यक है।
1: हाँ ऋषिका, हर व्यक्ति की सोच, परिस्थितियों और व्यवहार अलग-अलग होते हैं, है ना? इसीलिए एक दूसरे को समझने का प्रयास करना चाहिए।
0: सही है, और यदि हम केवल अपनी बात पर अड़े रहेंगे और दूसरों का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है अगर वो नहीं सुनेंगे, तो रिश्तों में बहुत जल्दी दरार आ जाती है।
1: मैं यही कहना चाहूंगा कि विश्वास रिश्तों को जोड़ता है और समझदारी उसे टिकाए रखती है।
0: बिल्कुल, और जब हम इन दोनों के साथ प्रेम और सम्मान भी जुड़ जाए तो रिश्ता और भी खूबसूरत बन जाता है।
1: बिल्कुल,
0: दोस्तों और हमारे प्यारे से श्रोताओं, उम्मीद है कि आप भी अपने रिश्तों में सम्मान और समय दोनों देंगे, क्योंकि समय एक बार अगर निकल जाए तो कभी वापस लौट कर नहीं आता। अपने प्रियजनों के साथ बैठिए, माता पिता, दोस्त, परिवार, बैठिए उनके साथ, बातें कीजिए, उनको कुछ सुने और उनको सुनाए, दोनों चीजें करें और अपना रिश्ता मजबूत बनाए।
1: तो श्रोताओं, अपने रिश्तों को समय दीजिए, भरोसा बनाए रखिए और एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए।
0: तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की शाम के लिए हम खिलेश से जानते हैं कि आज वो हमारे प्यारे से श्रोताओं और दोस्तों के लिए क्या-क्या कार्यक्रम लाए हैं।
1: श्रोताओं, आज हम लेके आए हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जिसमें हम सुनेंगे आपकी पसंद की गीतें, और साथ ही लाए हैं वार्ता। विषय होगा स्थानीय भाषा बनाम छत्तीसगढ़ी भाषा। वार्ताकार होंगे पुष्पराज सिंह, और जानेंगे हम कुछ सामान्य ज्ञान की बातें जो आपने शायद ही कभी सुनी होगी या जानी होगी। दोस्तों, हमारी आज की शाम का पहला गाना है फिल्म बॉम्बे टू गोवा, जिसे स्वर दिया है किशोर कुमार ने। गीतकार है राजेंद्र किशन, संगीतकार है आर डी बर्मन, और इन गानों की फरमाइश की है और इन गानों की फरमाइश की है हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर, तनु करमरकर। छत्तीसगढ़ भाटापारा से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर। कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हनुमान।
1: तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: तेरी तस्वीर नहीं तेरा एहसास देखा है, हर दुआ में बस तेरा ही नाम लिखा है। जब भी खुद को देखा तेरा अक्स नजर आया, शायद इसी मोहब्बत का नाम ये आईना है।
1: तो दोस्तों इसी के साथ सुनते हैं हमारा अगला गीत। फिल्म तमन्ना से स्वर दिया है किशोर कुमार ने, गीतकार है माया गोविंद और संगीतकार है अनु मलिक। और दोस्तों इस गाने की फरमाइश की है

बारखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन, दीक्षा, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर, माया, सुनीता शर्मा, सुनीता जैन, मीनाक्षी तिवारी, गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सीता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, कुमारी लाल राय, बुल्की वाली फलना, नया नगर सुपैल से श्वेता रंजन, रजनीश कुमार, आनंद कुमार चिलना। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं ये गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
3: तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम को देते हैं विराम और रुक करते हैं वार्ता की ओर। विषय है स्थानीय भाषा बनाम छत्तीसगढ़ी भाषा। वार्ताकार होंगे पुष्पराज सिंह।
4: नमस्कार साथियों, मैं हूं पुष्पराज सिंह और मेरा आज का विषय है स्थानीय भाषा बनाम आधुनिक भाषा। छत्तीसगढ़ अपनी समृद्धि, संस्कृति, लोक परंपराओं और सरल जीवन शैली के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ की भाषा इसकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है, जिसे स्थानीय भाषा कहा जाता है। इसके साथ साथ हिंदी, अंग्रेजी और अन्य आधुनिक भाषाओं का प्रयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। आज के समय में स्थानीय भाषा और आधुनिक भाषा दोनों का महत्व समाज में अलग अलग है। आइए इसे समझते हैं। स्थानीय भाषा वह भाषा होती है जो किसी क्षेत्र के लोग अपने दैनिक जीवन में बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी सबसे प्रमुख स्थानीय भाषा है। इसके अलावा हिंदी, गोंडी, सरगुजिया आदि भाषाएं भी बोली जाती हैं। ये भाषाएं लोगों की संस्कृति, परंपरा और भावनाओं से जुड़ी होती हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा बहुत सरल, मधुर और भावपूर्ण मानी जाती है। गांवों में आज

अपने घर, बाजार और सामाजिक कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ी का उपयोग करते हैं। लोकगीत, लोक नृत्य और कहावतों में इन भाषा की मिठास साफ दिखाई देती है। आधुनिक भाषा से मतलब उन भाषाओं से है जिसका प्रयोग शिक्षा, तकनीक, व्यापार और सरकारी कार्यों में अधिक होता है। छत्तीसगढ़ में हिंदी और अंग्रेजी आधुनिक भाषाओं के रूप में तेजी से आगे बढ़ रही है। स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों और इंटरनेट की दुनिया में इन भाषाओं का उपयोग अधिक दिखाई देता है। आज के समय में अंग्रेजी को रोजगार और आधुनिक ज्ञान की भाषा माना जाता है। वहीं हिंदी पूरे भारत को जोड़ने वाली भाषा है, इसलिए लोग आधुनिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन भाषाओं को सीखना चाहते हैं। आइए जानते हैं स्थानीय भाषा और आधुनिक भाषा का महत्व। छत्तीसगढ़ी भाषा में लोकगीत, लोक कथाएं और पारंपरिक ज्ञान सुरक्षित है। यह भाषा हमारी संस्कृति को जीवित रखती है। गांवों और छोटे क्षेत्र में लोग छत्तीसगढ़ी आसानी से समझते हैं। इससे आपसी संबंध मजबूत होते हैं। मातृभाषा में व्यक्ति अपनी भावनाएं अधिक अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकता है। छत्तीसगढ़ी में बोलने पर आत्मीयता बढ़ती है। छत्तीसगढ़ी और बस्तर की हल्बी या गोंडी बोलियों में यहाँ की लोक संगीत जैसे पंडवानी, भरतरी, लोक कला और परंपराएं रची बसी हैं। जब युवा अपनी मातृभाषा में बोलते हैं तो वह सीधे अपने धरोहर से जुड़ते हैं। स्थानीय भाषा से पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। वहीं आधुनिक भाषा अच्छी नौकरी और उच्च शिक्षा के लिए हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक माना जाता है। मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट का अधिकांश काम आधुनिक भाषाओं में ही होता है, इसलिए आधुनिक भाषा सीखना जरूरी हो गया है। हिंदी और अंग्रेजी लोगों को देश और दुनिया से जोड़ती है। इससे व्यापार और संचार आसान होता है। आधुनिक भाषाओं का ज्ञान व्यक्ति को नई जगहों पर काम करने और लोगों से जुड़ने में मदद करती है। पहले छत्तीसगढ़ के अधिकांश लोग केवल स्थानीय भाषा का उपयोग करते थे, लेकिन अब शिक्षा और तकनीक के कारण आधुनिक भाषाओं का प्रभाव बढ़ गया है। शहरों में बच्चे हिंदी और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ रहे हैं। कई परिवारों में बच्चे छत्तीसगढ़ी कम बोलते हैं। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ी भाषा आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया और फिल्मों में छत्तीसगढ़ी का उपयोग बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ी गीत और वीडियो आज के समय में युवाओं में भी लोकप्रिय हो रहा है। स्थानीय भाषा और आधुनिक भाषा दोनों का अपना महत्व है। केवल आधुनिक भाषा अपनाने से हमारी संस्कृति कमजोर हो सकती है और केवल स्थानीय भाषा तक सीमित रहने से विकास के अवसर कम हो सकते हैं। इसलिए दोनों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। बच्चों को अपनी मातृभाषा के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी भी सिखाई जानी चाहिए। इससे वे अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे और आधुनिक दुनिया में भी आगे बढ़ सकेंगे। स्थानीय भाषा को बचाने का उपाय यह है कि परिवार के लोगों को बच्चों से छत्तीसगढ़ी में बातचीत करनी चाहिए। स्कूलों में छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य को बढ़ावा देना चाहिए। लोकगीत, लोकनाट्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से छत्तीसगढ़ी स्थानीय भाषा को लोकप्रिय बनाया जा सकता है। आज के समय में सोशल मीडिया के माध्यम से छत्तीसगढ़ी भाषा को

0: पहचान दी जा सकती है। छत्तीसगढ़ी फिल्मों, गीतों और अन्य पुस्तकों से अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में स्थानीय भाषा और आधुनिक भाषा दोनों का अपना अलग महत्व है। छत्तीसगढ़ी भाषा राज्य की संस्कृति, परंपरा और पहचान का प्रतीक है, जबकि हिंदी और अंग्रेजी जैसी आधुनिक भाषाएं शिक्षा, रोजगार और तकनीक विकास के लिए आवश्यक है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम आधुनिकता को अपनाते हुए अपनी स्थानीय भाषा को न भूलें। यदि स्थानीय भाषा समाप्त हो जाएगी तो हमारी पहचान और संस्कृति भी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए हमें छत्तीसगढ़ी भाषा का सम्मान करना चाहिए और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए। साथ ही आधुनिक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करके विकास की ओर भी बढ़ना चाहिए। स्थानीय भाषा हमारी जड़ है और आधुनिक भाषा हमारे भविष्य का रास्ता। दोनों का संतुलन ही समाज और राज्य के विकास के लिए सबसे बेहतर मार्ग है। धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता। विषय था स्थानीय भाषा बनाम छत्तीसगढ़ी भाषा। वार्ताकार थे पुष्पराज सिंह। तो चलिए दोस्तों, वापस से ले चलते हैं आपको कार्यक्रम आपकी फरमाइश की ओर और लेते हैं अगली फरमाइश। तो दोस्तों, अगली फरमाइश आई है ग्राम बुड़गन से। राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति, शशिकांता प्रजापति। कतियापारा बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश देवांगन, आशीष देवांगन, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा, आदित्य देवांगन। मोटक्का माफी मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस, मन पटेल। दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से गजानन येल, नवदीप येल, शेरी वडनेर अकोला से अरुणा दामोदर, विकास दामोदर। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले। इन्होंने फरमाइश की है फिल्म साजन से, जिसे स्वर दिया है अलका याग्निक ने। गीतकार है समीर और संगीतकार है नदीम श्रवण। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, हमारा अगला गाना है फिल्म वांटेड से, जिसे स्वर दिया है शान और श्रेया घोषाल ने। गीतकार है अरुण भैरव, संगीतकार है साजिद वाजिद। और दोस्तों, इन गानों की फरमाइश की है मेहरनगर उमेरखड़ महाराष्ट्र से अभिजीत सरिता प्रिंस एकांश, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत प्रणीता अर्जुन, आकार हाइट्स बहादुर नागपुर से वैशाली शैलेश सुमित कुमारी ध्वनि, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन प्रभा देवी सेन लक्की विक्की नानू, तेलीपारा बिलासपुर से रज्जन साहू ईशानी छन्नूलाल श्रीवास अनीता श्रीवास, कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली मीना आदित्य अदिति शिवानी मीनूराज, हनुमानगढ़ जंक्शन जगमाल सिंह डागला हैप्पी डागला जे एस नायक शोभा नायक जातु।

सुमित्रा किशनपुर से आलम दिलकाश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम, चांदनी नाज। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं ये गीत।

0: डाल दिया।
1: तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे सामान्य ज्ञान की बातें जो शायद ही आपने कभी सुनी या जानी होंगी। दोस्तों, सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश है जहां एक भी नदी नहीं है।
0: दोस्तों,

रीशु सिंह, गोलू, शान, ग्राम बुड़गन छत्तीसगढ़ से, राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रशेखर कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति, शशिकांता प्रजापति, गांधी चौक रोपड़ से, हरदेव मिक्का, बलविंदर मिक्का, जय जयतेग बीरक, मिक्का बीरक, सारिमपुर बक्सर से, फातमा खातून अंसारी और मोहम्मद समी, इंदिरा विहार दिल्ली से, डब्लू अंसारी और बेबी अंसारी, लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकर लाल, इन्होंने फरमाइश की है फिल्म हीरोपंती से, जिसे स्वर दिया है मोहित चौहान ने, गीतकार हैं कौसर मनीर, संगीतकार हैं साजिद वाजिद। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं ये गीत।

0: तो चलिए दोस्तों, आज की शाम में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी नए कंपेयर साथी के साथ। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने रिश्तों में समय दीजिए। मैं हूँ ऋषिका वर्मा
1: और मैं हूँ खिलेश पांडे। इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युवावाणी हिंदी भाषा में। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही समय में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद्य और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को

0: मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली स्थित एनटीए मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधनों को लगाया गया है। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। अमरीका के एक संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित $1,00,000 के H-1B वीजा शुल्क को रद्द करते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया है। इससे कई कुशल भारतीय पेशेवरों को फायदा होगा। पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदन शुल्क को लगभग 2,000 से बढ़ाकर $1,00,000 करने की घोषणा की थी। श्रीलंका के दामोला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 48 ओवर में 7 विकेट पर 268 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने ऋतुराज गायकवाड़ के 101 रन की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने वाले हैं। कुछ ही समय में आप छत्तीसगढ़ी और संस्कृत में समाचार सुनेंगे।

0: ये आकाशवाणी रायपुर ही छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि सरकार ह पाछू 12 बछर में देश के युवा माइलोगिन और किसान मनला सशक्त बनाए में कोनो कसर नहीं छोड़े हे। मुख्यमंत्री विष्णु देसाय की अगुवाई में होइस राज्य मंत्री परिषद की बैठक। चालू खरीफ सीजन ले कृषक उन्नति योजना के नवा स्वरूप लदीन मंजूरी। प्रदेश में आज ले सीएम हेल्पलाइन सेवा शुरू। 1076 नंबर में आम लोगन मन कर सकते शिकायत। और मौसम विभाग अवैया 2-3 दिन में प्रदेश के कुछ एक जगह में हवा गरेर के संग वर्षा होए के संभावना जता है। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि सरकार ह पाछू 12 बछर में देश के युवा माइलोगिन और किसान मन ला सशक्त बनाए में कोनो कसर नहीं छोड़े हे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी कहीन है कि 140 करोड़ लोगन मन के आशीर्वाद और राष्ट्र प्रथम की भावना ले प्रेरित होकर सरकार ह विश्वास विकास और जन कल्याण पर समर्पित है। प्रधानमंत्री कहीन है कि ये अथक प्रयास के बाद आज देश ह बुनियादी ढांचा ला लेके डिजिटल क्रांति तक वैश्विक मंच में एक नवा पहचान हासिल करे है। श्री मोदी ये बात ऊपर जोर दीन है कि विकसित भारत की अपन संकल्प ला साकार करे बर सरकार सेवा सुशासन और समृद्धि के ये पथ में सरलग आगू बढ़त रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 बछर पूरा हुए में आकाशवाणी केंद्र रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश डहरले 15 मिनट के एक विशेष कार्यक्रम तैयार करेगी है। ये कार्यक्रम के प्रसारण आज रतिया 8:15 में करे जाही। इला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र एके संग्रह रिले कर ही। मुख्यमंत्री विष्णु देसाय की अगुवाई में आज मंत्रालय में हुए राज्य मंत्री परिषद की बैठक में कतकोन फैसला लेगी। बैठक के बाद पत्रकार मन ले गोट बात करत उप मुख्यमंत्री अरुण साहू बताये कि मंत्री परिषद है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ला आईपीओ के माध्यम ले स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करे जाए की मंजूरी दे है। एखर ले आम नागरिक और निवेशक मनला कंपनी के विकास यात्रा में भागीदारी बनाए के मौका मिलही और कंपनी के वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता ला नवा मजबूती मिलही। एक ठीन आने फैसला में मंत्री परिषद हा चालू खरीफ सीजन ले कृषक उन्नति योजना के नवा स्वरूप ला मंजूरी दीन है। एखर तहत धान के जगह में आने खरीफ फसल लेवैया किसान और दलहन तिलहन मक्का कोदो कुटकी रागी और कपास के खेती करैया किसान मनला हरेक एकड़ पाछू 15,000 रूपया के मदद दे जाही। ये योजना के फायदा एकीकृत किसान पोर्टल एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार में दे जाही। उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राही मल्ला चालू वित्तीय बछर में चना देवाए के घलो फैसला ले गए है। एकर संगे संग मंत्री परिषद हा योग विषयला समाज कल्याण विभाग ले हटा के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाए के प्रस्ताव ला मंजूरी दे है। एकर संग प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के क्रियान्वयन पर पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम के तहत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट के सहमति केंद्र सरकार ला भेजे की अनुमति दे है। ये फैसला ले रायपुर दुर्ग भिलाई बिलासपुर कोरबा में मंजूर हुए 240 इलेक्ट्रिक बस के संचालन के रद्दा खुली। मंत्री परिषद हा नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण ला आपसी मंजूरी ले भूमि खरीदे ऊपर दे जावत मुद्रांक शुल्क छूट के बेरा ला 31 मार्च 2028 तक बढ़ाए के फैसला ले है। उन्हें छत्तीसगढ़ खनिज नियम में संशोधन ला मंजूरी दे गई है। प्रदेश में आज ले सीएम हेल्पलाइन 1076 सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाय मंत्रालय ले ये सेवा के शुभारंभ करी। ये मौका मौमन कहीने कि अब लोगन मनला अपन शिकायत सुझाव और समस्या ला टोल फ्री नंबर 1076 मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम ले सीधा दर्ज करा सकी। हर एक शिकायतकर्ता ला यूनिक आईडी दे जाही जेखर ले उनका ट्रैकिंग मॉनिटरिंग और बेरा में निराकरण हो सके। श्री शाह कहीने कि ये व्यवस्था में समाधान ले असंतुष्ट होए में शिकायत के फेर ले समीक्षा के प्रावधान करेगी है। संगे संग प्रदेश के विकास ले जुड़े विशेष सुझाव घलो नागरिक मन सीधा सरकार तक पहुंचा सकी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता अउ खबर के विश्वसनीयता ले है हमर वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमर समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमर फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमर यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बाढ़ बांचे समाचार कोती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हा सेना केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस कर्मी मल्ला वीरता पुरस्कार दिन। ये पुरस्कार काली राष्ट्रपति भवन में राखे गए रक्षा अलंकरण समारोह में देगी। छत्तीसगढ़ के 3 जिन लोगन ला राष्ट्रपति हा शौर्य चक्र ले सम्मानित करेगी। एमा असम राइफल के राइफलमैन भोजराम साहू के संगे संग छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बहादुरी और काबिलियत के परिचय देवैया पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर देशमुख शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कहने की यह पूरा प्रदेश भर गौरव के बात आये। आज पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि में ओमल्ला श्रद्धांजलि अर्पित करत है। ए मौका में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ओमल्ला श्रद्धांजलि अर्पित करें। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह कहीं है कि भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज ला उखर अधिकार और विरासत के रक्षा बर एक करीन और जल जंगल जमीन के संरक्षण जन आंदोलन के रूप दिन। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ला आज 10 बछर पूरा हो गए है। ये मौका में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कहीं है कि जम्मू शिशु मल्ला गर्भावस्था के दौरान हरेक चरण में सुरक्षित और स्वस्थ देखभाल के अधिकार हवाए। सोशल मीडिया पोस्ट में उमन कहीं है कि पाछू एक दशक में सरकार लाखों गर्भवती माई लोगिन मल्ला बेरा बेरा में स्वास्थ्य जांच विशेषज्ञ परामर्श और सुघर मातृ स्वास्थ्य सेवा देवाए के सुरक्षित मातृत्व ला एक जन आंदोलन बना दे है। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल काली देश भर में 100 औद्योगिक पार्क के विकास में तेजी लाने पर पोर्टल भव्य के शुभारंभ करी। नई दिल्ली में श्री गोयल कहने कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के विकास में मदद करही। उमन कहने कि औद्योगिक तंत्र ला विकसित करे के संगे संग पूरा भारत में बड़ पैमाना में निवेश के माध्यम ले बड़े स्तर में रोजगार सृजन ला बढ़ावा देबर भव्य योजना शुरू करे गये है।

0: भव्य योजना के अंतर्गत आने आने आकार के 100 औद्योगिक पार्क बनाए जाही। अंतर्राष्ट्रीय समपार फाटक जागरूकता दिवस के मौका में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल डहर ले 6 से 12 जून तक आने आने कार्यक्रम आयोजित करे जावत हे। इही कड़ी में आज रायपुर के मंडल रेल प्रबंधक दयानंद की अगुवाई में वॉकथन के आयोजन करेगी। ये वॉकथन मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय शुरू होके वापिस कार्यालय परिसर में सिराइस। एमा अपर मंडल रेल प्रबंधक के संगे संग मंडल के आने आने अधिकारी और स्काउट गाइड के लयिका मन शामिल होइन। ए दौरान स्काउट गाइड के लयिका मन खमतराई फाटक में नुक्कड़ नाटक के माध्यम ले लोगन मन ला जागरूक करिन। महासमुंद जिला के बसना पुलिस धान खरीदी में करीबन 4.5 करोड़ रूपया के गबन के मामला में लंबा बेरा ले फरार 2 आरोपी मला गिरफ्तार करे है। पुलिस के मुताबिक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पिरदा में बछर 2020-21 के दौरान 17,210 क्विंटल ले ज्यादा धान के हेराफेरी करे गे रही। तकनीकी साक्ष्य के आधार में ओबेरा के व्यवस्थापक कन्हाई सेठ और सेल्समैन राजकुमार पटेल गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में जेल भेज दे गए है। खबर के मुताबिक ये मामला में 2 आरोपी की गिरफ्तारी पहली ले करे गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अवैया 2-3 दिन में मानसून छत्तीसगढ़ में कुछ एक जगह में पहुंच सकत है। एक असर ले अवैया 5 दिन में प्रदेश के कुछ एक जगह में गरज चमक के संग हवा गरेर और वर्षा होने की संभावना है। रायपुर जिला में पाछू रतिया तेज वर्षा ले तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आए है। मौसम विभाग एला प्री मानसून के वर्षा बताए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कही ने कि सरकार पाछू 12 बच्छर में देश के युवा माइलोगिन और किसान मल्ला सशक्त बनाए में कोनो कसर नहीं छोड़े है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अगुवाई में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक चालू खरीफ सीजन ले कृषक उन्नति योजना के नवा स्वरूप लदीन मंजूरी। प्रदेश में आज ले सीएम हेल्पलाइन की सेवा शुरू। 1076 नंबर में आम लोगन मन कर सकत है शिकायत। और मौसम विभाग या 2-3 दिन में प्रदेश के कुछ एक जगह में हवा गरेर के संग वर्षा होए के संभावना जताई। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।
1: प्रवाचिका सुषमा कुमारी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दूरभाष द्वारा कुवैत आमीर इत्यनेन सह पश्चिमेशियायाः विकसितां सुरक्षा स्थितिं चर्चितवान्। भारतं संयुक्त राष्ट्र संघे पाकिस्तानं निन्दयन् तं द्वेष उद्योगेति अवोचत्। खाद्य सुरक्षया सह कृषकाणां सशक्तीकरण विषये केन्द्रितस्य 5-दिवसीयस्य ब्रिक्स कृषि मन्त्रिणां सम्मेलनं इन्दौर नगरे आरभ्यते। सामरिक मार्ग परियोजनायाः जोजिला गोहवर मार्गः अन्तिमां सफलतां प्राप्नोत्, येन कश्मीर उपत्यकया सह लद्दाखस्य च मध्ये सर्व ऋतु सम्पर्कः वास्तविकतया समीपे आगतः। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीरे प्रदर्शनकारिणां सुरक्षासेनाभिः सह सञ्जातेषु संघर्षेषु 30 अधिकाः जनाः मृताः, प्रायः 200 जनाश्च व्रणिताः अभवन्। अपि च कर्णाटकस्य केरलस्य माही क्षेत्रस्य च उपरि अत्यधिक वृष्टेः सम्भावनामभिलक्ष्य भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन रक्तवर्णीया सञ्चेतना निर्दिष्टा। वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्याप्राह्णे कुवैत देशस्य प्रमुखेण शेख मिशाल अल अहमद अल जाबीर अल सबाह इत्यनेन सार्धं दूरभाषेण संवादम् अकरोत्। उभौ नेतारौ पश्चिमेशियायां परिवर्तित सुरक्षा परिस्थितिम् आलक्ष्य परस्परं विचार विनिमयं कृतवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा क्षेत्रे विवर्धित तनावपूर्ण विषये गंभीरा चिन्ता प्रकटिता तथा च कुवैतस्य सार्वभौमिक प्रादेशिक अखण्डतां विरुध्य विहित आक्रमणान् प्रति भारतस्य प्रतिज्ञा पुनः प्रतिपादिता। असौ शान्तेः स्थैर्यस्य च पुनः स्थापनार्थं तनावं न्यूनीकर्तुं संवादं पारस्परिक सहभागितां च दृढयितुं पुनरापि आवाहनम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् विगत 12 वर्षेषु देशस्य यूनां महिलानां कृषकाणां च सशक्तीकरणे सर्वकारः किमपि न अत्यजतीति। सामाजिक प्रसार माध्यमे श्रीमोदी अवदत् यत् 40.5 शतकोटि नागरिकाणाम् आशीर्वचोभिः राष्ट्रप्रथमस्य भावनया सह सर्वकारः विश्वासाय विकासाय जनकल्याणाय च समर्पितः अस्ति। एतेषाम् अथक प्रयासानां परिणामतः अद्य देशः वैश्विकस्तरे मूलसौकर्यात्

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुखराम बघेल और साथियों के स्वर में ध्रुवी लोकगीत।

ইদকে গেনায় তবে তলে দা।

Ragabaila, any man I met.

सुखराम बघेल और साथियों के स्वर में आप सुन रहे थे ध्रुवी लोकगीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने वाले हैं। कुछ ही समय में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
5: क्यों?
4: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
6: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
7: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
8: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
7: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
8: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
7: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
8: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
6: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
9: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
8: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
9: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
8: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
9: आकाशवाणी से।
6: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
10: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रदेश में आज से सीएम हेल्पलाइन सेवा शुरू, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया शुभारंभ। राज्य मंत्री परिषद ने चालू खरीफ सीजन से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को दी स्वीकृति। और राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों के आशीर्वाद और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन अथक प्रयासों के फलस्वरूप आज देश ने बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल क्रांति तक वैश्विक मंच पर एक नई पहचान हासिल की है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत के अपने संकल्प को साकार करने के लिए सरकार सेवा, सुशासन और समृद्धि के इस पथ पर निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी केंद्र रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा 15 मिनट अवधि का एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम का प्रसारण आज रात 8:15 से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। प्रदेश में आज से सीएम हेल्पलाइन सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय से इस सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब नागरिक अपनी शिकायतें, सुझाव और समस्याएं टोल फ्री नंबर 1076, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सीधे दर्ज करा सकेंगे। प्रत्येक शिकायतकर्ता को यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी, जिससे उसके आवेदन की ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित हो सके। श्री साय ने कहा कि इस सेवा के माध्यम से लोग प्रदेश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव भी सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे।
11: आज छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता को अपनी समस्याओं के निदान के लिए एक अच्छा प्लेटफार्म देने का काम और त्वरित समस्याओं का निदान हो, इसलिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आज जारी किए हैं। सवेरे से अभी तक 10 बजे से लेकर अभी तक 3,500 से ज्यादा समस्याएं यहां पर आ चुकी हैं, जिसको रजिस्टर्ड कर चुके हैं। हम पूरे प्रदेश की जनता को इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं।
10: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में किसानों के साथ ही ऊर्जा, परिवहन, खनिज और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्री परिषद ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। साथ ही चालू खरीफ सीजन से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को भी स्वीकृति दी है। इसके अलावा प्रदेश में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन, योग विषय के प्रशासनिक पुनर्गठन और खनिज परिवहन व्यवस्था को तकनीक आधारित बनाने जैसे अहम निर्णय लिए गए। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि कृषक उन्नति योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर दिया जाएगा।
12: खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नवीन स्वरूप को मंजूरी दी है। राज्य सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने तथा धान पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के उद्देश्य से धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलें लेने वाले किसानों एवं दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी तथा कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये आदान सहायता प्रदान करने का निर्णय

0: प्रशस्त होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में प्रदान किए गए। छत्तीसगढ़ के 3 लोगों को राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। इनमें असम राइफल के राइफलमैन भोजराम साहू के साथ ही छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान बहादुरी और नेतृत्व क्षमता का परिचय देने वाले पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर देशमुख शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ये पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीन प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि ईंधन की निर्बाध आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि प्रत्येक शिशु को गर्भावस्था के हर चरण में सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानजनक देखभाल का अधिकार है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने लाखों गर्भवती महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य जांच, विशेषज्ञ परामर्श और बेहतर मातृ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके सुरक्षित मातृत्व को एक जन आंदोलन बना दिया है। आज पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जल, वन और भूमि की रक्षा के लिए विदेशी शासन के विरुद्ध अदम्य साहस से संघर्ष किया। श्री मोदी ने कहा कि उनका संपूर्ण जीवन जनजातीय समुदाय के आत्मसम्मान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित था। महासमुंद जिले की बसना पुलिस ने धान खरीदी में करीब 4.5 करोड़ रुपए के गबन के मामले में लंबे समय से फरार 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पिरदा में वर्ष 2020-21 के दौरान 17,210 क्विंटल से अधिक धान की हेराफेरी की गई थी। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तत्कालीन व्यवस्थापक कन्हाई सेठ और सेल्समैन राजकुमार पटेल को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार मानसून 2 से 3 दिन में छत्तीसगढ़ में दस्तक दे देगा। मौसम विज्ञानी डॉ गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि मानसून अगले 2-3 दिन में बस्तर पहुंच जाएगा।
1: प्रदेश में मुख्य रूप से उत्तर छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर हल्की से लेके मध्यम रूप से मेघ गर्जन एक्टिविटी होने की संभावना है। ये मेघ गर्जन का गतिविधि जो है आगामी 5 दिन तक भी रहने की संभावना है और मेघ गर्जन का गतिविधि 11 जून से बढ़ने की चांसेस है। ये मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और हल्की से मध्यम वर्षा भी होने के चांसेस है 11 तारीख से। एंड मानसून का आगमन जो है बस्तर संभाग में आगामी 2 से 3 दिन में होने की पॉसिबिलिटी है।
0: और अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सुकमा में विकास कार्यों और विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय संपार फाटक जागरूकता दिवस के अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल द्वारा 6 से 12 जून तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज रायपुर के मंडल रेल प्रबंधक दयानंद के नेतृत्व में वॉकथन का आयोजन किया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक विजय कुमार ने कल बिलासपुर, रायपुर और नागपुर मंडल के 7 कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर दृष्टिबाधित टिकट परीक्षक रानी सोनवानी को यात्रियों की सहायता और मार्गदर्शन में उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए सम्मानित किया गया। बलरामपुर जिले में कुंदी कला गांव के बांधपारा जंगल में आज हाथी के हमले में एक दंपति की मौत हो गई। यह घटना राजपुर वन परिक्षेत्र की बताई जा रही है। वन विभाग और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। और गरियाबंद जिले के कुरुसकेरा गांव स्थित पैरी नदी में रेत के अवैध उत्खनन के मामले में

0: विभाग की टीम ने 3 चैन माउंटेन मशीन और एक हाइवा को जब्त किया है। साथ ही खदान संचालक और मशीन मालिकों को नोटिस जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रदेश में आज से सीएम हेल्पलाइन सेवा शुरू, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया शुभारंभ। राज्य मंत्रिपरिषद ने चालू खरीफ सीजन से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को दी स्वीकृति। और राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: राम राम ना लूला दादा, राम राम
1: हाँ राम राम गडरू राम राम।
0: अमर लिसने।
1: हाँ
0: आले आम्ही दोनों तो बेटघाट होलू,
1: हाँ
0: आले दादा दीदी मन संगल बेटघाट करू ने।
1: हाँ तो बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुन तो सब पाए दादा दीदी सियान सजन और संगवारी मन के मैं लूला
0: और मैं गडरू
1: आम्ही दोनों करूँ से राम
0: राम राम।
1: राम।
0: ये लूला दादा दादा दीदी मन संग बोलोली सब संग बोली ने,
1: हाँ
0: मात्र दग नानी बड़े पीला मन वाल रेडियो कटा कटा बसून सुनते रुआत।
1: हाँ
0: तो आमी दोनों चो बाटले बोल मन के खुबे खुबे मया और चुमा।
1: हाँ ये तो कर लू ने
0: हाँ
1: मंत्र दक पीला मन का है कि आमी दखू से आज कल ने
0: हाँ हाँ
1: हम पीला जी लग तो हम पढ़ान दे उसने
0: हाँ
1: और पढ़ा लिखा करुन भाती उनके कोनी कोनी पीला मन का है कि ये हॉस्टल मन ने बोल रहे सब
0: हाँ हाँ
1: और शहर मन ने बोल पढ़ सब
0: शहर
1: ने।
0: मन ने बोले ना देश विदेश ने बाहरी बोल जा सब
1: हाँ
0: कसंग।
1: तो असन पीला मन का है कि आम जो भाषा बोली के भूल कुंज हसत ने
0: हाँ हाँ
1: इला जाले हो ना बोलीबाद के हिंदी गोट
0: हाँ
1: ना फिर उन्हें अंग्रेजी
0: अंग्रेजी
1: असन
0: गोट
1: हो ये मन के खिंडिक झाड़ते रुआत ने
0: हाँ झारते रुआत
1: हो
0: है।
1: ये खिंडिक बोलो ने आम के काया कि असन गोट मन तो आम के सीख तो रिचिया है उन बल गोटक भाषा है।
0: भाषा है हाँ
1: हो मान तक आम चो संगे संगे काया कि आम चो ये बस्तर चो आम चो गांव पारा चो जोन भाषा बोली आए ये के बोली हुन मन के खिंडिक सीखा तो रहे।
0: हाँ आमचे जन क्षेत्रीय बोली हो ऐसे ने गोंडी धुरवी हलवी कसन भोतरी ये बोली मन के काया कि ये बोली मन के बोला आम के बुलक तरनो है।
1: हाँ उन कारण ने कहा है कि आम के बल भूल लगते नो है और आम चुपीला झीला के बल आम के कहा है कि सिखाते रहते
0: सिखाते
1: रहे।
0: रहते रहे
1: हाँ
0: काल जो दिन असन नहीं हो कि बाबा तुम अकनी बोल लो नहीं असन नहीं हो ने कसन
1: हाँ
0: आमी सिखा ले काया है पीला बोल सिखुआत।
1: हाँ आराम चो बस्तर ने कई किस्म चो ये भाषा बोली मना से
0: हाँ
1: बोलने गोंडी होली छत्तीसगढ़ी होली उसने धुरवी होली
0: हाँ
1: और उसने ची कई
0: भत्री
1: भत्री बोल होली
0: हाँ
1: और बोल भाषा मन के आसे जसन की आगे बलतरोत की लमान भाषा मिर्गान भाषा ये सपाय भाषा मन है ने।
0: हाँ हाँ
1: और देख ये सपाय भाषा मन का है कि ये जो ना राम के सुन तो काज बोल अच्छा लागे ने और अमी अमी अम बस्तर चो रतो लोग बोल का है कि अमी हाँ दूसर जो भाषा बोली मन बोल सुन लन बोल खिंडी के हरिक लागे ने
0: हरी लागे
1: और
0: ना
1: उन मन जो भाषा बोल नाम चुल खिंडी के बोलन भाषा बोली तो आउ रहा है मानते राम के सुन तो काज कितलो हरिक लागे ने।
0: हो उसने कहा है कि अमन मन जो भाषा बोली मन के बोल दूसर लोग के सुन तो का जो मन के बोल अच्छा लागे
1: हाँ
0: से
1: उन मन बोल अच्छा
0: कसन।
1: लागे से। हाँ और दक भाषा बोली सुन लन का है कि आमी कोनी ये और भी था सुने से बोलन हुन बोल खिंडी बक पाड़न बर सुने से ने
0: हाँ
1: ये मन जो भाषा बोली दक काय भाषा आए ना बोलते पूछे से ने।
0: हाँ
1: उसने कहा है कि आम चो जोन बोले आम चो संस्कृति आए जोन बोले आप लोग जाति ने जोन बोल भाषा से बोली आसे
0: हाँ
1: उनके पीला मन के सिका तो रुचि आए
0: सिक्का तरह
1: और संगे संगे दक और चो बोला आम चो बोली मना से और जाति चो
0: आए
1: तो
0: क्या
1: हुन गोट के बोला आम के हुन भाषा बोली बोला आम के खुद बोले सीख तो रहे।
0: सीख तो रहा है। और ये बोला लूला दादा कसन बोले नामी के मैं बाहरी बोल जाऊं उसने
1: हाँ
0: अलहुन जगह ने हम चो बोली बोल तो बितर लेन हुन गोट सुन दिलन का है हुन बोल बोले नहीं ना ये बोल हम चो ही बाट चो है ने
1: हाँ आराम जी लोग आए
0: हम
1: बोलता
0: चो ही
1: हूँ।
0: लोग आए बोले
1: हाँ दक
0: हाँ
1: असनी का है कि आमी बिल्कुल जंगल एरिया

0: बोलन रान बाट गेलू बोलन काय कि ये हुन बाट जो लोग मन ले हुन मन जो बोली ने अगर गोटे आंदे वा तो हुन मन तक नी मीर तो बीती के अनुमति खोआक मुरिया दे और खूबे मान शान दे दे और घरे डेरा बोल दे दे
1: डेरा बोल दे दे काय
0: हां बोलन ने हम चो काय कि इतलो भाषा बोली के हम जानन भति हुन मन लगे दूसर जाति जो भाषा बोली ने हम गोटे आंदिलू बोलन ने हुन आपलो असन लागे ने हम चो जाति चो लोग असन लागे से और कितलो बोलन ने ये गोटक मया चो
1: मया गोटक अलग
0: अलग ही रहे से
1: कसन तो लीला दादा ये गोट बात तो होली मंत्राल हम चलग नगद गोट मन बोला से मन को बलम रहा दे
0: आले सुन
2: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस ऊपर एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे। एचएस कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा कर लो बिना ऑटो पार्ट्स ऊपर एवर एक समान 18% कर होली से ये काम ले कल पुर्जा बनातो कंपनी अरु घेनतो लोग अरु सप्लायर्स चो चिपा गुचे दे एचई संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम बले सरल हो दे। बिजली ले चलतो बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर लागे दे ए मने कहीं बदलाव नहीं होली से। बिजली ले चलतो सपाई गाड़ी 2 चक्का बीती गाड़ी और 3 चक्का बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर चो लाभ मिलते रहे दे। असन ले ये मन सपाई कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनू रह दे।
6: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तक टैक्स तुन और वन सरल बना की तोड़ बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडोई लेकिन 18% टैक्स की सीट तोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता एचएस कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वलेवा गाड़ी ना सामान तपोरो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सीट तोड़ इत बुताते यू सामान पाड़नोर और सामान तच इयनोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयना बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी न पर्रो मुन्नीटा लेकिन 1% टैक्स मंता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मुंड चक्का ना गाड़ी 1% जीएसटी मौला देने दोर किता अदेन के और सोबेर कम टैक्स ता गाड़ी बने मास मंता।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: कितलो ये नगद गोट मन के तो अमरा दिलू ने मात्र दक आजी का है कि दिन हिसाब ने मंगरवार है ने और ये दिन का है कि अमी भाई बहन मंचो मन कर लो गीत मन के सुनाऊ आम और उन मंचो चिट्ठी पत्री बोले पढ़ू
1: उन मंचो नावल धरू
0: धरू आम होनी कारण ने कहा है कि आम चल गए ये गीत मन आसे और आम चलग पहल गीत आसे एक सुनाऊ दे पास फिर मन कर लो भाई बहन मंचो नाव के पास सांगवा ने तो ये गीत के गावला से बसंती अरुण मंचो संगवारी मन आले तेप सुनाऊ।

0: या तुलसी सेठिया कोपाराम मंडावी लक्ष्मू कश्यप सुद्रु सेठिया बुंजाराम मोरे अरे मंचो जमाई संगवारी मोरे
1: मचलक बले औरा सेता
0: हाँ
1: ये मनात मधो ताले
0: हाँ
1: ये समन यादव सोनारी यादव पद्मा यादव सुक्री यादव अरुण मंचो खूब बेजन संगवारी मन
0: हाँ
1: तो इतलो लोग मन का है कि ये गीत के मन करूं रला ने
0: हाँ
1: मंतर राम चलगे और बोल गीता सेता
0: हाँ
1: और ये गीत के गावलो भाई यात मेघनाथ पटनायक अरुण मंचो संगवारी मन आले ते बे गीत के बोले सुनुता
0: हाँ।

0: हाँ तो गडरू
1: उल्लूरा दादा,
0: दक ये कितलो नगद गीत रे और
1: हाँ
0: के गाउंडरला मेघनाथ पटनायक अरुण मंच संगवारी
1: संगवारी मन,
0: मन मांतर दक मन कर लो चिट्ठी मनाम चल गास ने।
1: हाँ
0: हाँ ये मुझे लगा से लाला गुड़ाले गोकुल सुबती राजमणि फूल सिंह अरुण मंच घर से सब पाए लोग मन।
1: हाँ मचलक बला थे रोडरे पाल छोटे गुडरा विकास खंड दरबा जिला बस्तर ले बलदेव मंडावी विनीत मंडावी दिलीप मंडावी वेदांत मंडावी परीता मंडावी छवि मंडावी और मंच जमाए छो परिवार चलो।
0: कुमार साडाले इतवारी पेदा डेंगा अनिल मंगलदई अरुण मंचो घर च सपाय लोग मन।
1: आई मनात बिरिंग पाल बस्तर ले घासीराम कश्यप लक्ष्मी कश्यप प्रियंका कश्यप कामेश कश्यप अंबिका कश्यप।
0: हाँ मुझे लगा आस्था ये मामड़ पाल ले आए ये सिरदर पुजारी रामलाल विश्वनाथ मंगलदई राम सिंह अरुण मंचो खूब जन संगवरी मन।
1: तो रूला दादा ये तो होली ना,
0: हाँ मंत्र तो काम का एक गीत मन के सुनाते चिरू हमने
1: हाँ
0: और भाई बहन मन बोले आम चो लगे चिट्ठी पटक बुलाए सको तो
1: हाँ
0: और ये चुका जे चिट्ठी लिखुन पटा तो पता को मैं सांगू दे से
1: हाँ हाँ
0: तू ही बोले खिंडी के ध्यान दे उन बस सुनने।
1: हाँ हाँ
0: और ये चो पता है लोक लहरी कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी जगदलपुर और पिन कोड है 4940001। ये पता नहीं हूं मन मन कर लो गीत के चिट्ठी लिखुन वादी पटक ले सको
1: हाँ
0: तो ये दाई आमचे जात बेरा बोले होली ने।
1: हाँ हाल तो मोटर सकल मैं भी दादा रे ना
0: हाँ
1: जा तो पूरे बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुन तो सब पाए गांव कारी दादा दीदी सियान सज्जन संग जोरिया संगवारी मन के मैं गडरू
0: और मैं लूला
1: हम दोनों करूं से
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम बस्तर के स्वर, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: পড়ুয়ায় কসন যত্ন পড়ে পারি মনকে
1: হ তো এ তো আমি দেখুছি কি আমচো কিষান ভাই মানকায় কি আমচো খেতি বাড়ি কি আগে করতে ইয়ে সত আর বলল নে আমি বল করুন সে নে মন্ত্র দেখ আমি কায় কি ইয়ে আমকে লেখ করুন ভাতি আমচো জন ধান খামানি আয় একে করতে রায় কসন বলল নে আমচো গাঁও পাড়া চো জন হরণ বিতি ফসল বলল নে ইয়ে ধান বলতো গোটক মাইমুর ফসল হয়েছে আমি কায় কি আমচো বেড়া খাড়া আয় হুনকে খেতি বাড়ি তো করতে রে আয় মন্ত্র আমকে আসন গোটকে বল লেখ করতে রায় কি আমচো বেড়া বল নি নাসো আর আমচো জন ফসল উপজায় হুন কিন্তু বরাবর হতে রো
0: বরাবর হো আর জন বল হো
1: হ্যাঁ জন বল হো
0: আমকে নপা মতলব নগদ মিরো
1: হ্যাঁ নগদ মিরো আমি কা কি বললো নে জিতলো বিনা নাপচো বললো নে বিনা জানকারি চো আগর খত বাত কে দেউ দেওয়া তো এ তো সময়ান কা কি জমিন বল ন সুকলাই সকে
0: সকে
1: হ্যাঁ হুন হিসাব নে আমকে কা কি হোক সকে তো মাটি চো বল যাচ করা তো রায় আর কোন চিজ চো কমি আসে হুন কে কিন্তু পুছ পচারা করতো রায় আর খোঁজা করি ভাই মঞ্চো সাংলো হিসাব নিয়ে আমকে খিন্ডি খত বাত কে দেত রায় আর হোক সকে যা আমকে যুগে করুন ভাতি এ পানা ডারা বিতি খত আর উনি আজকাল বলসত কি এ প্রাকৃতিক খেতি বলসত তো এ উয়াট মন কে আমকে কায় কি এ উয়াট নে বনালো খত মন কে আমকে কাম নে আন তো রায়
0: সত্য বলিছিল দাদা দা কসন বললো নাম দেখতে হুঁ সনে আগে কায় উতরো খত বাত গোবর খত রায় আর জন পানা পতিচ খত রলি কসন এবে কায় আনি বানিচ খত বা দবাই দারু হইছে কসন তো আমি যখন ফসল আয় উতাবল রোগ রাই খুবই জমাটে
1: হ্যাঁ হ্যাঁ তো হুনি হিসাব নে কায় কি আমচে জন পুরখতি বেরাচে জন খত বাত আসে এবি বললু কেচুয়া খাত আর উসনি গোবর খাত আর গোবর খাত কম হয়েছে বললো উসনি পানা ডারাক বলে আমকে বানাতো রায় আর আমকে ইয়ে খত মনকে বলে আমকে কাম নে আনতো রায় আর আমি আবগে উন রাসায়নিক খাত উন বরাবিতি খত মনকে দেউন দিলু বললো কায় কি এক সময় আমচো ভুঁই বলনো শুকলাই সকে আর ফসল তো ডবল টিবল বললো দুই তিন গুণা আমি
0: মুরনে তো ধরওয়া
1: হ্যাঁ ধরওয়া আর উনকে পর বিকুন দেওয়া আর জমিন ভুঁই বাড়ি আমচে নসলি বললো পর কিতলো বড়ে নুকসান হচ্ছে
0: এত বিতি সময়ানে খুবই আমচো জন পিড়িক বলা আর আমকে বল তকলিফ হয়
1: হ্যাঁ হ্যাঁ আর দেখ আমচো জন খোঁজাখারি ভাই মনে বল সাংসদ কি আমচো জন প্রকৃতি আয় আমচো জন লেহরা পানি আয় এ কি আমি বনাউন ভাতি আমকে বচাউন ভাতি খেতি বাড়ি কে করতো
0: করতো
1: কসন বললো না আজকাল আমি দেখু সে কি বেড়া নে কাঁকড়া বল দেখা নি দেও উস নিচে আমচো মছরি বল কিন্তু কম হলা
0: কাঁকড়া নালে মছরি বল রতে হলা
1: আর দেখ লাভ দেতো বিতি কিড়ি মন যে কে খোঁজাখারি ভাই মন বলসত কি কেচুয়া আর নানি নানি কিড়ি মন রে এ সপাই বিতি মন কায় কি জন ভুঁই আয় নাই আমচো জন বেড়া আয় উতা কানা বনায়স তার জড় মন যাত অসন হুন মন খিন্ডিক আচ্ছালে হুন ওকারস তার ভুরভুরা বনায়স
0: ভুরভুরা বনা
1: হ্যাঁ আমি যুগে যুগে খত লাগাল কায় কি হুন আর জন কিড়া মর তো দোয় মন কাম নে আনলো না হুন বিতি মন নসুন যায়স আর আমচো বেড়া কায় কি বিলকুল খিন্ডিক বঞ্জর বলুয়াত কড়া বলুয়াত অসন বল হয়েছে আর আমচো
0: নাঙ্গর জোপলন বলকায় ঢেলা নিকলেছে
1: ঢেলা হয় সারি জন কিড়ি
0: ঢেলা বলকায় তাকত বিতি ঢেলা রয়
1: আর আসন কিড়ি মন মরলা বললো নে আমচো খোঁজাকারী ভাই মন সাংসদ কি আমচো জন ফসল উপজা বিতি আয় হুন কম হতর রয়েছে হুনি কারণে আমকে জন বলে প্রকৃতি আয় বললো নে আমচো ভুঁই বাড়ি আয় লেহরা পানি আয় একে আমকে বাঁচ তো অসন খেতি বাড়ি করতো রায় আর আচ্ছা লে আচ্ছা আমচো উৎপাদন ধরতো
0: ধরতো রায় আমকে দুই পয়সা এবে বল মিরো জিও তো কাজে আর এত সময় না বল মিরো এত
1: সময় বল মিরো
0: কসন
1: হ্যাঁ পিলাই জিলা মন আমকে রিসোন দে দে আগে যে সিয়ান মন না এত লখত বাদ দিলা এবে দেখ আমকে উতা ভেন্ডা নি পাকেস বললন কিতলো বড়ে গোট আয় নে
0: হ্যাঁ
1: উনি কারণে কায় কি সপাই বিতি রো আমচো জিও জিও না বল রো আর আম দেখু সে কি জুকে খত বাদ দিলো নে এবে বেমার সে মার বলে দে হাত পায়ন বলে হয়েছে নে তো হুনি কারণে আমকে আচ্ছা লে আচ্ছা খেতি বাড়ি কে খরতো রায় আর আমচো পর্যাবরণ আমচো প্রকৃতি কে বলে বচা
0: বচাও সঙ্গত রায়
1: হ্যাঁ
0: তো লুলা দাদা
1: হ্যাঁ
0: এ গোড় বাত মন তো হলি
1: হ্যাঁ
0: আলদা কাম চলে নগদ গোড় মন বলা আছে
1: হ্যাঁ আলে এ মন বলে শুনু
0: শুনু
2: আরে রাকেশ ভাইয়া ইস বা ফসল কা ক্যা হাল হে
3: আরে বহন ফসল কা হাল তো ঠিক হে लेकिन मेरी किसान सम्मान निधि अभी तक नहीं आई।
2: तुमने अभी तक EKYC नहीं करवाया?
3: EKYC? वो कैसे होगा?
2: चुटकियों में होगा, वो भी फेस ऑथेंटिकेशन की मदद से।
4: और इसके अलावा ये योजना की वेबसाइट पर भी बड़ी आसानी से हो जाता है। और इसके बाद अपने खाते को आधार से लिंक करना भी जरूरी है। फिर बिना किसी समस्या के पैसे सीधा तुम्हारे खाते में आने लगेंगे।
5: डिजिटल टेक्नोलॉजी से कैसे हम किसान को एम्पावर कर सकते हैं, इसके लिए भारत में प्रयास निरंतर बढ़ रहे हैं।
6: अब EKYC की सुविधा आपके नजदीकी जन सेवा केंद्रों पर भी उपलब्ध है। आज ही अपनी EKYC पूर्ण करें। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000। आधुनिक कृषि समृद्ध किसान।
7: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
8: बांस एक ऐसा पौधा है जो हर परिवेश में तेजी से विकसित हो सकता है। आसानी से उपलब्धता और इसकी मजबूती की वजह से बरसों से बांस का उपयोग होता रहा है और अब इसकी मांग और भी अधिक बढ़ गई है। दुनिया में तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने में भी बांस काफी सहायक है, क्योंकि इसमें कार्बन भंडारण और ऊर्जा बनाने की क्षमता है। तेजी से कट रहे जंगलों को बचाने में भी बांस की अहम भूमिका है, क्योंकि ये निर्माण के लिए बेहतरीन विकल्प है। यानी बांस एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली उत्पाद है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने की दिशा में बांस अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांस उत्पादक देश है, जहां बांस की 125 देसी और 11 विदेशी प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में कुल बांस उत्पादन क्षेत्र 16 मिलियन हेक्टेयर है और वार्षिक बांस उत्पादन क्षमता 3.23 मिलियन टन है। यूं तो बांस भारत में लगभग हर इलाके में पाया जाता है, लेकिन इसके कुल उत्पादन क्षेत्र का 40% हिस्सा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम में है। देश में 20 लाख से अधिक कारीगर बांस के विभिन्न उत्पाद बनाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। बांस उद्योग में अभूतपूर्व विकास की क्षमता है, जहां 2018-19 में भारत अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बांस का आयात करता था, वहीं 2019-20 में हम विदेशों में भी बांस का निर्यात करने लगे। 2021-22 में भारत ने 630 करोड़ रुपए का निर्यात किया। बांस उद्योग में असीम संभावनाओं को समझते हुए भारत सरकार बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। बांस को एक स्वच्छ, स्थायी और टिकाऊ विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2017-18 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में संशोधन करके गैर वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया, जिससे किसान अब इसे आसानी से अपनी खेतीहर जमीन पर उगा सकते हैं। साथ ही जंगलों के बाहर उगाए जाने वाले बांस की कटाई और परिवहन से भी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। वहीं बांस उत्पादन क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन को 2018-19 में पुनर्गठित करके नया रूप दिया गया, जो कि गैर वन क्षेत्रों में बांस उत्पादन को बढ़ावा देने, उद्योगों को बेहतर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, फसल कटाई उपरांत कुशल प्रबंधन के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों जैसे बुनियादी ढांचे और नई तकनीकों के विकास और बाजार उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। जहां एक ओर पारंपरिक उत्पादों में बांस का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं स्थायी विकास के तहत बांस का इस्तेमाल नए जमाने की मॉडर्न इमारतों, दफ्तरों, प्रीमियम फर्नीचर, बेम्बू फैब्रिक, कागज के उत्पादन इत्यादि में किया जा रहा है। साथ ही बांस का उपयोग बायोफ्यूल बनाने में भी हो रहा है, जो कि पेट्रोलियम का बेहतरीन विकल्प है। राष्ट्रीय बांस मिशन का लाभ लेने वाले एक उद्यमी हैं उत्तराखंड के रहने वाले जय पाई नूली, जिन्होंने योजना के तहत सब्सिडी लेकर जापानी तकनीक से चॉपस्टिक बनाने का एक प्रोसेसिंग यूनिट खोला है। इस यूनिट से ये अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं।
9: राष्ट्रीय बैम्बू मिशन से जो हमें अनुदान मिला है, उससे हमने मशीनें खरीदी, सेटअप लगाया है और हम लोग उसमें आत्मनिर्भर बने हैं।
8: इसी तरह बंगलुरु के रहने वाले परमेश्वरन कृष्णा अय्यर ने राष्ट्रीय बांस मिशन के सहयोग से आधुनिक प्रोसेसिंग तकनीकों को अपनाकर अपने बांस उद्यम को विकसित किया है।
10: विद द हेल्प ऑफ नेशनल बैम्बू मिशन वी मैकेनाइजिंग ईच एंड एवरी प्रोसेस फ्रॉम बैम्बू अनलोडिंग टू ट्रीटमेंट टू फर्नीचर मेकिंग प्रोसेस।
8: किसानों की आय में वृद्धि हो, इसी मिशन के सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बांस उद्योग, जिसके माध्यम से देश के कोने कोने से लोग आमदनी के इस नए विकल्प से जुड़ रहे हैं। वहीं बांस स्थायी विकास में भी अत्यधिक अहम है, जिसे बढ़ावा देकर भारत विश्व की ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा है।
11: जीएसटी काउंसिल बुधवार नेट इन घोषणा की तकी सरकार सीमेंट तपोर्रो जीएसटी मोला 28% तुन कम किस इंजे 18% की सिक्ता टैक्स तगा कमी कित्ता आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम आयना दुमिद मिंदे इलेकेन संगमरमर इंदनाद और ट्रेवकिन ट्रेवटीन ब्लॉक इतके ओनले कटात बंडाकल तगवेन टैक्स दर 12% से गटे मास 5% की सित्तोड ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% जीएसटी लगे माता इदेन संगेन उसका चुन्नामता ईटा और बंडाकल तीन जोड़ाई की अनबूता तेवेन मोला 12% से कम मास 5% की सित्तोड।
12: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
13: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
14: सुना सुना सुना किसान भाई बहन मन सुना सुतुरच गोड
15: फसल बीमा कर तो काजे हमेशा सुरता रखा गोड
14: अकाल पूर लेरा धुका जसन अड़नाप चिपा आरु कीड़ा थापा रोग राई ले फसल बर्बाद होन गेले बीमा तुम चो संग दे दे
15: फसल बर्बाद हो नहाले कम हो उपजन मेरे दे बीमा ले तुमके धन
14: सरकार तुम चुका जे कर ली से कैक फसल बीमा योजना आन ली से
15: भारत सरकार चो फसल बीमा योजना हिसाब ने अधिसूचित खातो फसल जसन धान गहूं तिल आरु बरकार बीती पाक फर फसल आरु बेपार बीती फसल जसन डांडा नडेर मंचो बीमा होय से बीमा किस्ती पटा तो काजे सरकार बाटली पैसा कौड़ी चो सहायता मिरे से
14: किसान भाई बहन मन फसल बीमा योजना चो लाभ धरा आप लो ये तो समयाने हो तो नुकसान चो पूर्ति करा
15: फसल बीमा योजना काजे भेटघाट करा आप लो जिला चो कृषि अधिकारी कृषि सहकारी समिति नाहले लगे चो बैंक शाखा ले
14: अगर जानकारी काजे फोन करा किसान कॉल सेंटर के राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर आए 1800180155 नाहले लागान करा www.farmer.gov.in
15: फसल बीमा योजना चो संग जीवना न्याय दे हरीक उधिम चो रंग

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: हाँ तो गडरू,
3: हाँ लूला दादा,
2: दख इतलो नगद गोट मन के तो आमी सुनाव दिलू ने।
3: हाँ
2: मंतर दख आज का है कि ये किसान वाणी कार्यक्रम भीतरे आम चल गए बोलो ने भेट गाड़ बोलो ने भेट वार्ता से।
3: हाँ
2: और ये भेट वार्ता ने आम चल गए किसान भाई आत ये चमन राम कश्यप
3: युवा कृषक
2: बोलो ने जवान आम चो किसान भाई यार। और ये मन संगे भेट घाट कर सो सी यार कश्यप आले मन चो गोड बात के सुनू था अरे मन कसन खेती बाड़ी कर सो उनके पर जानवा
3: जानवा। हाँ।
2: आले तिप सुनू।

नुआ जुगचो नुआ गोट सुनतो सपाय किसान भाई बहन मन के मैं सोमारू करें से जुहार। तो किसान भाई बहन मन असन है कि खेती किसानी बोल लो ने आमी तो करूँ से ची मानतर खेती किसानी ने बोले कई कसन कमानी होए से वाट होए से उन हिसाब ने

किसान भाई बहन मन गीत गोविंद तो होली मात्र देखा आसन है कि गीत गोविंद तो समय समय नहीं सुनते रहते रहे और गीत गोविंद संगे संगे काम कमाने बोले कर लो नहीं आम चो देह पाए बोले अच्छा रह दे और ये तो समय चो जो पीला मन आसो तो मन बोले जान दे सीख दे कि खेती कमानी संगे संगे गीत गोविंद होलन बोले आम चो कमानी अच्छा हुकलाय सके तो देखा संगे नवा जुगचो नवा गोटकन तो सबाय किसान भाई बहन मन के मैं समारोह करें से जुहार।

0: हाँ दक ये गीत के तो आमी भाई बहन मन के सुना दिलु ने
1: हाँ कहाँ है
0: और
1: सुंदर गीत रली ने
0: हाँ
1: खेती बाड़ी चो गोट गोट आलो और खेती बाड़ी बीती गीत सुनतर
0: हाँ
1: कसन
0: हाँ
1: तो
0: तो
1: ये गीत के
0: ये
1: गाऊ रला सोमन राम और मंचो संगवारी में।
0: हाँ दक गीत गोविंद के हम सुनाते शुरू हम और आम के फिर गोटो गीत बोला सने और ये गीत के बोले सुनू ता फिर गावलो भाई मन जनाओ के पास सांगो।
1: हाँ।

0: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शिक्षकों के लिए। विषय है बाल अवस्था में शरीर, पोषण और स्वास्थ्य। वार्ताकार हैं स्नेहलता दीवान।
1: मानव जन्म सौभाग्य से मिलता है, इसका सम्मान और सुरक्षा स्वयं मानव की ही जिम्मेदारी है। यदि हम मानव देह को मंदिर मान लें और इसकी स्वच्छता और सुरक्षा की उचित देखभाल करें तो एक स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकते हैं। मानव जीवन में यूं तो आयु की सभी अवस्था महत्वपूर्ण होती है, लेकिन शैशवकाल और बाल्यकाल की देखभाल सबसे महत्वपूर्ण होती है। आज हम बाल अवस्था में पोषण एवं शरीर एवं स्वास्थ्य विकास की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शरीर की। शरीर विभिन्न अंगों का व्यवस्थित समूह है, जिसकी अपनी एक विशेष और निश्चित कार्यशैली है। शरीर मुख्य रूप से अस्थियों एवं मांसपेशियों से मिलकर बना है। मानव कंकाल मांस के छोटे छोटे टुकड़ों से ढका रहता है। शरीर के बाहर और अंदर के अंग मांस तंतुओं से बनते हैं। इन मांस तंतुओं का आवरण पूरे अस्थि पंजर को ढके रहता है, इसे ही मांसपेशी संस्थान कहते हैं। मांसपेशियां ही शरीर को आकृति एवं गति प्रदान करती हैं। बालकों के शरीर का लगभग 2/3 अंश मांसपेशियों से मिलकर बना है। अनुमान है कि इनके शरीर में लगभग 639 पेशियां पाई जाती हैं। ये पेशियां बालकों के शरीर में जैविक क्रियाएं संपन्न करती हैं, इसलिए इन्हें स्वस्थ बनाए रखना भी हमारे लिए आवश्यक है। इसके लिए पर्याप्त व्यायाम, उचित विश्राम और प्रोटीन युक्त भोजन बच्चों की दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। अब बात करते हैं अस्थि तंत्र की। शरीर को निश्चित आकार और सुदृढ़ बनाने वाले तंत्र को अस्थि तंत्र कहते हैं। बालकों के शरीर में लगभग 213 छोटी बड़ी अस्थियां होती हैं। अस्थि की रचना अस्थि कोशिकाओं और कैल्शियम से बनी होती हैं। छोटे बच्चों में ये कोशिकाएं कोमल होती हैं। उम्र के बढ़ने के साथ ये कठोर होती जाती हैं। अस्थियों के दोनों सिरों पर लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणों का निर्माण होता है, इसलिए आवश्यक है कि बालकों के शरीर में उपस्थित अस्थियों का पर्याप्त पोषण किया जाए। इसके लिए उचित मात्रा में कैल्शियम युक्त पदार्थ बालकों के भोजन का हिस्सा बनना चाहिए। बालकों के शरीर के और महत्वपूर्ण अंग हैं पाचन तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और ज्ञानेन्द्रियां। क्योंकि बाल अवस्था शारीरिक एवं मानसिक विकास की अवस्था है, हमारे लिए ये जरूरी है कि हम बालकों के विकास के लिए आवश्यक तत्व भरपूर मात्रा में उन्हें उपलब्ध कराएं। अब जरूरी हो जाता है कि हम बात करें पोषण की। पर ये पोषण है क्या? पोषण का साधारण अर्थ शरीर में पोषक तत्वों के क्रियाकलाप से है। इसे इस तरह परिभाषित किया गया है, पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है। इसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है तथा उसका उपयोग करता है जो कि शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है।

0: अर्थात पोषक तत्व बालकों के अंगों की वृद्धि एवं उनका पुनर्निर्माण करता है, उन्हें ऊर्जा देता है और रोग निरोधक शक्ति प्रदान करता है। पौष्टिक तत्वों को उनके कार्यों के आधार पर विभाजित इस तरह कर सकते हैं। पहले वर्ग में उन तत्वों को रख सकते हैं जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित रखते हैं, जैसे खनिज लवण, प्रोटीन और विटामिन। दूसरे वर्ग में शरीर निर्माण कारक पौष्टिक तत्वों का, जैसे जल, खनिज लवण और प्रोटीन। तीसरे वर्ग में शरीर को शक्ति प्रदान करने वाले पौष्टिक तत्व आते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। बालकों को बढ़ने और भरपूर ऊर्जा प्रदान करने के लिए उन्हें पोषक तत्वों से युक्त संतुलित भोजन देना चाहिए। पोषण विशेषज्ञों ने पौष्टिकता के आधार पर भोज्य पदार्थों को 7 समूह में बांटा है। इन 7 समूहों के भोज्य पदार्थों को उनके गुणों कार्यों के आधार पर 3 वर्ग में इस तरह रखा गया है। पहले वर्ग में शरीर निर्माणक आहार, जैसे मांस, मछली, अंडा एवं दालें आती हैं, जिनसे प्रोटीन प्राप्त होता है। दूसरे समूह में ऊर्जा एवं ऊष्मा उत्पादक आहार, जैसे चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, रागी आदि रखे गए हैं, जिनसे कार्बोज मिलता है। वसा प्राप्त करने के लिए घी, तेल, मक्खन रखे हैं। तीसरे वर्ग में शरीर रक्षक आहार आते हैं, जिनसे हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, पनीर, मेवे एवं ताजे फल आते हैं। इनसे प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण मिलते हैं। यहां यह बात विशेष रूप से ध्यान रखने की है कि एक बालक का भोजन एक वयस्क पुरुष की अपेक्षा ज्यादा होना चाहिए। इसका कारण यह है कि बच्चे आहार से केवल गर्मी या ऊर्जा ही प्राप्त नहीं करते, बल्कि इससे वे शरीर वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व भी प्राप्त करते हैं। विशेषज्ञों ने बच्चों के शारीरिक विकास के अनुसार कैलोरी की आवश्यकता इस प्रकार तय की है। 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 1600 कैलोरी प्रतिदिन, 7 से 9 वर्ष के लिए 1800 कैलोरी, 10 से 12 वर्ष के लिए 2100, 13 से 15 वर्ष की बालिकाओं के लिए 2300 एवं बालकों के लिए 2600 कैलोरी रखी गई है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट भी प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए 1500 से 1800 किलो कैलोरी प्रतिदिन तथा माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए 2500 किलो कैलोरी तथा उच्चतर स्तर के बच्चों के लड़कों के लिए 3000 किलो कैलोरी और लड़कियों के लिए 2200 किलो कैलोरी की जरूरत होती है। इसी तरह विशेषज्ञों के अनुसार बालकों एवं किशोरों के लिए 15 से 20% कैलोरी का कुल भाग वसा से प्राप्त होना चाहिए। बालकों के लिए प्रतिदिन प्राप्त होने वाली ऊर्जा का 30% वसा से प्राप्त होनी चाहिए और कुल वसा का 50% वनस्पति तेलों से प्राप्त होना चाहिए। बालकों के पोषण में इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब इसी तरह विटामिन की आवश्यकता भी स्वस्थ शरीर का आधार है। विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। विटा का अर्थ होता है जीवन और अमिन का अर्थ है आवश्यक। अर्थात विटामिन जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। विटामिन का एक प्रकार जो जल में घुलता है, जैसे विटामिन बी और सी, तथा दूसरा प्रकार जो वसा में घुलता है, जैसे विटामिन ए, डी, ई और के। ये दोनों ही प्रकार के विटामिन एक सशक्त यौगिक हैं और शरीर के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य हैं। अब जरूरी यह है कि हम समझ लें स्वास्थ्य है क्या। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य को इस प्रकार परिभाषित किया है, पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंदुरुस्ती ही स्वास्थ्य है। अर्थात केवल रोग का न होना ही स्वास्थ्य नहीं है। इसलिए ये हम सबकी सामूहिक और अनिवार्य जिम्मेदारी है कि हम बच्चों के विकास के लिए उनको बेहतर स्वास्थ्य दें, बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनको पोषण दें और पोषण के लिए उचित भोजन दें। शासन की मध्याह्न भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराने की योजना भी इसी उद्देश्य से संचालित है कि प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को स्वस्थ विकास के लिए जरूरी पोषण मिले और वे शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से पूर्ण तंदुरुस्त रहें आज भी और जीवन भर।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम शिक्षकों के लिए। विषय था बाल अवस्था में शरीर, पोषण और स्वास्थ्य। वार्ताकार थीं

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8:15 होने वाले हैं। कुछ ही समय में अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश रायपुर की।
1: श्रोताओं नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्रित इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 से शुरू हुई इस यात्रा में देश ने विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, डिजिटल परिवर्तन, सामाजिक कल्याण और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका के कई नए आयाम देखे हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में जानते हैं कि इन 12 वर्षों में देश ने किन प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को आधार बनाकर अनेक योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए। सरकार का विशेष ध्यान गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण पर रहा। वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में जनधन योजना एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई। इसके माध्यम से करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया। आधार और मोबाइल के साथ जनधन खातों के एकीकरण ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी प्रणाली को मजबूत बनाया, जिससे सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों के खातों तक पहुंचने लगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना को देश की सबसे बड़ी पहलों में गिना जाता है। वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2025 तक देश में 56 करोड़ 16 लाख से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके थे। इनमें लगभग 56% खाते महिलाओं के हैं और करीब 67% खाते ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं। इन खातों में जमा राशि बढ़कर 2,67,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। जनधन, आधार और मोबाइल यानी जैम ट्रिनिटी ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण व्यवस्था को मजबूत बनाया है। सरकार के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में विभिन्न डीबीटी योजनाओं के तहत लगभग 6,90,000 करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे गए। गरीब कल्याण सरकार की प्राथमिकताओं में प्रमुख रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और जनधन जैसी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लोग तक बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं। प्रधानमंत्री ने भी उल्लेख किया है कि पिछले वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। औद्योगिक क्षेत्र भिलाई निवासी सोमेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है।
2: मोदी सरकार ने बहुत काम किया है। गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना, भतारी वंदन योजना, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान के तहत इन्होंने जो शौचालय करोड़ों परिवारों को शौचालय का उपलब्ध कराया, सराहनीय कदम है। गरीब परिवारों को आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा योजना उपलब्ध कराई है, जिससे गरीब परिवारों को काफी लाभ मिला हुआ है।
1: सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए गए हैं। उज्ज्वला योजना ने गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाते हुए रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया। वहीं आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा मिली। स्वच्छ भारत अभियान ने देश में स्वच्छता को जन आंदोलन का रूप दिया और खुले में शौच से मुक्त भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गईं। दुर्ग जिले के धमदा गांव के प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के जरिए हर घर शौचालय का निर्माण किया गया। वहीं उज्ज्वला योजना भी महिलाओं के लिए लाभकारी सिद्ध हुई है।
3: हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के इन 12 वर्षों में जो दौर रहा है उनका बहुत ही उपलब्धि भरा रहा है। मोदी जी ने शौचालय से लेकर एक आम आदमी की पीड़ा को समझते हुए पूरे देश भर में शौचालय का निर्माण किया है। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ पर जिनके भी कच्चे मकान थे उनके लिए प्रधानमंत्री आवास के रूप में आवास उपलब्ध कराया है। हमारी बहने माताओं को जो लकड़ी के चूल्हों में खाना बनाना पड़ता था उनके लिए उन्होंने गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। इस प्रकार से विभिन्न योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री जी ने इन 12 वर्षों में इस देश की आम जनता को उपलब्ध कराया है।
1: श्रोताओं, कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान की गई। सिंचाई, कृषि अवसंरचना और तकनीक आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए। सहकारिता विशेषज्ञ प्रीतपाल बेलचंदन ने बताया कि सहकारिता पर आधारित केंद्र सरकार की नीतियों से किसानों को लाभ मिला है। विकसित भारत में सहकारिता की भूमिका बहुत बड़ी होगी।
4: मोदी जी ने सिर्फ पंचवर्षीय योजना नहीं बनाया, 2047 तक विकसित भारत की दृश्य क्या होनी चाहिए आने वाली पीढ़ियों के लिए, इसके लिए काम किए। और उस परिप्रेक्ष्य में सहकार से समृद्धि एक ऐसा योजना लॉन्च किया जो अटल बिहारी जी वाजपेयी का कल्पना था। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की जो उनकी मूल मंत्र थी, उसको अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता के लिए जो 2047 में विकसित भारत होगी उसमें सहकारिता की बहुत बड़ी भूमिका सुनिश्चित करने की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योजना है। और सहकारिता का एक जीता जागता उदाहरण है अभी छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले में, जो किसानों के लिए समितियों के माध्यम से ड्रोन से कीटनाशक सिंचाई यंत्र उपलब्ध कराया गया, वो अपने आप में एक शुरुआत है।
1: मोटे अनाज यानी श्री अन्न को प्रोत्साहन देने में भी भारत ने वैश्विक स्तर पर नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। दुर्ग जिले के अधिवक्ता संतोष मिश्रा ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बीते 12 वर्षों में बढ़ गई है।
5: पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास, आत्मविश्वास और वैश्विक प्रतिष्ठा की नई ऊंचाइयों को छुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। डिजिटल इंडिया और UPI ने देश को डिजिटल क्रांति का वैश्विक मॉडल बना दिया है। वंदे भारत ट्रेनें, आधुनिक हाईवे, एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर नए भारत की तेज रफ्तार का प्रतीक बन चुका है।
1: श्रोताओं, बुनियादी ढांचे के विकास को सरकार की प्राथमिकताओं में प्रमुख स्थान मिला। राष्ट्रीय राजमार्गों का तेजी से विस्तार हुआ, रेलवे के आधुनिकीकरण, वंदे भारत ट्रेनों के संचालन, रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। देश में हवाई अड्डों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के माध्यम से छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ा गया। वहीं भारतमाला परियोजना के तहत नए राजमार्गों का निर्माण और अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कार्यपालन अभियंता अनंत दीक्षित ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिले में 37 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है।
6: आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 साल के कार्यकाल में सड़कों का विस्तार हुआ है एवं GPM जिले के 3 वर्ष के कार्यकाल में 37 किलोमीटर सड़कें पूर्ण करा ली गई हैं एवं 32 किलोमीटर प्रगतिरत हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि समय सीमा में पूर्ण कराने का कार्य है, जिसमें गांवों को बारहमासी सड़क से जोड़ने का कार्य करते हैं एवं ब्रिज बनाते हैं। जो गांव बरसात में मुख्य धारा से कट जाते थे, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के दूरदर्शी सोच को दर्शाता है कि आखिरी छोर भी किसी प्रकार से हीन न रहे। ऐसे वनांचल जहां सड़कों का विस्तार न होने के कारण प्रसव हेतु एम्बुलेंस का आना जाना नहीं हो पाता था, PDS वितरण प्रणाली ठीक तरीके से काम नहीं कर पाती थी, स्कूल में बच्चों के आने जाने हेतु गंदी मिट्टी एवं कीचड़ भरी सड़कें उपलब्ध होती थी, बाजार जाना और वहां से वापस आना भी बहुत मुश्किल कार्य था। इन सभी सड़कों को बनाकर, इन सभी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से हर गांव की तस्वीर को बदलने का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2005 से करती आ रही है एवं निरंतर करती रहेगी।
1: बंदरगाहों, जलमार्गों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में भी निवेश बढ़ा, जिससे व्यापार और परिवहन को नई गति मिली। गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन जैसी पहलों ने समन्वित विकास की नई दिशा प्रदान की। श्रोताओं, डिजिटल इंडिया अभियान इन 12 वर्षों की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक माना जाता है। इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का विस्तार गांवों तक पहुंचा। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत को विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया। सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण होने से पारदर्शिता और सुगमता बढ़ी है। दुर्ग के पाटन निवासी उत्तम कुमार सिन्हा ने डिजिटल इंडिया अभियान की सराहना की।
7: हमारे देश में आज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है कि इस टेक्नोलॉजी को पूरे वर्ल्ड वाइड डिमांड पे है और कई देशों को हमने सप्लाई किया है। आज UPI पेमेंट एक चाय वाले से लेकर के बड़े बड़े मॉल में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एक डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में एक बहुत बड़े उपलब्धि के तौर पर मैं इसको लेता हूँ। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के तौर पर देखें तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में हमारे देश का लोगों की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ही आले दर्जे का है और आज वर्ल्ड वाइड हमारे देश के लोगों की इज्जत, इंडिया की इज्जत, भारत देश की इज्जत पूरे विश्व में बहुत ही अच्छे नाम से लिया जाता है।
1: श्रोताओं, महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी अनेक कदम उठाए गए। मातृत्व लाभ, महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए गए। दुर्ग जिले के मतवारी गांव की रहने वाली नमो ड्रोन दीदी जागृति साहू ने बताया कि इस योजना से महिलाएं सशक्त हुई हैं।
8: आज हमारे भारत देश की महिलाएं जो कि समूह से जुड़कर सशक्त होते जा रही हैं, जो नमो ड्रोन दीदी के द्वारा सशक्त हो रही हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, जिनके द्वारा आज भारत में हमारी महिलाएं सशक्त हो रही हैं। और अगर वो अपने इस महत्वाकांक्षी योजना को लॉन्च नहीं किए रहते तो हमारे पीएम के द्वारा हमारा सिलेक्शन नमो ड्रोन दीदी के रूप में हुआ है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
1: युवा शक्ति को सशक्त बनाने के लिए कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहलें शुरू की गई। भारत आज दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल है। नवाचार, उद्यमिता और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक नीतिगत सुधार किए गए हैं। भिलाई स्थित सर्वोदय फाउंडेशन के प्रशांत मिश्रा ने बताया कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं।
9: मोदी सरकार जी के द्वारा 12 वर्षों में जो कार्य किए गए हैं वो अकल्पनीय है। दूसरी सरकारों में जितनी भी समस्याएं थी सारी समस्याओं का निवारण एक तरीके से मोदी सरकार ने कर दिया। सबसे बड़ी प्राथमिकता इन्होंने रोजगार के लिए जिस तरीके से युवाओं को प्रेरित किया है कि आप किसी भी रूप से रोजगार प्रारंभ कर सकते हैं।
1: आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती देने का प्रयास किया गया। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजनाओं के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल निर्माण, रक्षा उत्पादन और अन्य क्षेत्रों में निवेश आकर्षित किया गया। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिला और भारत रक्षा उपकरणों के निर्यात में भी आगे बढ़ा है। श्रोताओं, विदेश नीति के मोर्चे पर भी भारत की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने वैश्विक दक्षिण की आवाज को प्रमुखता से उठाया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका और प्रभाव में वृद्धि हुई है। आपदा राहत, वैक्सीन मैत्री और विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर भारत की सक्रिय भागीदारी को व्यापक सराहना मिली। ऊर्जा, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी भारत ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि, सौर ऊर्जा को बढ़ावा और हरित विकास की दिशा में अनेक पहलें की गई। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहल भारत के नेतृत्व की पहचान बनी है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्षों में देश ने सामाजिक कल्याण, आधारभूत संरचना, डिजिटल परिवर्तन, आर्थिक सुधार, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। देश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इन 12 वर्षों में देश ने अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं और विकास, सुशासन तथा जनकल्याण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं।
10: 12 वर्षों में ऐतिहासिक काम हुआ है। पहले शासन के कार्यकाल में हमको भी उनके साथ राज्यमंत्री के रूप में काम करने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने पहले 5 साल गरीब कल्याण के काम इस देश में किए हैं। सबका उन्होंने पक्का का घर बनवाया है, सबके घर में शौचालय का निर्माण, सबके घर में नल द्वारा पानी, सबके घर में बिजली, सबके घर में बैंक का खाता, इस तरह से गरीब कल्याण के काम हुए हैं। कोरोना जैसे विपत्ति से निपटे हैं और उसके बाद से अब 80 करोड़ लोगों को अनाज भी फ्री मिल रहा है और तीसरे कालकाल में एक नए भारत के निर्माण का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। एक सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण वो कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 वो हटा है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण हुआ है। हमारी मुस्लिम बहनों के सशक्तिकरण के लिए ट्रिपल तलाक बिल पास हुआ है। इस तरह से ऐतिहासिक काम इन 12 वर्षों में हुए।
1: सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इन वर्षों में योजनाओं के पहुंच बढ़ाने और सेवा वितरण को अधिक पारदर्शी तथा तकनीक आधारित बनाने पर विशेष बल दिया गया। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते देश की ये यात्रा आगे भी जारी है। श्रोताओं, इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम सम्पन्न होता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
11: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8:30 हुए हैं। बच्चों का कार्यक्रम पिलामन काजे गोठ में आज हम सुनेंगे सरदार उधम सिंह के विषय में। प्रस्तुति है सुक्रू राम यादव की।

पिलामन, आमचो देश के अंग्रेज मंचो गुलामी ले आजाद करा तो काजे, कहे एक बड़े बड़े क्रांतिकारी वीर मन जन्म धरला और अंग्रेज मन संगे लड़ते लड़ते आपलो जान बलि दिला। उन भितरे गोटोक महान क्रांतिकारी चो नाव हैसे, हुन मंचो नाव आए सरदार उद्धम सिंह। सरदार उद्धम सिंह महान क्रांतिकारी रहोत और ये मंचो जन्म पंजाब चो संगरूरू जिला ने 26 दिसंबर 1899 ने होली। असनीची ए मंचो मरण बले 31 जुलाई 1940 ने होली। ए मंचो जन्मलोर 3 बरख पाछे माय बीती और 9 बरख पाछे हुन मंचो बा बीता बोले मरुन गेला। हुनी कारण ने ए मंचो जीवना खूबे कठिन होली और जीवना चला तो काजे अमृतसर चो गोटोक अनाथ आश्रम ने आपलो बड़े भाई संगे जाऊ पड़ली। सरदार उद्धम सिंह चो बचपन चो नाव शेर सिंह रहे। मांतर अनाथ आश्रम ने उद्धम सिंह नाव ने जानते रहोत। सरदार उद्धम सिंह सपाय धर्म के खूबे मान सम्मान देवत। हुनी कारण ने आपलो नाव राम मोहम्मद सिंह आजाद संगाला। कसन बल्लो ने राम हिंदू धर्म चो भगवान आए और मोहम्मद मुस्लिम धर्म चो और सिंह बल्लो ने सिख धर्म चो देवता मनात। असन नाव के संगाउन भाती और ऊंच नीच चो भेदभाव के गुचा तो काजे अनाथ आश्रम ले बले खूबे बड़े बड़े काम मन करते रहोत। असनीची आमचो देश काजे कहे बड़े बड़े काम मन के करते करते और बले खूबे नाम कमाला और यही समय चो सन 1917 ने हुन मन चो बड़े भाई बले मरुं गेला। जे चले हुन मन चो जीव तर और खूबे बड़े चिपा होली। असन चिपा बेरा बले उनमन हार नहीं मानला और देश सेवा काजे अमृतसर चो अनाथ आश्रम के छाड़ून बाती 1919 ने आजादी चो लड़ाई ने और बले क्रांतिकारी मन संगे शामिल होला। उन्हीं समय आने आमचो देश ने जलिया वाला बाग हत्याकांड होन रहे और ये हत्याकांड ने आमचो देश चो कितले हजार निर्दोष भाई बहन मन आपलो जान बलि दिला और ये हत्याकांड ने गवर्नर जनरल डायर चो मायमूर हाथ रहे। असन हत्याकांड के दकुन भाती

मन खूबे रीसोला और जलियावाला बाग चो घोट के मैं फिर अच्छा ले सांगे से तुम किंडिक ध्यान दे उन बारी सुना। जलियावाला बाग बोलो ने हुंता ने 20,000 लोग गोटक सभा का जे जुहुन रोहत और हुंता ने शांति ले सभा के चलात रोहत। असन समय ने जनरल डायर का अमरला और काई चेतावनी नी देउन भती उन जन जलियावाला बाग के चारों पाटले घेरला और जलियावाला बाग असन आसे कि हुंचो चारों बाटे भीति आसे उनता ने कोनी कुदुन बल प्रयोग नहीं सको और गोटक नानी असन गेट आसे ओल तो काजे उन सपाय बाटले जनरल डायर घेरुक मुरियाला और हुंता ने 18 मिनट तक गोली चलते रहे। हरजोनता ने 2,000 लोग के तो गोली ने ची मारुन दिला और कितने हजार लोग हे बाटे हुन बाटे परातो ने बल्लो ने भगदड़ने वाले हुन मंचो जान गेली और कितनी लोग तो असनी दीवाल के बले कूदला हुन ने बले हुन मन मरुन गेला और कितनी लोग तो असनी खुंद मांड करते बले हुन मंचो जान गेली। ये सपाय के आमचो उद्धम सिंह का है कि उन भीतरे रोन बहती ये बले हुताई रहोत और सब ये जोन हत्याकांड होते रहे ये सपाय के दखते रहोत। जे चले हुन मन ये सपाय के दखुन बहती जोन जनरल डायर रहोत उनके खूबी रिस होला और पासे जनरल डायल के मार तो का जे क्रिया खादला और असन करुन भाती हुन मन जनरल डायल के मार तो काजे लंदन ने गेला और गोटक होटल ने काम करुन भाती गोटक पिस्तौल बले घेनला उंच फाचे जनरल डायर के डगराक मुरियाला। कसन बोलो ने उन समय ने जो जनरल डायर रहोत हुनके ये हत्याकांड करलो कारण ने हुनके लंदन ने अंग्रेज सरकार पठौ रे बोलो ने हुता बदली करौ रे तो हुन कारण ने हुनके मार तो काजे जोन उद्धम सिंह के आए हुन लंदन जाऊ के लिए पढ़ ली तो असन करुन भाती हुन गोटक पिस्तौल के घेनला और जनरल डायर के डगराउक मुरियाला। असनी खोजते खोजते जनरल डायर के भेटला और मांतर उनके नी मारला। कसन बोलो ने हुन विचार करला कि असन मैं कोनी लगे हो एकलाए के मारुन दिले लोग मके डरपोक और कायर बल दे हुन कारण मैं असन थान ने मारें दे जसन हुन आमचो देश चो लोग के जलियावाला बाग असन सभा करुन भाती मार लो तो असन गोट के हुन मन विचार करुन भाती हुन के बोले गोटो का अच्छा बड़े सभा ने मार तो वाट बनाला तो असनी जुगे दिन चो पासे फिर हुन के बोले अंग्रेज सरकार गोटो जनरल डायर के सम्मान दे तो वाट बनाते रहे। कसन बोलो ने हुन जनरल डायर का है कि भारत चो 20,000 क्रांतिकारी मन के हत्या करुन भाती हुन अंग्रेज सरकार के खूबे बड़े उपलब्धि हुन मन के देव रहे हुन कारण ने जो लंदन सरकार रहे हुन जनरल डायर के खूबे बड़े मान सम्मान देतो का जे गोटो सभा बनातोर फैसला करला और उन सभा ने लंदन चो बड़े बड़े लोग मन जुआ होला और हुनता ने कहा कि गुणगान करुक लाए हुन चो मुरियाला और असन गुणगान करुन भाती हुनके हिनाम देतो वाट बनाला। उन्हीं समय ने बले उद्धम सिंह खिंडिक टाकुन भाती रहे और हुन मंच सभा ने गोटक रेटे बसुन भाती हुन सुनते रहे दकत दकत दकलो और उनके उद्धम सिंह के लगे गेलो और गोली ने हुनके ढेर करुन भाती हुनके हुन उताए मारुन दिलो। ये बड़े सभा ने पुलिस विभाग चो बड़े बड़े अधिकारी मन रहोत और उद्धम सिंह के हथकड़ी लगा तो आदेश होली मांतर उद्धम सिंह चो साहसारू हिम्मत के दखुन हुन मन तो बक पाड़ून भाती दखते रहोत और गिरफ्तार करतो के बले कोची हुन मन के हिम्मत नी होते रहे। तेबे उद्धम सिंह बल्ला या मके गिरफ्तार करा असन बल्लो पाछे फेर बले उनके कोनी गिरफ्तार नी करते रहोत और मन ने विचार करते रहोत कि हिंदुस्तान चो बहादुर बेटा लंदन ने उन भाती बदला धरलो उनचो पाचे कोनी गिरफ्तार नी करते रहोत उनके

कड़ी पिंदा तो काज बल डरत रहत। हसन के दकुन भारी उन आपलो धरलो पिस्तौल के उद्धम सिंह पकाउन दिला और अंग्रेज अधिकारी के बल्ला याए दाए मके गिरफ्तार करा। हसन बोल तो के गोटोक अंग्रेज अधिकारी गेलवार उनके गिरफ्तार कर लो। मानतर आमचो उद्धम सिंह चो हिम्मत और साहस के दकुन उनके हथकड़ी पिंदा तो बराबले उनचो हाथ थर तरते रहे। तो हसन करुण भाती उनके गिरफ्तार करला और फिर उनके लंदन चो कोर्ट ने नीला। तेबे जज उनके दखलो और उनके बोललो कि उद्धम सिंह तुई असन हत्या करुण भाती तुई पराग सकते रेलिस हिंदुस्तान मानतर तुई काय काजनी परालिस। तेबे उद्धम सिंह बोललो जज साहब हिंदुस्तान चो माटी ने पैदा होल लोग पाठ करुण भाती परवनुआत जरूरत पड़लो ने आपलो छाती ने गोली बले खाऊआत। असन गोट के सुनून जज भक्यान गेलो और फिर दूसर सवाल पूछ लो। उद्धम सिंह तुई हिंदुस्तान ने जाऊन भाती 100 जान तुचो असन बहादुर पैदा करू सकते रेलिस मानतर फिर बोले तुई काय काजनी परालिस। तो असन गोट के सुन भाती उद्धम सिंह उनके जवाब दिला कि जज साहब जे दिन मके लंदन चो फांसी ने चेगावा से उन दिन मुचो हिंदुस्तान ने 1000 जान मुचो असन वीर पैदा हो दे। तुम्हें असन गलत विचार ने निरोआ कि हिंदुस्तान चो लोग असन परात लोग नुआत। असन बोलून भाती लंदन चो जज साहब के हिम्मत ने हुन मन जवाब देते रहोत। हुनी कारण ने कोर्ट ने खूबे दिन तक मुकदमा चलाला और उद्धम सिंह के 31 जुलाई 1940 ने फांसी सो सजा होली। असन फांसी चो सजा होलो पाछे बले उद्धम सिंह फांसी ने चेक तो काजे नी डरला और हांसते हांसते हुन मन जाऊन भाती फांसी ने चेक तो काजे तैयार होला। मानतर हुन समयान बले अंग्रेज अधिकारी मन के उनके फांसी ने लटका तो काजे हाथ उन मन चो थर थर तरे। तेबे उद्धम सिंह खुद गेला और आपलो फांसी के आपलो टोडरा ने फसाला और उनचो बाद ने हांसते हांसते फांसी ने झुल्ला। तेबे हुन दिन के आमी 31 जुलाई के आमी रोजे बरक उद्धम सिंह जयंती मनातर होए से। तो पिलामन इतलो बले बहादुर और क्रांतिकारी चो कहनी के तुम सुन लाज बे होती तो असन आमच देश चो महान क्रांतिकारी उद्धम सिंह रला।

बच्चों का कार्यक्रम पिलमन काजी गोठ में आप सुन रहे थे सरदार उधम सिंह के विषय में। प्रस्तुति थी सुक्रुराम यादव की। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही समय में हिंदी और अंग्रेजी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉ जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
2: The amount of time we have spent
3: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल

0: हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
2: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे।
1: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
3: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाके ठीक ठाक रह रहा हूँ।
1: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों के मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आइए सुनते हैं फिल्म आया सावन झूमके का ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फिल्म बनफूल का ये गीत आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। शब्द रचना है आनंद बख्शी की, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है पत्रों पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम मोचो मंचो गीत। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं कलावती और साथियों के स्वर में ध्रुवी लोकगीत। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है ग्राम डोडरीपाल छोटे गुडरा विकासखंड दरभा जिला बस्तर से बलदेव मंडावी, विनीता मंडावी, दिलीप मंडावी, वेदांत मंडावी, परीता मंडावी, छवि मंडावी और अवनिका कश्यप। ग्राम कोरीरास कुआकोंडा जिला दंतेवाड़ा से मासा कुंजाम, मंगल कुंजाम, अनय कुंजाम, अनीता कुंजाम, कमलेश्वर कुंजाम, सुचित्रा कुंजाम, आरती कुंजाम और संतु कुंजाम।

पत्रों पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम मोचो मंचो गीत का अगला गीत है शेख हुसैन और साथियों के स्वर में छत्तीसगढ़ी लोकगीत। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है ग्राम पखनार विकासखंड दरभा जिला बस्तर से लक्ष्मण मंडावी, सुनीता मंडावी, दुर्जन मंडावी, समली मंडावी, अर्जुन मंडावी और कारी मंडावी। ग्राम मुरनार विकासखंड ओरछा जिला नारायणपुर से सुकमा वेड्डे, छुन्नीलाल वेड्डे, गोविंद वेड्डे, पंडी वेड्डे, गिंजरू वेड्डे, सुखलाल वेड्डे, रमेश वेड्डे और परतोष वेड्डे। ग्राम बनिया गांव विकासखंड कोंडागांव जिला कोंडागांव से गोकुल भारती, मंचाराम भारती, राजू भारती, सुकमती भारती, संदीप भारती, चंदू भारती, हितेंद्र भारती और खेमेश्वर भारती।

खेम वैष्णव और साथियों के स्वर में आइए सुनते हैं हल्बी लोकगीत। इस गीत को सुनना चाहा है ग्राम मोरमेड़ विकासखंड बीजापुर जिला बीजापुर से सोहन तेलाम, विनोद तेलाम, मुन्ना तेलाम, विजय तेलाम और चिन्नाराम तेलाम। ग्राम डिलमिली विकासखंड दरभा जिला बस्तर से राजू सोड़ी, नरेंद्र वर्मा, हितेंद्र कर्मा, परमो सोड़ी, मनीराम मंडावी और संतु पोयाम। ग्राम राजामुंडा जिला सुकमा से लक्ष्मण मंडावी, गरिमा पोड़याम, हिरमा सोड़ी, वेके हुंगा, वेको नोगा, माड़वी गणेश, माड़वी देवा और महेश कुंजाम। ग्राम बास्तानार जिला बस्तर से वरुण वेको, राजेंद्र पोड़याम, विनोद कुड़याम, महेश पोयाम, चंद्र बघेल, सुकमन सेठिया और सुद्रु मंडावी।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है कोशी और साथियों के स्वर में गोंडी बोली में। इस गीत को सुनना चाहे ग्राम देवगांव जिला कोंडागांव से बुद्रू मंडावी, श्रीमती मंगलदेव मंडावी, श्रीमती मंगली मंडावी, सत्यवती मंडावी, जसवंत मंडावी और बसंती मंडावी। ग्राम करंजी कोंडागांव जिला कोंडागांव से विनोद नेताम, छेमेश्वरी नेताम, त्रिषा नेताम, नवल राम नेताम, रगमती बाई नेताम, बुधियारिन नेताम और लुमनी बाई नेताम। ग्राम बड़े मुरठपाल तोकापाल से भाड़ू राम कश्यप, रामदई कश्यप, मयंक कश्यप, चेयक कश्यप, अंशुला कश्यप, मुन्नी कश्यप, अनुराग कश्यप और वंशराज कश्यप। ग्राम घड़िया लोहंडीगुड़ा बस्तर से बुंजाराम मौर्य, सुद्रु सेठिया, लखमू कश्यप, कोपाराम मंडावी, तुलसी सेठिया और हेमराज सेठिया।

पात्रों पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम मोचो मंचो गीत इस गीत के साथ ही समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 10 बजे हैं। लोकवाद्य धुन के कार्यक्रम पाड़ में आइए सुनते हैं लोहंडी गुड़िन पाड़ और हिंगलाजिन माता पाड़। वादक कलाकार हैं

लोकवाद्य धुन के कार्यक्रम पाड़ में आप सुन रहे थे लोहंडिन गुड़िन पाड़ और हिंगलाजिन माता पाड़। वादक कलाकार थे कालिदास और साथी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही समय में हिंदी और अंग्रेजी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल

0: केजरीवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉ जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉ जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमिपत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारी ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताजा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
1: a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
3: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's foreign policy is now in sync with its core national goals. The minister said that foreign policy and diplomacy have got integrated with priorities of the government focusing on social security and national development. Dr. Jaishankar made these remarks in an interview given to DD News. He said that national security in the present time is not just about protecting the borders. It includes security in terms of economy, energy, health, fertilizer and cyber strength. Dr. Jaishankar said that India is safeguarding its deep strategic and economic interests in the Gulf region while also maintaining its independent ties with Iran, the United States and Israel. Prime Minister Narendra Modi held a telephonic conversation this afternoon with the Emir of Kuwait, Sheikh Mashal Al Ahmed Al Jaber Al Sabah. The two leaders exchanged views on the evolving security situation in West Asia. The Prime Minister expressed deep concern over the escalation of tensions and reaffirmed India's strong condemnation of attacks on Kuwait's sovereignty and territorial integrity. He reiterated the call for de-escalation, dialogue and diplomacy for earliest restoration of peace and stability. Mr. Modi thanked Amir of Kuwait for his personal attention to the continued well-being and the safety of the large Indian community in Kuwait. World leaders have congratulated Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest-serving elected Prime Minister of the country. They paid tribute to Prime Minister's transformative governance, his advocacy for the Global South, and his vision of an inclusive and economically dynamic India. President of Sri Lanka, Anurag Kumara Dissanayake, in a letter said that the milestone is a testament not only to Mr. Modi's years in office, but also to the trust and confidence that the people of the world's largest democracy have repeatedly placed in his leadership. Prime Minister of Papua New Guinea, James Marape, in his personal video message, described Prime Minister Modi as a role model and an example of leadership. Further, Prime Minister of Trinidad and Tobago, Kamala Prasad Bisesar, noted that under the leadership of Prime Minister Modi, India has evolved as a leading voice on global matters. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the Land Port Management System, LPMS Vinimay, in New Delhi, marking a major step towards digitizing and streamlining cargo processing and passenger movement across India's land borders. Addressing the gathering, Mr. Shah said the initiative reflects the government's commitment towards building a modern, technology-driven border management system. He said the platform is aligned with the vision of Vikasit Bharat 2047 and will strengthen trade facilitation, connectivity and national security. And with that, we end this news bulletin.
4: Medium wave 396.82 meter. अर्थात 756 किलो हर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 11:10 हुए हैं। हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। सुबह 5:55 पर प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।